मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक जमात 1948 के भाद्रपद मास की 27वीं तिथि तथानुसार दिनांक 18 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं और आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपका रेडियो मित्र अजय धाकड़। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय के
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा।

वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए समूह स्वर में ये मातृवंदना।

अभी आपने सुनी समूसर में ये मातृवंदना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में ये भजन।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन के स्वर में ये भक्ति रचना।

चंदन दास के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता कार्यक्रम में अगली जब सुनिए प्रीति सागर के स्वर में ये भजन।

प्रीति सागर के सुर में अभी आपने सुना ये भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में के आखिर में लीजिए, अब सुनिए अनूप जलोटा के सुर में ये भक्ति रचना।

0: अभी आपने सुनी अनूप जलोड़ा के स्वर में ये भक्ति रचना। इसके साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है जल संरक्षण इस विषय पर आज का ये चिंतन। चिंतक हैं तुलिका शर्मा।
1: इफ्रात में मिला हुआ पानी हम बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि ये पानी कल शायद हमें उपलब्ध भी ना हो पाए। निरंतर इस धरती पर पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है। अब हम सब जानते हैं कि धरती पर 2/3 पानी है, लेकिन इस पूरे पानी की मात्रा में पीने योग्य पानी कितना है, कभी इस पर रिसर्च करके देखिएगा। और जो हम पानी बर्बाद करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा पीने योग्य पानी का होता है। धरती पर उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, तमाम संयंत्र लगाए जाते हैं और फिर उसे आप तक पहुंचाया जाता है। इस पानी का बेहद सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा जल हमें उसे भी सहेज कर संभाल कर रखने की कोशिश करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। केरल स्थित कोचीन में चेल्ला नाम में रहने वाले हैं KJ अंतोजी। ये कभी एक वायर टेक्नीशियन थे और TV मैकेनिक थे, लेकिन आज उन्हें पूरा देश एक आविष्कारक के तौर पर जानता है। उन्होंने वर्षा जल संचयन की एक अद्भुत तकनीक ढूंढी है और वो है रेन वाटर सिरिंज तकनीक। इस तकनीक से बारिश के पानी को ज़मीन में समुद्र के स्तर से नीचे इकट्ठा किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है और फिर इस पानी को ज़रूरत के समय एक मोटर की मदद से आप इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं। अंतोजी ने यह महसूस किया कि तटीय इलाकों में भूजल के गिरते स्तर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो रहा था। ऐसे में इन इलाकों के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें एक ही उपाय सूझा कि हम बारिश के पानी को भूजल स्तर तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो इसमें बढ़ते नमकीन स्वाद को बैलेंस कर दे। और इसके लिए उन्हें लगा कि सबसे सही तरीका है रेन वाटर सिरिंज मेथड, क्योंकि इसकी मदद से आप बारिश के पानी को समुद्र के स्तर से नीचे इकट्ठा कर सकते हैं। अंतोजी ने इसके लिए कुछ पढ़ा नहीं था, बस एक घटना घटी थी और उन्हें ये जुगाड़ मिल गया था। वो एक पाइप की सहायता से पेड़ों में पानी दे रहे थे कि अचानक उनके घर में टेलीफोन की घंटी बजी। वो एकदम चौंके, हाथ से पाइप गिर गया और जब वो अंदर से बात खत्म करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि पाइप का सिरा जमीन में घुस गया था। उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर भी जो गड्ढा पाइप के पानी के प्रेशर की वजह से हुआ था उसमें से तब भी पानी निकल रहा था। इसके बाद जिज्ञासावश उन्होंने एक जगह और पानी के प्रेशर से गड्ढा किया और देखा कि लगभग 8 फीट तक गड्ढा होने के बाद उससे पानी का निकलना बंद हुआ। मतलब कि जमीन में जब हम पानी डालते हैं और जब वो 8 फीट से नीचे पहुंचता है तब ज़मीन उसे सोखना शुरू कर देती है। इससे ही हमारा भू जल स्तर बढ़ता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बारिश का पानी भू जल स्तर बढ़ाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो 8 फीट की गहराई तक पहुंचे। जबकि हमारे यहाँ तो बारिश का पानी सतहों से होता हुआ सीधे समुद्र में चला जाता है और ये अच्छा नहीं है। अंतोजी कहते हैं कि यहीं से उनकी रेन वाटर सिरिंज तकनीक की शुरुआत हुई। उन्हें समझ में आ गया था कि इस तकनीक से भूजल को नमकीन होने से रोका जा सकता है। अगले 4 साल तक उन्होंने अपने घर में ही ये एक्सपेरिमेंट किए और इस तकनीक में महारत हासिल कर ली। अंतोजी रेन वाटर सिरिंज से बारिश के पानी को प्रेशर से ज़मीन के 6 फीट नीचे बने एक स्टोरेज टैंक में पहुंचाते हैं और इसके लिए अलग से कोई मशीन नहीं चाहिए, लेकिन बाद में इस पानी को अपने इस्तेमाल के लिए निकालने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है। ये गड्ढा लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। जैसे परिवार में कम सदस्य हैं तो छोटा गड्ढा बनता है। अगर सामुदायिक स्तर पर कहीं लगाना है तो छोटे छोटे कई सारे गड्ढे बनाए जाते हैं। इससे भूजल स्तर को प्रभावी रूप से बढ़ाया जा सकता है। अंतोजी ने अब तक 400 से भी ज़्यादा यूनिट्स लगाई हैं, जिनमें लगभग 500 करोड़ लीटर पानी को संरक्षित किया गया है। उन्होंने इस सिस्टम की कीमत भी कम से कम रखी है। अंतोजी का मानना है कि उन्होंने अनुभव से पानी को समझा है। पानी बात करता है, बस ज़रूरत है आपके ध्यान से सुनने और समझने की। अंतोजी ने भले ही तटीय इलाकों को ध्यान में रखकर इस तकनीक का आविष्कार किया हो, लेकिन इसकी ज़रूरत देश के अन्य इलाकों को कब हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तेज़ी से हमारे आसपास भूजल कम हो रहा है। यदि आप अपने घर में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि छत का पानी किसी भी तरह से आप ज़मीन में उतार पाएं। यदि आपने साल भर में अपनी छत पर वर्षा का पानी ही ज़मीन में उतार लिया तो आपका कर्तव्य इस धरती के प्रति पूरा हो जाएगा।
0: जल संरक्षण, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का ये चिंतन। चिंतक थी तुलिका शर्मा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली

श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ, श्रद्धा, योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय है कृषि यंत्रों का उचित रख रखाव क्यों व कैसे, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं श्री कौशल किशोर।
1: जो उन्नतशील कृषि यंत्र जो हमारे किसान भाई बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, एक लंबी अवधि तक अल्पतम परिचालन व्यय पर सुचारू रूप से कार्य करते रहें, तो ये देखें आपकी कृषि यंत्र कच्चे लोहे के ही बने होते हैं। बरसात में वायुमंडल में उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कच्चे लोहे में क्षरण में जंग के कारण तेजी आ जाती है। अब इसके रोकने के कुछ ऐसे उपाय हैं जैसे लोहे तथा वायुमंडल के बीच एक रोधिका या बैरियर बनाने से आंशिक रूप से जंग लगने की क्रिया को मंद किया जा सकता है। कृषि यंत्रों के संबंध में यह रोधिका पेंट करके या ग्रीस अथवा तेल की पतली परत लगाकर बना सकते हैं। जंग एक अवांछित यौगिक है जिसे फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। यदि जंग लगने की क्रिया को कम न किया गया तो कुछ ही वर्षों में लगातार क्षरण के कारण कृषि यंत्र बेकार हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि बरसात के मौसम में जिन यंत्रों का उपयोग न हो रहा हो उन्हें पेंट करके अथवा ग्रीस या तेल की पतली परत चढ़ाकर शुष्क स्थान में रख दें। तो ट्रैक्टर एक हमारी बहुत ही कीमती मशीन है, तो इसको आप ये देखें कि बरसात में ट्रैक्टर का कार्य बहुत कम हो जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि इस समय ट्रैक्टर हमको बहुत कम देखते हैं खेतों में। तो कृषि क्रियाएं पूर्ण करने के बाद यदि आप यह अनुमान लगाते हैं कि अगले एक महीने में ट्रैक्टर से कोई कार्य नहीं लेना, तो यह उचित होगा कि ट्रैक्टर का भंडारण कर दिया जाए। भंडारण के पूर्व यह आवश्यक होगा कि उसे अच्छी तरीके से धोकर साफ करके सभी होस पाइप, आयल, ड्रेन प्लग, रेडिएटर लीकेज, बैटरी चार्जिंग, पहियों में वांछित हवा, सभी ग्रीस निपलों में ग्रीस, पहियों में ग्रीस, सभी फिल्टर, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, इलेक्ट्रिक वायरिंग आदि चेक कर लें। बीच बीच में 8 से 10 दिन के अंतराल पर ट्रैक्टर को उसी स्थान में 10-15 मिनट के लिए स्टार्ट करते रहें जिससे तेल यंत्र, जल तथा बैटरी आदि सक्रिय हो जाते हैं। यदि लंबी अवधि के लिए भंडारित करना हो तो बैटरी खोल लें तथा ट्रैक्टर को जैक करके रखें जिससे टायरों में अनावश्यक दाब न पड़े। कृषि यंत्रों का भंडारण नम स्थान में न करें, पहली बात तो यह है, तथा संभव हो सके तो डिस्कों आदि में जला हुआ तेल या जंग अवरोधी पदार्थ का लेप करें तथा अन्य भागों में पेंट आदि का प्रयोग करें। लकड़ी के बने भागों पर तेल, वार्निश या पेंट करें तथा दीमक आदि कीड़ों से बचाएं। बियरिंग में तेल या ग्रीस डालें तथा धारों को पैना करके रखें। सीड ड्रिल में बीज एवं खाद की मात्रा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, इसका मतलब कार्य करने के बाद कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए, अन्यथा बीज अंकुरित होगा एवं खाद नमी सोखेगी जिससे बॉक्स जंग लगकर खराब हो जाएगा। कुटी मशीन जैसी चीज़ों को जंजीर में ताले से बंद कर दें जिससे कि बच्चों में अनभिज्ञता के कारण कोई नुकसान न हो। इससे गणासों में चिकनाई लगाकर रखें। स्प्रे एवं डस्टरों को उपयोग के बाद निश्चित रूप से ठीक से साफ करके ही रखें। थ्रेशर के ड्रम, अवतल तथा छन्नों को साफ करें। बेल्टों के तनाव को कम कर दें तथा बियरिंग में चिकनाई आदि डालें। मोटर, स्टार्टर, स्विच आदि को पानी से दूर रखें तथा इन्हें नम स्थान में कभी न लगावें। नमी के कारण अक्सर कॉन्टैक्ट पॉइंटों में जंग लगने के कारण ज़्यादा खराबियाँ आ जाती हैं, अतः इनके लिए शुष्क स्थान होना आवश्यक है। मोटर के इंसुलेशन की जांच समय पर करते रहें। यदि प्रतिरोध जो है हमारी मोटर का 1 MΩ से कम हो तो मोटर को 100 वाट के बल्ब की गर्मी से सुखावें, फिर इंसुलेशन वार्निश करें जिससे मोटर की आयु बढ़ने के साथ साथ जलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। खाली समय में मोटर को खोलकर शेड में रखें तथा आवश्यकता अनुसार ग्रीसिंग कर दें। तो ये देखने में आया है कि कृषि व्यवसाय में डीजल चलित पंपों का उपयोग बहुतायत से होता है। यह एक सामान्य सी बात है कि किसी भी मशीन के लगातार संचालन से उसमें कुछ न कुछ खराबी एवं टूट फूट होती रहती है। इसी प्रकार डीजल पंपों में भी खराबियां हो जाती हैं। यदि पंप का उपयोग औसतन 8-10 घंटे प्रतिदिन किया जाता है तो उसकी देखभाल के लिए प्रति माह बियरिंग में लुब्रिकेशन, बियरिंग की टूट फूट चेक करते रहें। यदि पंप में रिंग ऑयल बियरिंग का प्रयोग किया गया है तो हर 3 महीने के बाद उसका पूरा ऑयल निकाल दें तथा बियरिंग को अच्छी तरीके से मिट्टी के तेल से साफ करके ग्रीस भर के पंप में फिट करें। इस प्रकार अगर हम सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय था कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव क्यों व कैसे और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे श्री कौशल किशोर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
4: याद रखो हमारी बात,
5: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
4: जंगल है धरती का गहना,
5: सदा इसकी रक्षा करना,
4: होगी जो धरती पर हरियाली
5: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण, मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार कुछ क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतम् आपूर्ति श्रृंखलानां शस्त्रीकरणस्य मध्ये विश्वसनीयस्य अर्धचालक विनिर्माणस्य वैश्विक केन्द्र रूपेण प्रतिष्ठापितमस्ति। असौ उक्तवान् यत् विश्वं नूतनानां विश्वसनीय विनिर्माण केन्द्राणाम् अन्वेषणं करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरं सज्जीकरोति। सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्ति श्रृंखलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानाम् आपूर्ति श्रृंखला सम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशो भूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चम संस्करणस्य उद्घाटनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्।
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति पारिस्थितिकतन्त्रस्य अन्तर्गतम् अद्यावधि प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां निवेश सम्बद्धाः प्रतिबद्धताः प्राप्ताः सन्ति। भाजपेति दलेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 76वें जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये ह्यः मासैक पर्यन्तं प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापिनः सेवा संकल्पाभियानस्य शुभारम्भः कृतः। अस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यं जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रकाशयितुं तथा जनान् विशेषतः युवकान् सेवाकार्येषु प्रवर्तयितुं प्रोत्साहयितुं च अस्ति। अनेन अभियानेन गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण श्रीमोदिनः 1,00,000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 7वें दिनांके शपथ ग्रहणस्य 25वर्षपूर्तिरपि स्मर्यते। अभियानम् आगामी मासस्य 17वें दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। विदेश मंत्रालयेन पारपत्र संशोधन नियमाः 20/26 इति अधिसूचिताः, येन 80-99वर्षस्य पारपत्र नियमेषु संशोधनं कृतमस्ति। संशोधनानुसारं 15 वर्षात् न्यून वयस्काय बालकाय प्रदत्तं 36 पृष्ठयुतं साधारण पारपत्रं 5 वर्षपर्यन्तं उतवा तस्य 18 वर्षवयः प्राप्तिपर्यन्तं एतयोः यत् पूर्वं भवति तत् पर्यन्तं वैधं भविष्यति। अमेरिका देशे भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा उक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य शीघ्रतम वर्धमानासु प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं तथा ऊर्जसः तृतीयः बृहत्तमः उपभोक्ता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः थिम्फू नगरे भूटान नरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत भूटानयोः मध्ये विद्यमानां विशिष्टां मैत्रीम् इतोपि सुदृढीकर्तुं भूटान नरेश द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनं महत्वपूर्णमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याम् आयोजिते तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तान दलं सप्तविंशत्यधिकैकशत धावनांकैः पराजित्य त्रिस्पर्धात्मिका श्रृंखलायां सर्वासु तिसृषु स्पर्धासु विजयः अधिगतः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की तीन दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से तीन मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में शानदार 108 रन और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, पहली सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद 7:20 पर सुनेंगे गांधी चर्चा, प्रस्तुत है तुलिका शर्मा की। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:30 पर और 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 8:30 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंकज उदास की गाई कुछ गजलें। गुड मॉर्निंग ग्वालियर का समय रहेगा 9:00। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे साकेत कुमार का ध्रुपद धुमार गायन राग उगा भैरव। इनके साथ पखावज पर संगत करेंगे जयवंत गायकवाड़। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 10:00, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:00। दोपहर में पुनः फिल्म संगीत आप सुनेंगे 12:00 और 2:30 पर। संग्रहालय से इस कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30 पर। महिला सभा कार्यक्रम का समय रहेगा 12:00। लोक संगीत और सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर और 12:45 पर। महिला सभा कार्यक्रम, लोक संगीत और सुगम संगीत, ये तीनों ही कार्यक्रम छतरपुर की प्रस्तुति हैं। श्रोता साथियों, ये सभी कार्यक्रम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सायंकालीन समय में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम है युववाणी। यह कार्यक्रम छतरपुर की प्रस्तुति है। सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 5:33 पर। और चित्रपट संगीत आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 10:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी का समय रहेगा रात्रि 10:30 पर। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा शाम 6:00। शुभ साथियों, जैसा सभी कार्यक्रम हमने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा शाम 7:20 पर। चर्चा के विषय होंगे समान वेतन दिवस और प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता मलेरिया कारण लक्षण एवं रोकथाम। इस विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार पाटीदार से प्रेम चंद जरुनिया की बातचीत। तो श्रोताओं, यदि थी हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:00।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत, पहले दिन 3 करोड़ से ज्यादा दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बना। प्रदेश भर में रक्तदान हुआ। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में राजा कुंवर रघुनाथ शाह और राजा शंकर शाह बलिदान दिवस पर और दिल्ली में सेमिकॉन 2026 में हिस्सा लेंगे। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली के यशोभूमि में कल सेमिकॉन 2026 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
2: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग

0: ऐतिहासिक और महत्व के स्थलों पर 3,55,00,000 दिए एक साथ जलाए गए। उज्जैन में ही 33,27,000 दिए एक साथ प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। उज्जैन के शिप्रा के रामघाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उज्जैन वासियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किए। दीपोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज मध्य प्रदेश में हमने उनके सपने को साकार करने का प्रयास किया है। अब प्रदेश के सभी गांवों में 50,00,000 से अधिक लोगों को जिनके मकान खेत खलिहान के पट्टे हैं उनकी रजिस्ट्री करने का ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जिक्र करते हुए कहा कि वे बिहार क्षेत्र से आते हैं और बिहार और मध्य प्रदेश का अपना एक पुराना संबंध रहा है।
1: तो हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी हमारा पवित्र संकल्प दीप प्रज्वलन के बिना होता ही नहीं। हमारे इस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः विराजे हैं, हमारा आपका उनका एक विशेष संबंध भी है। आप बिहार से आते हैं और राजा भोज उस अतीत के काल में जब यहाँ वो खराब समय था तो उस काल में हमारे मालवा के लोग अपने बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में गए, इसलिए आज भी वहाँ के शासक उज्जैन ठाकुर भी कहलाते हैं और ये भोजपुरी भाषा से हमारा वो मध्य प्रदेश का संबंध भी जुड़ता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कल सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रदेश में 388 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 8,684 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविरों के साथ रक्तदान के प्रति जन जागरूकता शपथ एवं अन्य जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जहां 77 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और महत्व के स्थानों पर दीप प्रज्वलन भी किया गया, जिसमें ग्वालियर जिले के 11, इंदौर के 32, भोपाल के 21 और कई अन्य जिलों के आइकॉनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए। इंदौर जिले में सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन 350 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं देवास में 25,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की उपस्थिति में 6,00,000 से अधिक दिए जलाकर सेवा का संकल्प लिया गया। इसी प्रकार सतना, खंडवा, आगरमालवा, मंडला, रायसेन, सागर, छतरपुर, अलीराजपुर, डिंडौरी, बैतूल, अशोकनगर, नीमच सहित प्रदेश के सभी जिलों में सेवा के संकल्प के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर सागर जिले के किसानों से वर्चुअली जुड़कर संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धान, गेहूं और ज्वार के साथ नकदी फसलों का उत्पादन भी हो रहा है। कृषि उत्पादन के साथ फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना से किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात है। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के 169वें बलिदान दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करेंगे। इसके बाद वे जनजातीय समाज के गौरव पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और उपस्थित जन समुदाय तथा आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान ने कल तेलंगाना के थिम्मापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को फसल बीमा की सुविधा दी जा रही है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण लेने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि समय पर ऋण चुकाने से लाभार्थियों को आगे अधिक ऋण लेने, अपना क्रेडिट रिकॉर्ड बेहतर करने और बैंकों का विश्वास हासिल करने में मदद मिली है। इस संवाद में देश भर से 200 से अधिक मुद्रा योजना के लाभार्थी शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

सी ने यूजीसी नेट 2026 की जून की परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा 9 और 10 सितंबर को देश के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डाक विभाग देशभर में स्वच्छता बढ़ाने, लंबित मामलों को कम करने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और ई कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। अभियान का तैयारी चरण इस महीने की 15 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। अशोकनगर की ग्राम पंचायत काकराई में आज मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत कल जिला अस्पताल के ग्राम सिरपुर और ओंकारेश्वर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा मिशन जीवन रक्षक अभियान की शुरुआत कल से हुई। नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत अमथनू में 7वां जनसंवाद शिविर आज आयोजित किया जाएगा। डिंडौरी की जनपद पंचायत बजाक के ग्राम पंचायत बोंदर में आज जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर ही सिमट गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत, पहले दिन 3 करोड़ से ज्यादा दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बना। प्रदेश भर में रक्तदान हुआ। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस और दिल्ली में सेमिकॉन 2026 में हिस्सा लेंगे। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीती। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है गांधी चर्चा, प्रस्तुति है तुलिका शर्मा की।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 28 सितंबर 1931 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित बापू के आलेख के संपादित और अनुवादित अंश। फसलें उगाने में स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ मेहनत मशक्कत करते हैं। उनका जीवन बड़ा कठिन है। स्त्री पुरुष का भेद उन वर्गों के बीच ज्यादा है जिनके पास धन संपत्ति और पर्याप्त अवकाश है। धन के कारण वे स्त्रियां अपनी उपयोगिता को भूल गई हैं। अपने इस गुण को उन्होंने ताक पर रख दिया है। इस प्रकार संपन्न स्त्रियों में मात्र एक शोभा की वस्तु, एक खिलौना बनते जाने की प्रवृत्ति आ गई है। मैं चाहता हूं कि सभी पदों, व्यवसायों और रोजगारों के दरवाजे स्त्रियों के लिए खुल जाएं, अन्यथा सच्ची समानता नहीं आ सकती। लेकिन मैं हृदय से ये आशा करता हूँ कि हमारे देश की स्त्रियाँ अपना प्राचीन गृहलक्ष्मी का दर्जा बनाए रखेंगी, उसके अनुसार आचरण करती रहेंगी। इस उच्च पद से उन्हें कभी च्युत नहीं करना चाहिए। वास्तव में वो एक निरानंद गृहस्थी होगी जिसका केंद्र बिंदु स्त्री नहीं होगी। उदाहरण के लिए, जिस परिवार में पत्नी टाइपिस्ट का काम कर रही हो और वो घर में शायद ही कभी रहती हो, उस परिवार के सुखी होने की मैं कल्पना नहीं कर सकता। बच्चों की देखरेख कौन करेगा? और बिना बच्चों के, गरीब गृहस्थी के इन सब से जगमगाते जवाहरातों के बिना कोई घर क्या घर है? गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 28 सितंबर 1931 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित बापू के आलेख के संपादित और अनुवादित अंश। गांधी चर्चा का समापन करते हैं बापू के इस प्रिय भजन से।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रस्तुति थी तुलिका शर्मा की। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुभ साथियों, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

श्रद्धा, उनका जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। वे मशहूर उर्दू शायर और गीतकार कैफ़ी आज़मी और प्रसिद्ध थिएटर अभिनेत्री शौकत आज़मी की बेटी हैं। मनोविज्ञान में स्नातक करने के बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से अभिनय का कोर्स किया, जहां उन्हें गोल्ड मेडल जीता था।

कार्यक्रम की आरंभ में लीजिए सुनिए फिल्म अर्थ का ये गीत। गीत कैफी आजमी का है और संगीत दिया है जगजीत सिंह ने, आवाज है जगजीत सिंह की।

शुभ साथियों, आज की फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अभिनेत्री शबाना आजमी के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत। श्रोताओ, शबाना आजमी जी ने 1970 और 80 के दशक में समानांतर सिनेमा का या आर्ट फिल्मों को एक नई पहचान दी है। शबाना जी ने 1974 में फिल्म अंगूर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और इस पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने अर्ध खंडहर, पार, मासूम, मंडी और स्पर्श जैसी कई फिल्मों में जटिल और मजबूत महिलाओं के किरदारों को जीवंत किया। इनके नाम भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। इन्हें अंकुर, अर्थ, खंडहर, पार और गॉड मदर जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। वर्ष 1983-84 और वर्ष 1985 तक यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म मासूम का ये गीत। गीत लिखा था गुलजार ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोता, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आज़मी जी के जन्मदिवस पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी अपने सुना फिल्म फकीरा का यह गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। शो साथियों, फिल्म संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज और प्रतिष्ठित अभिनेत्री शबाना आजमी जी के जन्मदिवस पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत। शुद्ध हिंदी सिनेमा जगत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। वे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के अधिकारों, महिलाओं की समानता और एड्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए लगातार सक्रिय भी रही हैं। कला और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1997 से वर्ष 2003 तक उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था।

0: याद रखो हमारी बात।
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना।
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुओं ओर फैलेगी खुशहाली।

0: किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म अमर अकबर एंथोनी का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता साथियों, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे शबाना आज़मी जी के जन्मदिवस पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत। कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात कुछ क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए UGC नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
2: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्य, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
5: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
7: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
8: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
7: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
9: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
7: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
10: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
12: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण

0: पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेईई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया, दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस, इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल, आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वंस फॉर वेस्ट बंगाल बाय पोल्स। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. Here's a report from our correspondent.
3: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. More from our correspondent.
4: Both houses of the parliament on 12th August gave their note to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The committee comprises 21 members from the Lok Sabha, nominated by the Speaker, and 10 members from the Rajya Sabha, nominated by the Chairman. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent members from the Lok Sabha include Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja, and Supriya Sule. From the Rajya Sabha, Harshvardhan Shingla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel, and Menaka Guruswamy are among the members of the committee. The committee is required to submit its report to the House by the last day of the first week of the winter session. Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
2: The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website https://ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on the September 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. The agency had

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय 11:30 और 10 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोता साथियों, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंकज उदास की गाई कुछ गजलें। तो कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये पहली गजल।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोता साथियों, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई कुछ गजलें। कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए इन्हीं की गाई एक और गजल।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोत साथियों, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गायी हुई कुछ गजलें। कार्यक्रम में आगे सुनिए ये एक और गजल।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे थे पंकज उदास की ही गाई हुई कुछ गजलें। मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 8:58 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: उसको बच्ची स्कूल तक आए क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसके

0: उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या किरणी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ
0: जी
1: किया जो आज
0: बिल्कुल
1: पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखाग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखाग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इंप्लीमेंट किया गया?
2: जी, बहुत ही अच्छा आपने
3: मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता और साथियों को आपके मित्र अजय का नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और वो दोस्तों तब होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा और निरोगी होगा। श्रोता जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, व्यायाम करना और पौष्टिक भोजन करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है दोस्तों पर्याप्त और भरपूर नींद लेना। जी हाँ दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त और भरपूर नींद लेना भी बेहद ही ज़रूरी है। श्रोताओं कुछ हार्मोन्स रात में ही स्रावित होते हैं, दिन में सोना पर्याप्त नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि किस समय सोना सही है और किस समय सोना गलत है और नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पर्याप्त नींद ही नहीं बल्कि समय पर नींद लेना और सही समय पर उठना भी बेहद ही ज़रूरी है और ऐसा ना करना कई रोगों को दावत देना है। श्रोताओं नींद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी सोने की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है। एक अच्छी नींद हमारे दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए और शरीर के दूसरे अंगों को आराम देने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। पर्याप्त नींद शरीर ही नहीं मन के लिए भी ज़रूरी है। कम नींद से वयस्कों में बीमारियाँ होती हैं और याददाश्त भी जो है वो कम होने लगती है। वहीं श्रोता बच्चों का शारीरिक विकास जो है वो भी प्रभावित होता है। श्रोता कुछ लोग रात भर काम या यात्रा के दौरान जागते रहते हैं और अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर रात में नहीं सोते हैं तो दिन में सोकर नींद पूरी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सोते समय शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनमें अधिकांश हार्मोन्स केवल रात को ही स्रावित होते हैं। श्रोता दिन में सोने से थकान जो है वो थोड़ी बहुत दूर हो सकती है, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन्स की जो भरपाई है वो नहीं होती है और यही वजह है कि जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हार्मोन का असंतुलन होने लगता है, उनमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे ब्लड शुगर, थायराइड जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।

0: श्रोताओं, मानसिक थकावट, मानसिक तनाव और अत्यधिक थकावट, ये पेट खराब होना, दिनचर्या संतुलित ना होना, सोने उठने और खाने पीने का कोई निश्चित समय ना होना, ये नींद आने के कारण है, नींद ना आने के कारण है। दोस्तों, कम सोने के क्या क्या खतरे हैं? कम नींद लेने से जुकाम और फ्लू का खतरा रहता है, दिल की बीमारियों का खतरा दोगुना रहता है, आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है, मधुमेह का खतरा हो सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है और समय से पहले आप काल के ग्रास बन सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि देर तक सोने और लेट उठने के नुकसान। दोस्तों, अधिक सोना भी शरीर के लिए हानिकारक है। कैलोरी बर्न नहीं होने के कारण शरीर मोटापा ग्रस्त हो सकता है, वजन अनियमित रूप से बढ़ने लगता है, हार्मोन्स का जो है वो असंतुलन होने लगता है और आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, धीरे धीरे डिप्रेशन घेर लेता है, दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है और ज़्यादा आराम करने की स्थिति में मांसपेशियों पर भी बुरा असर पड़ता है। अधिक देर सोने से दिमाग पर भी असर पड़ता है और याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है। श्रोता, अच्छी नींद के कुछ बेहतर उपाय भी हैं, जैसे कि सोने से पहले पैरों को पानी से धोकर सोएं और सोने के कम 3 घंटे पहले ही खाना खा लें। और दोस्तों, कोशिश ये करें कि रात का जो भोजन है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच ही खा लें। रात को बाहर का खाना खाने से बचें और हल्का खाना ही खाएं। रात को खाना खाने के बाद थोड़ा ज़रूर टहलें, इससे नींद अच्छी आती है। और कोशिश ये करें कि दिन में सोने की जो आपकी आदत है उससे आप बचें, हमेशा रोज़ एक ही समय पर सोने की आदत डालें, इससे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, एक अच्छी नींद के क्या फ़ायदे हैं? इससे आपका पाचन तंत्र सुचारू रहता है, शरीर का वजन संतुलित रहता है, तन और मन शांत और खुश मिजाज रहते हैं, आपकी जो है वो एकाग्रता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सिरदर्द और अन्य रोगों से आपको राहत मिलती है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। साथियों, एक शोध के मुताबिक उम्र के हिसाब से सोने की कुछ लिमिट है वो तय की गई है। जैसे कि नवजात बच्चे हैं, जो 0 से 3 महीने के बच्चे हैं नवजात, उनको हर दिन 14 से 17 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। शिशु जो 4 से 11 महीने के हैं, उनके लिए 12 से 15 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों में जो 6 से 13 साल के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए 9 से 11 घंटे सोने की जो है वो सलाह दी गई है। किशोरावस्था में जो 14 से 17 साल के किशोर हैं, उनके लिए 8 से 10 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त बताई गई है। दोस्तों, औसतन एक व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। इसलिए दोस्तों, शरीर का स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए अपने सोने की दिनचर्या और सोने का समय सही निर्धारित करें, भरपूर नींद लें और पर्याप्त नींद लें।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा दे

0: की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: श्रोताओ, पूरे देश में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। श्रोताओ, प्रदेश और देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी बीच बच्चों ने मिट्टी से बनाए हैं गणेश। दोस्तों, मिट्टी को गूंथकर अच्छी तरह नरम करें और शरीर, सिर, हाथ, पैर व नाक, कान के लिए अलग अलग हिस्से तैयार करें। सभी हिस्सों को जोड़कर गणेश जी का आकार दें। अन्य बारीकियां भी मिट्टी से उभारें। ये टिप्स केवी प्रथम की हेड मिस्टेड डॉक्टर भारती यादव ने बच्चों को दिए। दोस्तों, स्कूल में प्राथमिक विभाग ने मिट्टी से गणेश प्रतिमा निर्माण प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में कक्षा चौथी और पांचवी के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने मिट्टी से गणेश की आकर्षक प्रतिमा तैयार की, साथ ही उनमें रंग भी भरे। उनकी कल्पना शक्ति, कलात्मक अभिरुचि और सृजनात्मक कौशल देखने को मिला। श्रोताओ, मिट्टी से बनी ये प्रतिमाएं पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। इन प्रतिमाओं को आप, छोटी प्रतिमाओं को आप घर में भी किसी बर्तन में विसर्जित कर सकते हैं। इससे पर्यावरण का बचाव होगा और यह पर्यावरण के अनुकूल हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए श्रोता साथियों, खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें।

शुदो दीवियों की रोशनी से जगमगाया भेजाताल, बारिश में भी नहीं थमा उत्साह। शुदो बारिश की बूंदों के बीच कल गुरुवार को शाम को भेजाताल दीवियों की रोशनी से जगमगा उठा। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह के साथ आशीर्वाद का दिया जलाया। बारिश के कारण कई लोगों ने छतरियों में दीप प्रज्वलित किए, जिससे भेजाताल का नज़ारा और मनोहरी हो गया। दीपों की रोशनी के बीच कई स्कूलों के बच्चों ने भी पारंपरिक परिधानों में सांस्कृतिक और देशभक्ति प्रस्तुतियां दी। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में सांसद मेला प्राधिकरण अध्यक्ष अशोक जाधवन, ग्वालियर जिला कलेक्टर रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त और साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रोताओं, छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक से बताया हिंदी का महत्व, वक्ताओं ने संस्कृति और परंपरा से जुड़ी भाषा बताया। श्रोताओं, विजयराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार में कल गुरुवार को हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने हिंदी को केवल संवाद का माध्यम न मानकर भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता से जुड़ी महत्वपूर्ण भाषा बताया। कार्यक्रम में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के प्रांत संयोजक धीरेंद्र सिंह भदौरिया ने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और शिक्षा के पारस्परिक संबंध पर भी विचार रखे। महाविद्यालय के प्राचार्य शिव कुमार शर्मा ने हिंदी के व्यावहारिक और विधिक पक्षों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों व शिक्षकों को अपने दैनिक जीवन में हिंदी के आधिकारिक प्रयोग के लिए प्रेरित भी किया।

चल हाथों की कलाकारी से बहमूज ले रहा नया रूप, सजावट से घरों में बड़ा आकर्षण। जी दोस्तों, प्लास्टिक की चकाचौंध के बीच अब लोग प्रकृति के करीब लौट रहे हैं। घरों को सजाने और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बैम्बू यानी कि बांस से बनी वस्तुओं की पसंद इसका एक उदाहरण है। श्रोता, कभी कभी सिर्फ टोकरी, डलिया और पारंपरिक घरेलू सामान तक सीमित रहने वाला बांस अब कुशल कारीगरों के हाथों से खूबसूरत और आकर्षक सजावटी वस्तुओं का रूप ले रहा है। बैम्बू लैंप, वॉल आर्ट, फ्लावर

पॉट, मग और बास्केट से लेकर अलग अलग तरह के शोपीस तक घरों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। श्रोताओ, बांस की खासियत यह है कि यह प्राकृतिक होने के साथ मजबूत और टिकाऊ भी है, और यही वजह है कि दोस्तों आधुनिक और सस्टेनेबल जीवन शैली अपनाने वाले लोगों के बीच इसकी मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। बांस से बनी वस्तुएं घर को प्राकृतिक और सुरुचिपूर्ण लुक तो देती हैं, और इनकी सबसे खास बात यह है कि एक ही सामग्री को अलग अलग तरीके से आकार देकर उपयोगी सामान से लेकर कलाकृति तक तैयार किया जा सकता है। श्रोता, बालाजी बिहार निवासी विकास अग्रवाल पिछले 40 साल से बांस से अलग अलग तरह की कलाकृतियां बना रहे हैं। वे बताते हैं कि इस कला को उन्होंने किसी से सीखा नहीं है, बल्कि इसे अपनी प्रतिभा, प्राकृतिक प्रतिभा मानते हैं। नौकरी और दूसरे कामों के बीच जब भी उन्हें समय मिलता है, वे आज भी अपने शौक के लिए बांस से नई चीज़ें बनाते हैं। उन्होंने कंबोडियन रिक्शा और बग्गी भी बांस से तैयार की है।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: दोस्तों, बांस से बनी चीज़ें बेहद ही आकर्षक होती हैं और बांस की प्राकृतिक बनावट को बनाए रखते हुए तैयार की गई ऐसी पेंटिंग अलग ही आकर्षण पैदा करती हैं। और दोस्तों, बांस की खासियत यह है कि इसे पारंपरिक वस्तु से आगे ले जाकर आधुनिक सजावट और जीवन शैली का हिस्सा भी बना रही हैं। घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ यह लोगों को प्रकृति से जुड़ने का एहसास भी कराता है। तो दोस्तों, आप भी प्लास्टिक से बने चीज़ों की जगह बांस और प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो और इस रोज़गार से जुड़े लोगों को रोज़गार मिल सके।

0: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
1: श्रोताओ, एक पेड़ लगाकर हम एक टन CO2 कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक बड़ा पेड़ रोज 21 किलो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखता है। 100 साल में यह कम से कम एक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। इस तरह दोस्तों, पेड़ हमारे पर्यावरण को स्वच्छ तो बनाता ही है, ऑक्सीजन के रूप में हर साल 10 लोगों को प्राणवायु भी देता है। अगर हर व्यक्ति हर साल कम से कम एक पेड़ लगाकर पर्यावरण को समृद्ध बना सकता है।

साथियों, एक शोध के मुताबिक 15% तक अधिक होती है उन घरों की कीमत जिनके आंगन में या आसपास पेड़ होते हैं। दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए और वर्षा अधिक हो इसके लिए ज़रूरी है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के लिए खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। श्रोता साथियों, अब समय चला इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, तो इस कार्यक्रम से अपने मित्र अजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साकेत कुमार का ध्रुपद धमार गायन। राग है भैरव, आपके साथ पखावज पर संगत की है जयवंत गायकवाड़ ने। तो आइए सुनते हैं साकेत कुमार का ध्रुपद धमार गायन, राग है भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवा रहे थे साकेत कुमार का ध्रुपद धमार गायन, राग था भैरव। आपके साथ पखावज पर संगत की थी जयवंत गायकवाड़ ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 10 बजने को हैं। अब जिले की चिट्ठी हम अपने भोपाल।
1: आकाशवाणी भोपाल से लीजिए अब सुनिए सतना जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सतना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात सेवा संकल्प अभियान की। जिले में सेवा, सद्भाव, सामाजिक सहभागिता और सकारात्मक संकल्प की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ भव्य रूप से किया गया। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय में आयोजित वृहद रक्तदान शिविर से की गई। रक्तदान शिविर में बड़ी तादाद में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हुए रक्तदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित कर सेवा और संकल्प के उजियारे का संदेश दिया गया। जिले के प्रमुख एवं आइकॉनिक स्थलों पर आकर्षक दीपमालाएं सजाई गईं। निर्धारित समय पर एक साथ दीप प्रज्वलित किए गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, सद्भाव, सहयोग और समाज के प्रति सकारात्मक दायित्व की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया। वहीं अगर जिले के मौसम की बात करें तो बारिश से भूजल स्तर बढ़ गया है, तापमान में भी गिरावट आई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अधिक बारिश हुई है। जिले में अब तक 1296 मिलीमीटर से अधिक औसत बारिश दर्ज की गई। जिले की औसत सामान्य बारिश 891 मिलीमीटर है। अधिक बारिश होने से बाढ़ की स्थिति भी बन गई थी। सभी जल स्रोत लबालब भर गए, नदियों में बाढ़ आ गई। शासन और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत कार्य किए गए। जिले में 16 सितंबर तक 7744 प्रभावित परिवारों के प्रकरणों में 3,74,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर वितरित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते 30 अगस्त को सतना जिले में भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचकर बाढ़ की आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों का मुआयना किया। राहत शिविरों में पहुंचकर उन्होंने सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों से चर्चा की। उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात कर बाढ़ की परिस्थितियों के दौरान हुई क्षति के बारे में जानकारी ली। प्रभावितों को प्रभारी मंत्री ने राहत सामग्री का वितरण और सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद उन्होंने चित्रकूट के भरत घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं साफ सफाई के कार्यों का जायजा लिया। सियाराम कुटीर में नेकी की दीवार का अवलोकन भी मंत्री ने किया। अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबर की। सतना शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 से 45 तक पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान बीते दिनों शुरू किया गया। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक UPHC एवं PHC में विशेष शिविर स्थल पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने अपने सतना प्रवास के दौरान बीते दिनों बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की एवं शासकीय हाईस्कूल का निरीक्षण किया। सतना जिले में जल जनित एवं संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर सतीश कुमार एस ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत हैजा, दस्त, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य जल जनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पेयजल की शुद्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा मच्छर और मक्खियों के नियंत्रण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सतना जिले में आधार सेवाओं को आम नागरिकों तक अधिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जिले में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आधार सेवा केंद्र का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। अब बात करते हैं त्योहारों की। गणेश उत्सव का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से जिले भर में मनाया जा रहा है। घरों और बड़े सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार, आरती और मोदक का भोग लगाया जा रहा है। कलेक्टर सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में बीते दिनों शांति समिति की बैठक में गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण भाईचारे की भावना और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर मनाने की अपील की गई है। वहीं अगर शासकीय अभियानों की बात करें तो मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत 11 सितंबर को उचहरा जनपद पंचायत के सभागार में जनसंवाद, जनसुनवाई और उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 130 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं और लंबित 2309 89 सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में से 1821 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस जनसुनवाई में सांसद गणेश सिंह, विधायक नागौद नागेंद्र सिंह और विभिन्न विभागों के जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में कलेक्टर और एसपी ने उचेहरा शासकीय सांदीपनी विद्यालय पहुंचकर कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं से संवाद किया। इसके बाद में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचेहरा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और रोगियों के उपचार संबंधी जानकारी ली। निर्माणाधीन सांदीपनी विद्यालय भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। सतना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म प्रेम गीत का ये गीत लिखा है इंदिवर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है जगजीत सिंह ने।

अनारकली बाजार जगराव पंजाब से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा। गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी ने।

और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। बठिंडा रोड मंडी से, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लगी नारंग, तानिया नारंग ने। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर फिल्म प्रेम गीत का ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कृष्णा पार्क दिल्ली से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दबाना गुरुवंश सिंह जोड़ा ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब?
2: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में अभी अपने सुना फिल्म प्रेम रोग का ये गीत। गीत लिखा था नरेंद्र शर्मा ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारे ढाल ने। चर डोगरी पपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी। ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव ने, और इसी गीत को सुनने के लिए हमें लिख भेजा था। ग्राम इटवा से मोहन सिंह रावत और लक्ष्मी देवी रावत ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म गुलामी का ये गीत। गीत लिखा था गुलजार ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था दादार सिंह, संगीता तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने, और इस गीत को संगीत सुनने की फरमाइश की थी जिला ग्वालियर से धर्मेंद्र रजक, प्रीतम सूर्यभान रजक, इकबाल खान और सलामत खान ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

अनुराधा पडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म दूध का कर्ज का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। सौदागर संतरपुरा से इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा ने, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी। चौरसिया कॉलोनी ग्वालियर से कालू चौरसिया, पालू चौरसिया, लखन चौरसिया और रेखा चौरसिया ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

रक्तदान जीवन का उपहार है। आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

0: शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म बेताब का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से इससे इस गीत को सुनने के लिए हमें लिख दिया था मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई भाई भाईजान, राजकुमार बोडाना और वर्मा परिवार के सभी सदस्यों ने। और इस गीत को सुनी फरमाइश की थी ग्राम दुल्हापुरा जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने।
1: याद रखो हमारी बात,
2: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
1: जंगल है धरती का गहना,
2: सदा इसकी रक्षा करना,
1: होगी जो धरती पर हरियाली,
2: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम वॉट्स ए फरमाइश। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय स्वागत 10:58 मिनट होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में भाग लेंगे। वे मध्य प्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण कर स्वीडिश एवं जापानी प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद करेंगे। उज्जैन में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय युवा धर्म संसद का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद युवाओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कल सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में आयोजित 388 रक्तदान शिविरों में 8684 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत पर प्रदेश के सभी जिलों और 845 ऐतिहासिक और महत्व के स्थलों पर 3,55,00,000 दिए जलाए गए। उज्जैन में ही 33,27,000 दिए एक साथ प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के 7,400 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कल ई स्कूटी वितरित करेंगे। इन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के माध्यम से स्कूटी प्रदान कर उनकी आगे की शिक्षा को आसान बनाया जाएगा। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 27 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 85 शोधार्थियों को PhD की उपाधि दी जा रही है। और मौसम विभाग ने प्रदेश सहित कई राज्यों में आज तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
5: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। और श्रोताओं, जैसा कि कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने, तो हम अपने जो नए श्रोता हैं उनको अपना फोन नंबर बता देते हैं। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल के STD कोड है 0755। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। और अब हम देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
6: हेलो
5: जी, कौन बोल रही हैं, कहां से बोल रही हैं?
6: जी मैं जबलपुर वरेला से वंदना उपाध्याय बोल रही हूं।
5: वंदना जी, क्या हाल चाल है?
6: बढ़िया है सर, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
5: बस बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बहुत अच्छा हूँ।
6: एक महीने बाद फोन लगा मेरा।
5: अरे वाह, देखिए कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो लग जाता
6: है। महीना हो गया पूरा लगा मेरा फोन। बहुत खुशी हो रही है।
5: देखिए खुश होने वाली बात ही है कि देखिए
6: आप इतने दिनों से ट्राई कर रही है, एक महीने से लग ही नहीं रहा।
5: हाँ देखिए, जब कोशिश हम लगातार करते हैं और जब कोशिश कामयाब होती है तो हमें वाकई बहुत ज्यादा खुशी होती है ना।
6: हाँ हाँ तो आपका तो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहती जावेद सर।
5: अरे क्या बात है, आप नाम भी पहचानने लगी।
6: मतलब सभी को, सबको जानने लगी वो।
5: आपने कॉल किया है तो लाजमी है कि आपने एक अच्छा सा गाना भी सोचा होगा।
6: हाँ गाना तो सोचा है खुशी, और जब फोन लगता है तो भूल जाते कि कौन सा गाना करे, अब कि पुराना करे कि नया करे, कंफ्यूज हो जाते।
5: अच्छा नहीं तो आप जो आपका अच्छा लग रहा है
6: दीजिए वो वाला गाना।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन
1: हेलो
0: करेगी
1: सर
0: सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: ग्राम सनोतिया जिला गुना
0: जी।
1: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: तो मांगीलाल जी, क्या हाल चाल है?
1: सर जी आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया हालचाल है और मैं मालिक से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी दुआएं बिल्कुल कबूल हो गई। हाँ
1: बहुत दिनों बाद बात हो रही सर जी, अच्छा लग रहा है आज आप आए। आपको धन्यवाद मेरा कॉल रिसीव किया।
0: तो लाजमी
1: नहीं
0: है
1: वो तो
0: कि
1: बात सही है लेकिन लगता नहीं है ना, इसलिए
0: हाँ, ये बात
1: बहुत
0: तो है।
1: बेस्ट आता है आपका नंबर।
0: अब वो क्या है कि गिने चुने कॉल से हम रिसीव कर पाते हैं।
1: और क्या, और कॉलर हैं ज्यादा, समय है
0: हाँ,
1: कम।
0: समय है कम। तो चलिए, आपने इतनी अच्छी बात कही मांगीलाल जी, तो बताइए आपको हम कौन सा गाना सुनवाएं।
1: सर जी फिल्म का नाम है मदर इंडिया।
0: अरे वाह, क्या बात है! मदर इंडिया का कौन सा गाना?
1: दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन
0: वाह
1: है जहर तो पीना ही पड़ेगा।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाना आपने चूज किया है। हाँ, लता जी की आवाज में बहुत सुंदर गाना है। तो
1: जी।
0: चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: सर जी
0: सुन,
1: कुछ कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ।
0: हाँ कर लीजिए।
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा सर।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, ये लिस्ट बना के रखते हैं आप नामों की, या वैसे ही याद हो गए?
1: नहीं नहीं सर जी वो तो याद हो जाते हैं, याद हो जाते हैं।
0: अच्छा, याद हो जाते हैं, कुछ चीजें याद की जाती हैं और
1: हाँ
0: कुछ
1: हाँ
0: याद हो जाती हैं।
1: एकदम
0: चलिए,
1: याद आ जाता है, रटे भाई नाम है ना जी,
0: हाँ, तो
1: मुंह में
0: मांगीलाल जी
1: रटे भाई
0: हम आपको
1: नाम।
0: सुनवा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।
1: जी

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर, मैं कटनी से बल्लू नामदेव बोल रहा हूँ।
0: बल्लू नामदेव जी, क्या हाल चाल है?
1: सब बढ़िया सर।
0: और सुनाइए कैसा मौसम हो गया अब?
1: मौसम यहाँ पे बढ़िया सर, धूप खिली हुई है इस समय।
0: हाँ,
1: बरसात तो इस समय नहीं हो रही जी। सर मेरे को एक गाना सुनना था।
0: हाँ बताइए ना, गाना बताइए, हम गाना ही सुनवा रहे हैं, बताइए
1: जी सर। ये भीगी पलकें,
0: भीगी पलकों का कौन सा गाना?
1: जन्म जन्म का सांस है।
0: आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार गाना है भीगी पलके का। तो चलिए हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किसे हो रही है?
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: फेज भाई क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है सर, एकदम खैरियत में है।
0: हाँ हाँ, तो खैरियत में रहना चाहिए।
1: हाँ
0: तो फेज भाई कैसा मौसम, कैसा है
1: मौसम फिलहाल? अभी बस धूप छाए हो रही है, कभी गर्मी पड़ती है कभी बादल छाए हुए हैं। फिलहाल तो चार पांच दिन पहले थोड़ी बारिश हुई थी सर।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो फैज साहब ये बताइए कि आपने कॉल किया है तो लाजमी है कि आपने बहुत ही अच्छा गाना सोच के रखा होगा।
1: गाना तो सुना दीजिए, फिल्म का नाम है राम लखन।
0: राम लखन का कौन सा गाना सुनेंगे?
1: उसका गीत है ना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने।
0: अरे बाबा, तो इस उम्र में आपको कौन सा दुख लग गया?
1: और अपने को नहीं लाया, लेकिन लता जी के आज में गीत है।
0: चलिए हम आपको सुना रहे हैं।
1: इसमें जो म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
0: का। नहीं हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।
1: हाँ,
0: और ये 1988 में फिल्म आई थी।
1: हाँ,
0: इसमें लता जी का सिर्फ एक ही गाना था, बाकी के जो है अनुराधा पौडवाल का एक गाना था, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के, मनहर उदास का एक गाना था और लता जी का एक गाना था। हाँ, और तीन गाने थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के, और एक कविता कृष्णमूर्ति का गाना था। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो चलिए सुपर हिट फिल्मों में रहिए, हम आपको सुनवा रहे हैं, आपके रेडियो सेट पर जरूर सुनिएगा ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन करेंगे सुने और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। श्रोताओं, गाना पहले से सोच के रखिएगा कि आपको कौन सा गाना सुनना है। हमारे अगले कॉलर कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जावेद खान सर बोल रहे हैं आप?
0: हाँ, मैं तो जावेद खान बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं रामबाबू मालवी बोल रहा हूँ। सर अभी दो दिन पहले आपने रिकॉर्डिंग करी थी हमारी, काट दी सर, उस दिन चला ही नहीं आपने, संडे के दिन की।
0: नहीं देखिए, वो काटी नहीं है, बल्कि दरअसल क्या है, कोई अगर प्रोग्राम आ जाता है, कोई इमरजेंसी,
1: कोई संगीत वाला प्रोग्राम आ रहा था तो वो आ नहीं पाया था प्रोग्राम।
0: अच्छा, रामबाबू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बार लगाते हैं वैसे हम।
0: हाँ हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं रामबाबू जी?
1: जी सर मैं कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवी बोल रहा था।
0: हाँ हाँ, कोलार भोपाल से।
1: हाँ जी सर्वधर्म अपने चुना।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि देखिए

0: गाना सुनने से पहले आपकी क्या जिज्ञासा होती है कि हमारा फोन लगेगा तो हम क्या क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं?
1: बिल्कुल, हमारे तो ये सबसे पहले ये थी कि हमारा प्रोग्राम में वो उस दिन फोन लगा था, ये थी। और दूसरी बात ये है कि हमारे दिल की बात भी बोलते हैं हम, अच्छा लगता है। और जितनी भी श्रोता फोन लगाते हैं दूर दराज से, उनकी बातें सुनते हैं और उनकी जो पसंद के गाने हैं वो सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है आकाशवाणी से।
0: अरे वाह, क्या
1: और
0: बात है।
1: जी सर,
0: ये गीत सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने। इसमें श्रोता अपने पसंद के गीत सुनते हैं और अगले कॉलर कौन है उनका कॉल आ चुका है, हम उनसे बात करते हैं। तो हमारे नए श्रोताओं से भी आपको सुनने का मौका मिलेगा।
1: गणेश भाटी बागली जिला देवास से।
0: गणेश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बागली जिला देवास से।
0: देवास से, क्या बात है। हाँ, तो देखिए अभी तो गणेश जी का सीजन भी है।
1: हाँ,
0: है ना, तो इसलिए आपने अच्छा ऐसा गाना भी सोच के रखा होगा।
1: गाना ये सुना दीजिए, देवा हो देवा गणपति देवा,
0: तुमसे बढ़कर कौन।
1: हाँ,
0: है ना, बहुत अच्छा गाना आपने चूज किया है और हम आपको सुनवा रहे हैं आपके रेडियो सेट पर। जरूर सुनिएगा फिल्म हमसे। हाँ, बढ़कर कौन का ये
1: हमसे बढ़कर कौन। हाँ।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करेगी
1: सर। नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं स्वाति बोल रही हूँ, आला महाराष्ट्र से, तहसील खामगा, जिला बुलढाणा।
0: बुलढाणा से? और सुनाइए, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे बात करके बहुत खुश हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। तो आप क्या गृहिणी हैं या कोई काम भी करती हैं?
1: नहीं, मैं ड्राइंग हूँ, मैं घर पे रहती हूँ।
0: अच्छा, घर पे रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आपने फोन करे गीत सुने में हिस्सा लिया है, तो लाजमी आपने कोई गाना सोच के रखा होगा।
1: जी, राधा का संगम फिल्म का गाना।
0: राधा का संगम फिल्म का गाना आपको सुनना है?
1: जी, होगा होगा होगा, राधा का संगम गाना है, उसमें अनुराधा पौडवाल की आवाज है। और आधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा, वो भी गाना है उसमें।
0: गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।
1: जी सर, थैंक यू, पहली बार कॉल लगाया मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
1: जी नमस्कार, मैं राजेश वर्मा बात कर रहा हूँ, बसाई दरवाजा छतरपुर से।
0: राजेश जी, इतनी देर क्यों लगी बात करने में?
1: जी दूसरा मोबाइल चालू था ना, इसलिए उसमें दोनों से चल रहा था।
0: अच्छा, हाँ तो जब भी आप कॉल किया करें तो एक ही फोन से बात किया करें और अपनी आवाज को इस समय सुनने की कोशिश ना किया करें।
1: मैं फोन करेगी सुनो कार्यक्रम में कम से कम 1.5-2 महीने से बात लगा रहा हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात।
1: राकेश वर्मा जी,
0: तो राकेश वर्मा जी आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगते हैं?
1: बहुत अच्छे लगते हैं। वे भोपाल से जब जो है जी फोन करेगी कार्यक्रम तो जी अभी चालू हुआ है, पहले एसटीडी से मैं लगाया करता था, तो एसटीडी जब चलती थी।
0: हाँ,
1: उद्घोषकों का बहुत ध्यान से नाम सुनता हूँ, बोलता भी हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है। तो आज ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: एक फिल्म है 10 नंबरी।
0: 10 नंबरी, क्या बात है। तो आप
1: उसमें है कहत कभी सुनो वे साधु, ऐसे गीत है वो।
0: अच्छा, तो कहत कबीर, ये दुनिया एक नंबरी वो तो नहीं?
1: मुकेश जी की
0: आवाज में है, मजरूर सुल्तानपुरी जी ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है।
1: मुकेश की आवाज में है सर जी।
0: हाँ, मुकेश जी की आवाज। जी जी, चलिए तो हम आज आपको सुनवा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म 10 नंबरी
1: का। फोन अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और सभी स्टाफ को, सभी सुनने वालों को
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं सुरनपाल सिंह गुर्जर।
1: क्या हाल चाल है?
0: अच्छे है, आनंद है, कोई खूब आनंद से है।
1: अच्छा, अब बताइए कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं ग्राम बाबूपुरा तहसील कोंच जिला जालौन से बोल रहा हूँ, सुरनपाल सिंह गुर्जर।
1: जालौन यूपी
0: जी।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
0: ये फोन गीत हमारे बात आपकी और ये फोन करे गीत सुने। हेलो,
1: चलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें। अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे?
0: मुझे सुनना है उपकार फिल्म का, मेरी देश की धरती सोना उगले।
1: क्या बात है, बहुत शानदार गाना है, महेंद्र कपूर जी की आवाज है।
0: जी जी
1: है ना, और इसमें

0: गुलशन बावरा जी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। तो चलिए तो हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं। और ये फिल्म 1967 में आई थी, 67 या 69 में, 67 में आई थी ये फिल्म, है ना। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उपकार का ये गीत। सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: नमस्कार साहब।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति जावेद की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में शामिल होंगे। वे मध्य प्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण कर स्वीडिश एवं जापानी प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव यहां प्रदेश के उद्योग एवं अकादमिक क्षेत्र के हितधारकों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सेवा से संकल्प अभियान के तहत 17 अक्टूबर तक ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर सेवा सेतु कैंप आयोजित किए जाएंगे। आयुक्त महिला एवं बाल विकास संदीप जी आर ने कहा है कि अब संभाग तथा जिला स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय बुधवार को शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी और कर्मचारी तक अपनी सेवा संबंधी समस्याएं और आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के 7400 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कल ई स्कूटी वितरित करेंगे। इन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के माध्यम से स्कूटी प्रदान कर उनकी आगे की शिक्षा को आसान बनाया जाएगा। आगामी धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा महाविद्यालयों की मेस में शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन के लिए अलग अलग किचन रखने के निर्देश दिए हैं। और एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगी। रिकॉर्ड 8वां एशिया कप खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम एशियाई खेलों में उतर रही है। भारत की टीमें आज सॉफ्ट टेनिस और टेक बॉल में भी मुकाबले करेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। इसमें पहला पत्र शामिल कर रहे हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष की। ये खत है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू की। कालका से शुभचंद बजाज, महेश बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमे।

और सम्मति पंचोलिया, सुनना पसंद किया है फिल्म राजपूत का गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी ने बोल लिखे, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारे।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश मिली है धामड़ी मनोरा महाराष्ट्र से, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे की। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की है। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर रही, श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहाणकर, प्रणीता गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर, टुकटुक आकाश आकार हाइट बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलिश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी की। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता की। सुनना पसंद किया दोस्ती फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी का गाया हुआ। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा की। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से मोहम्मद हलवाइन, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी और हिना कौसर की। गंगा की लहरें फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है। चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में मजू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा।

कार्यक्रम में अगला गीत अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से रेखा देवी, श्वेता देवी और सुरुचि देवी श्रीवास्तव की है। दतरेंगी से भागवत वर्मा ने अपनी पसंद भेजी है। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी की है। गोला बाजार बक्सर से अभयानंद आर्य, श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की पसंद है। सौदागर फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक।
1: ये गीत है फिल्म डॉन से किशोर कुमार का गाया हुआ, सुनना पसंद किया है। कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु की पसंद है। असालतरपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, जुबैर अंसारी की और जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट की।

किशोर कुमार के गाए फिल्म डॉन के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान। महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की

एक पहल, क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक जमुनिया की 31वीं कड़ी।

0: अब तक के अंकों में हम जो कुछ जमुनिया के जीवन के बारे में सुनते आए हैं, उससे एक प्रश्न मन में सहज ही उठता है कि क्यों हमारा समाज स्त्री को अबला कहता रहा है। पुरुष को पैदा करने की क्षमता रखने वाली स्त्री पुरुष से कमतर हो ही नहीं सकती। समाज में अपनी क्षमताओं को स्वीकार्य बनाने के लिए एक स्त्री को बहुत कुछ करना होता है और सहना भी होता है। जमुनिया का जीवन भी अपवाद नहीं रहा। पति की असमय मृत्यु से मिला दारुण दुख, अपनों से मिले बेगानेपन की पीड़ा, भीषण गरीबी, क्या कुछ नहीं सहा जमुनिया ने इस मुकाम तक पहुंचने में जहां आज वो है। और सिर्फ है ही नहीं, वरन पूरे आन बान और शान से है। जिले और प्रदेश के सफलतम सरपंचों में गिनती है फतेहपुर गांव के महिला सरपंच जमुनिया की। सरपंच के रूप में जमुनिया की कार्यशैली आज उदाहरण के रूप में पेश की जाती है। इतनी सफलता के बाद भी जमुनिया ने अपनी सहजता को खोया नहीं है। सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया है जमुनिया के नेतृत्व में फतेहपुर की पंचायत ने। पर कहते हैं ना कि ऐसा नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिसका कोई विरोधी ना हुआ।
1: काय सरपंच जी, बाहर चरण की मोड़ी के ब्याह में नहीं जाने हैं का?
2: ये कैसी बात पूछ ली फूल सिंह भैया? गांव की मोड़ी यानी अपन सब की मोड़ी, हाँ। कहे ना जाएंगे ब्याह में?
1: अरे एक ही लाने पूछ लीजिए बात, काय से के बारात दुआरे लगवे वाली है।
2: अच्छा?
1: और आप अभी तलक पंचायत के दफ्तर में धुनी रमाए बैठी हो।
2: लगता है शहर से बैंड मंगवाया है ना?
3: हाँ, और ये तो बहुत खर्चीला काम लगता है।
1: अरे जयंत भैया, हमारे जैसा पुराने जमानों को ब्याह थोड़ा ही होता है आजकल कि मोड़ा मोड़ी के घर गए, गांव वाले जुट गए, गावो बजावो करो, खावो पीवो करो, भावरे हुई और मोड़ी को लेकर के चल दे।
3: फूल सिंह भैया, जमाने के साथ बदलाव अच्छा है पर फिजूल खर्ची ठीक नहीं है।
2: एकदम दुरुस्त बात कही आपने।
1: पर सुनता कौन है सरपंच जी ऐसी बातें आजकल? होड़ मची आपस में कि भैया तुमने इतना खर्चा कर दाओ तो लो हम इतना कर दें।
2: होड़ के चक्कर में चादर से बाहर पैर पसार लेते हैं और फिर कर्ज बहुत हो गया का रोना रोने लगते हैं।
3: अरे सरपंच जी, ये आपकी पंचायत का मामला नहीं है, निजी मामला है।
2: अरे मगर जिसके पास पैसा होता है वो तो खर्च कर लेता है और देखा देखी के चक्कर में समाज में चलन बिगड़ता चला जाता है।
1: अरे सरपंच जी, बनंद को राम को ही ले लो, शान शौकत और दिखावे के फेर में जम कर पैसा खर्च कर दिया मोड़ी के ब्याह में और अब भी परेशान है कि भैया कर्जा कहाँ से चुकाएं, कैसे पटाएं।
2: चलिए बंद करिए दफ्तर। सुनिए, बारातियों से पहले खराती पहुंच जाएं दरवाजे पर, है ना?
1: हाँ, बिल्कुल सही। चलिए
2: चलिए।

0: बधाई हो हरचरण भैया।
1: बधाई हो भैया।
2: जय राम जी की सरपंच जी। ओ जयंत भैया, जय राम जी की। पधारिए पधारिए, बस बारात अभी आने ही वाली है।
1: बहुत बढ़िया इंतजाम नजर आ रहा है शादी का।
2: हाँ, बस सब आप लोगों का आशीर्वाद है।
0: सुना है लड़का सरकारी अफसर है।
2: आप मोड़ी के भाग और आप लोगन और ऊपर वाले का आशीर्वाद ही तो है। अरे रमेश बेटा, आप लोगन का भीतर लिए जा और भोला को बोलना मिलनी की रसम का सामान लेकर दरवाजे के पास खड़ा रहे। हाँ
0: चलिए जमुनिया जी, भीतर चलते हैं शाम आने में।
1: आप चलकर बैठिए, मैं उधर जाती हूँ वो महिलाओं की भीड़ की ओर, है ना?
0: ठीक है। अच्छा सुनिए, पंगत से निपट जाए तो बता दीजिएगा, आपको घर छोड़ दूंगा।
1: अच्छा ठीक है।
3: आइए आइए आइए मंगल पहलवान, क्या पेश करूं सेवा में?
4: अरे बस शामगंज वाली बस निकल गई का?
3: अरे पहलवान, आपके यहाँ पहुँचने से ठीक पहले ही तो निकली वो शामगंज वाली बस। कोई आने वाला था क्या?
4: अरे वो उदय आ रहा हो तो बीरपुर से।
3: हाँ
4: हाँ, बस से उतरते दिखो का?
3: हाँ उदय पहलवान दिखे तो थे बस से उतरते हुए।
4: घर को निकल गए लगा थे।
5: वहाँ लागी बड़े भैया।
4: अरे अरे उदय, अरे हमने अभय वही तुम्हारे बारे में ही तो पूछो है।
3: आप दोनों बैठिए मालिक, क्या पेश करूं आपकी सेवा में?
5: बस दो चाय पिला दो, बढ़िया कड़क मीठी।
3: अरे चाय तो पिलाऊंगा ही, समोसे अभी अभी उतरे हैं गरम, कहो तो लगवा दूं।
4: अरे ठीक है लगवा दो। ये छोटे, अरे इतिया उते कोने में बेंच पे बैठा थे।
5: का भैया ये इतनी तड़का फड़की क्यों बुलाया बताओ तो?
4: अरे पिछले कुछ दिनों से जो गया दीन चच्चा है ना, बहुत गड़बड़ मचा रहा है।
5: सो कौन सी नई बात है, हैं? अरे बापू के नहीं रहने के बाद से उनको लगता है कि हम दोनों भाई अब अकेले पड़ गए हैं।
4: अरे आसपास के खेत बालों को भी खिलाफ में भड़का रहा है।
5: अच्छा, और ये भाभी बता रही थी कि खेत से पानी काटने की हरकत भी की उन्होंने।
4: क्या कहें छोटे, अरे बापू को मरे अभी साल नहीं बीतो, वो चच्चा ने आंगन में दीवार खींच दी, तुमने देख ली?
5: अरे ये तो बहुत ही गलत हरकत की है उन्होंने।
4: अरे आए दिन कछु ने कछु करत रहे थे, कोई ना कोई हरकत करत है।
5: वो आप हमें कछु बताते ही नहीं हो।
4: देख छोटे, तू ठहरो सरकारी नौकर हैं, वो तो शहर में रहे थे, अब वहां भी तो तेरे साथ में 50 झंझटे हैं।
5: कैसी बात करत हो दद्दा, लेकिन घर तो घर हो तो है ना।
4: अरे हम सोचत हैं आए दिन की चच्चा की चकचक को रोबो तोरे सामने का रोई।
5: आए दिन? अरे इससे तो खानदान की बहुत ही बदनामी होगी।
4: अरे यही बात तो हमने चच्चा से कही। हमने कही देखो चच्चा, बापू के बाद आप ही हमारे घर के बड़े हो। सो हंसन लगी और बोले अरे तुम्हारा बाप तो बड़ो झूठो थो।
5: अच्छा, बापू को लेके हम कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे।
4: अरे मामला इससे भी आगे बढ़ गयो भाई, वो गंभीर हो गयो। पता चलो है कि रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके खेत को हिस्सा दबाने की फिराक में है जो चच्चा।
5: अरे ऐसे कैसे कर लेंगे हैं? कोई जंगल राज है क्या?
4: अरे हम इसीलिए तो तुम्हें लेवे बस स्टैंड चले आए, काहे कि घर में ये बातें नहीं हो सकते।
5: सो तो आपने ठीक किया।
4: अब हमसे बोले एक दिना कि पूरन मासी को पूजा करन है, घर के पीछे वाले दोनों कमरा हमें चाहिए। अरे हमने सोचो धर्म को काम है, सो हमने कही हाँ चच्चा जरूर ले लो जरूर ले लो, और कछु काम हमारे लायक है तो बोलो।
5: और खाली किए या नहीं किए कमरे?
4: अरे किए लेकिन बहुत ही मुश्किल से। जब हमने कही देखो चच्चा, ये चच्चा और भतीजों के बीच में फौजदारी हो जाए, हाँ ऐसो काम ना करो चच्चा।
5: अब आप फिक्र ना करो, हम आ गए हैं आपके साथ। हाँ और पूरा मामला सलटा के शहर जाएंगे। हाँ
4: हाँ ठीक है ठीक है।

0: देव मंगलवा जी अपने पिल्लों से कह दे कहीं और जाकर खेले, हमारी पूजा में बाधा पड़ती है।
1: ए चाचा, अगर वे पिल्ला है तो आप आई के पोता पोती हैं।
0: ओहो, तो छोटे पहलवान भी पधारे। तो पहलवान सुन लो कान खोल के कि वे पिल्ले हैं और हमारी नजर में पिल्ले ही रहेंगे, हमारे पोता पोती नहीं, समझे?
1: ए जो कहना है हमसे कहो, बच्चों का अनसंट बोला तो
0: हम अंटसंट बोल रहे हैं। अच्छा, बुजुर्ग चाचा से यही बात करने की तमीज सिखाई तुम्हारे बाप ने।
1: बुजुर्ग? अरे बुजुर्ग से बर्ताव तो करो पहले।
0: मुंह बंद रख अपना, वरना ठीक ना होगा।
1: और सुनो, अभी तो केवल मुंह खोला है हमने, और जिस दिन हाथ खोल दे ना उस दिन।
0: खोल तो खोल अपना हाथ, फिर देख क्या करते हैं हम।
2: अरे छोटे, अरे काय को इन छोटों के मुंह लगाते तू हैं?
0: चुप, जब के पास फटकना भी बस, मैं तेरी भैंस दिखे आस पास।
2: अरे खेत हमारे हैं, हमारे वह हमारी भैंसे हैं तो खूब जाए।
0: अच्छा, तो कौट देंगे तुम्हारी भैंसिया को, जो कहा वहाँ दिखी। तो
2: देखो देखो चाचा, हमारी भैंस को हाथ लगो ना तो हम गर्दन काटते हैं।
0: ए, तेरी मौत आई है लगता है।
1: ए, ए, अब तो डंडा ही तय करेगा किसकी मौत आई है।
2: अरे अरे उदय, अरे उदय तोरी भाभी गिर गई। अरे भाभी गिर गई तोरी भाभी, भाभी को लग गई, भाभी को लग गई। अरे भाभी, अरे मूल फूट गई, मूल फूट गई भाभी की तोरे, मूल फूट गई भाभी की तोरे।

0: अरे आइए आइए मास्टर जी, और सुनाइए क्या हालचाल है विद्यालय के?
1: अरे साहब सब बढ़िया है, भौजी तो कल ही आई थी स्कूल देखने।
0: अच्छा,
2: अरे अब तो स्कूल पहचान में नहीं आता, इतना बढ़िया हो गया है। और मास्टर जी ने एक छोटी सी बगिया भी बनवा दी है।
0: हाँ हाँ हाँ, अरे हमने भी देखी है, एक दिन उते से गुजरते हुए जे बढ़िया काम किया है मास्टर जी ने।
1: अरे साहब माहौल हरा भरा हो तो मन प्रसन्न रहता है।
0: ये तो है। अरे वो जो राम राम
3: राम राम साहब,
4: सभी को राम राम
0: राम राम राम राम राम राम।
4: सबसे पहले देर से आने के लिए माफी चाहते हैं।
0: अरे
4: आज्ञा हो तो कार्रवाई शुरू करें।
2: जी जी, पहले बैठ जाइए, पानी वानी तो पीजिए।
1: जी
4: लो पी लिया पानी।
2: अरे आपने अच्छो अच्छो को पानी पिला दिया संघर्ष में। अब हम ये कह सकते हैं कि हमने आपको पानी पिला दिया।
5: चलिए अब बैठक की कार्रवाई शुरू की जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: चलिए बैठिए। माननीय सदस्यों और विशिष्ट अतिथिगण, संक्षिप्त सूचना पर आप यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।
0: धन्यवाद की क्या बात है।
4: आप जानते ही हैं कि हम हमारे द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा के लिए समय समय पर बैठक आयोजित करते रहते हैं।
0: हाँ,
4: क्यों
0: हाँ,
4: है ना?
0: हाँ, बिल्कुल।
4: जिनमें पंचायत सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। जैसे कि मास्टर जी पधार चुके हैं, शेष प्रतिनिधि भी आते ही होंगे, है ना? मेरा विचार है तब तक कार्रवाई शुरू कर दी जाए, ठीक है?
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल। सरपंच जी, मेरा विचार है मनरेगा से शुरुआत की जाए।
5: बिल्कुल
4: ठीक ठीक।
5: आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने की इस योजना ने हमारे गाँव के बहुत सारे परिवारों को रोजगार मुहैया कराकर उनको लाभ पहुँचाया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। रोजगार उपलब्ध कराने के साथ जो विकास कार्य इस योजना के तहत हमारे गांव में हुए हैं उनकी रिपोर्ट मैं पिछली बैठकों में प्रस्तुत कर चुका हूं, है कि नहीं?
2: बिल्कुल हाँ, बिल्कुल।
0: और अब ताजा स्थिति यह है कि जिन लोगों का भुगतान रुका हुआ था उन्हें भुगतान कर दिया गया है।
2: हाँ,
0: और कुछ लोगों को कम दिन काम मिला था उन्हें भी नियत दिनों तक रोजगार दिया जा चुका है, जिसके भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
2: स्वास्थ्य संबंधी कामों की ताजा स्थिति ये है कि NRHM के सभी लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य संतोषजनक रूप से भी चल रहा है।
0: अरे बढ़िया बढ़िया।
4: मास्टर जी,
1: जी
4: सर्व शिक्षा अभियान में किए जा रहे कामों की क्या स्थिति है?
1: जी वो स्कॉलरशिप, फ्री पुस्तक वितरण और मिड डे मील के कारण इस वर्ष विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या काफी बड़ी है।
4: अरे वाह,
0: ये तो है,
4: बहुत अच्छा।
1: विद्यालय में पीने के पानी का इंतजाम पूरा हो चुका है और शौचालय निर्माण का कार्य भी समाप्ति की ओर है।
4: अरे वाह।
5: और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें जरूर प्राप्त हुई है।
4: हाँ, इस विषय में शिकायतों की जाँच तत्काल की जाएगी और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
5: और सड़क योजना के अंतर्गत 2 किलोमीटर की लंबी सड़क के निर्माण का प्रस्ताव ऊपर भेज दिया गया है।
4: अरे वाह। अच्छा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की क्या स्थिति है?
0: सरपंच जी, पिछली बैठक में बिजली कनेक्शन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा हुई थी और मुझे समिति को बताने में हर्ष है कि इस विषय में प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश का निराकरण किया जा चुका है।
2: अरे
1: अच्छा।
2: और बात चली है इसलिए बताना चाहूंगी, हालांकि आप सभी जानते ही हैं कि गांव के कुछ लोग बिजली चोरी जैसे अवैध कार्य भी कर रहे हैं।
0: ये तो है।
4: मुझे भी इस तरह की कुछ शिकायतें हाल ही में मिली हैं।
1: बहुत गंभीर और उतनी ही शर्मनाक बात है।
4: बिल्कुल।
1: कि ये हमारे गांव में हो रहा है।
0: अब देखिए, हमारे गांव को आदर्श गांव कहा जाता है।
1: बिल्कुल
5: हाँ, और हम सबके सम्मिलित प्रयासों से ये दर्जा हमें हासिल हुआ है।
2: मुट्ठी भर लो, गांव की प्रतिष्ठा को दाग लगाएं, ये हम होने नहीं देंगे।
3: हाँ हाँ, नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
2: अरे भैया, उनको जाने दो। अरे भैया,
6: अरे रुक जाओ,
4: इमरती भाई कौन है? भेजो अंदर जो भी है।
7: जमुनिया जी, वो मंगल पहलवान चाचा से मारपीट कर रहे हैं।
4: मारपीट? क्या हुआ? उफ़ो, लो पहले पानी पियो, फिर बताओ क्या बात है।
7: जल्दी चलिए, आपके पड़ोस में चाचा भतीजे में लाठीबाजी हो रही है।
4: लाठीबाजी? थोड़ी देर पहले मैं आई तो सब ठीक था,
7: पर अभी तो मंगल पहलवान की औरत घायल पड़ी है।
4: हाँ,
7: वो सिर फूट गया उसका। वो पहलवान का छोटा भाई उदय भयानक लड़ाई कर रहा है।
4: हे भगवान, बैठक अभी स्थगित कर होती है। हाँ, पहले वहां चलते हैं। चलिए चलिए।
8: अरे बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। और बाकी लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? पकड़ो पकड़ो इन तीनों को, पकड़ो।
9: देखो चचा, देखो
4: सबसे पहले मंगल की बहू को मरहम पट्टी के लिए अस्पताल ले जाओ। राधेलाल, ले जाओ बहू को। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, खुद के खानदान की इज्जत को इस तरह मोहल्ले में कोई बेइज्जत करता है।
10: ये परिवार का मामला है।
11: अबे चुप, परिवार का मामला है, यदि ऐसा है तो घर के अंदर का है ना निपटा लिया जाए परिवार का मामला।
12: हाँ, अरे हम कहते ये मामले की असली जड़ जो चच्चा है चच्चा, हम इसे ही निपटा देते। हाँ,
8: अरे हम चाचा चाचा कर रहे हैं और ये हम ही पे लट्ठे भाज रहे हैं।
12: अरे हम तो भैया इनके बुढ़ापे को ख्याल कर रहे हैं और इनके लट्ठ बचा रहे हैं। हमने वार नहीं करो, पर हम पे वार नहीं चलो सो हमारी चोरू को सर फोड़ दो इन्हें।
8: अरे तेरी तो बुढ़े में।
11: अरे चाचा से बदतमीजी से बात करते हो?
8: अच्छा, हमें बदतमीजी पर डांट रहे हो, उनसे कछु नहीं कह रहे?
12: अरे इतने देखो, इतने अरे हमारे जार हाथ दाएने हाथ में लगी एक लट, वो तो पीठ में लगो एक लट, लेकिन हमने बार नहीं करो भैया।
8: तुम बार कैसे करोगे? बार के लिए दम चाहिए बाजुओं में। अरे एक हमारे हाथ का लट चल जाता ना खोपड़िया में तो इतने में ही तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता।
4: झगड़ा एकदम बंद, शाम को दोनों पार्टी पंचायत में आएगी।
12: ठीक है, आ जाएंगे।
8: ठीक है, आ जाएंगे।
12: आ जाएं, आ जाएं। चलो उधर आ जाएं।
8: क्या दिक्कत है?
12: चलो आ जाएं।

0: चलो चलो भैया भैया चाचा चाचा तुम इधर आ जाओ, चलो इधर बैठो,
1: उधर बैठ जा, अरे उधर बैठ जा।
2: पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। आज दिन में हमारे गांव में जो हुआ वो हम सब के लिए शर्मनाक है।
0: बिल्कुल, एक ही परिवार के लोग आपस में लड़ पड़े।
3: आपसी मन मुटाव कभी कभार सभी घरों में होता है।
2: जहां चार बर्तन होते हैं वो खटकते भी हैं।
3: पर लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि फौजदारी की नौबत आ जाए, बहुत बुरा, बहुत बुरा है,
0: बहुत बुरा है।
2: अब दोनों पक्ष पंचायत के सामने अपना पक्ष रखेंगे। पहले छोटे की बात।
4: ऐसा है भाई कि 6 महीना भाई हमारे पिताजी गुजर गए। अब जब तक पिताजी थे सो सब ठीक चल रहा हो, तो फिर एक दिन कहा भाई कि जे चचा है ना इन्हें आंगन में दीवार खींच दे, आंगन मार दो।
5: और क्रियाक्रम निपटा के हम तो नौकरी पर से शहर चले गए। और भैया से जब हालचाल पूछा तो यही जवाब मिला कि सब ठीक है।
4: अरे तो का कछु गलत बताते का?
5: एकदम गलत बताए थे आप है? अरे नाम के पहलवान है, वैसे भोले भंडारी है, है? 2 महीने बाद हम गांव आए तो दीवार से आंगन बटा देख धक्के रह गए। हमने चाचा जिसका अप्रोच जताया। फिर
4: अब देखो जवाब में चाचा ने हमारे मरे बाप के लाने खूब ही बुरा हो भला कहो, हम झूठ नहीं कहे रामधई। अरे मरे बाप के लाने ऐसी बुरी बातें सुन के हम सोई ताव में आ गए। तो हमने फिर चाचा को 4 बातें सुना दी।
0: देखो पहलवान जरा संक्षेप में बताओ अपनी बात।
5: देखो भैया संक्षेप में ये है कि चाचा की हरकतें दिनों दिन बढ़ती गई। मकान में दीवार खड़ी की, खेत दबाने की कोशिश की और मेड़ तोड़कर पानी।
6: चुप, कितना झूठ बोलेगा रे।
2: आपको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ उदय भैया बोलो।
5: अरे ये करते जा रहे थे, हम सहते जा रहे थे और एक दिन तो हद कर दी, हमारी 3 भैंसे पकड़ कर अपने घर में बांध ली है।
4: अरे भैया देखो हमारे पिताजी नहीं है बापू, वही चचा घर के बड़े हैं, इनको बड़ा समझ के हम सब सह रहे थे।
5: और आज सुबह तो हद ही हो गई, इन्होंने हमारे बच्चों को पिल्ला कहा है। हमारे बच्चों को, पहले हमारे बाप को और फिर हमारे बच्चों को पिल्ला कहा।
4: शर्म नहीं आते नहीं।
2: चाचा हम अब आपसे जानना चाहते हैं।
6: हाँ तो हमारा बड़ा भाई यानी कि इनका बाप नंबर 1 का झूठा आदमी था, ऐसा झूठा और उसकी ये 2 झूठी औलादें।
4: देखो क्या कह रहे हैं देखो।
3: अरे अरे अरे आप बुजुर्ग है, पंचायत की मर्यादा बनाए रखिए, ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल न कीजिए।
6: अरे इनकी भैंसों ने हमारी खड़ी फसल को रौन दिया।
5: अरे सरासा झूठ है ये।
0: अरे आपकी फसलें तो खेत में खड़ी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
6: तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं?
3: अरे पंचायत की मर्यादा का ध्यान रखने की हिदायत हम एक बार फिर आपको दे रहे हैं।
0: हाँ।
2: आप लोगों की बात सुनकर लगता है कि बात उतनी गंभीर नहीं है जितना आप उसे बना रहे हैं।
0: हाँ चाचा, आपने यहाँ सबके सामने इनके पिताजी, बच्चों और खुद इनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है,
4: बिल्कुल
0: ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल सही।
3: इसके उलट उम्र कम होने के बावजूद इन्होंने बड़प्पन दिखाया।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
4: देखा बिटिया ने कैसी बात कही है?
2: जहाँ तक मकान खेत आदि की मिल्कियत का सवाल है तो उसका रिकॉर्ड सरकार के पास होता है, रिकॉर्ड चेक करके पता लगा लिया जाएगा।
0: हाँ और तब तक दोनों पक्षों को गलत सलत दावे पेश करके तनाव बढ़ाने का काम न करने की सलाह दी जा रही है।
3: दोनों पक्षों को धैर्य बनाए रखने का आदेश दिया जाता है।
0: बिल्कुल
4: हाँ हाँ, हम तो शांत ही हैं, हम तो शांत हैं।
2: सब आपस में प्रेम से समझदारी से रहें, यही पंचायत का आदेश है। दोनों परिवारों को पंचायत आदेश देती है कि मारपीट के मामले से दूर रहें और गांव में शांति बनाए रखें।
4: ये
2: स्पष्ट करना जरूरी है कि पहला अवसर होने से पंचायत इस बार दोनों पार्टियों को चेतावनी मात्र दे रही है, दोबारा ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
4: हम तो शांत ही।
2: सभा भंग होती है, चलिए
4: चलो चलो भैया। राम राम, राम राम, राम राम, राम।

एक भवन की मजबूती टिकी होती है उसकी बुनियाद पर। हमारे देश के लोकतंत्र की इमारत की बुनियाद है ग्राम पंचायत। किसी ग्राम की ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करे, सुचारू रूप से कार्य करे, तो उस गांव के विकास को कोई ताकत नहीं रोक सकती। फतेहपुर की सरपंच ने यही कर दिखाया, जो आपने हमने इस धारावाहिक के माध्यम से जाना भी। शिक्षा, रोजगार, विद्युतीकरण, सिंचाई, टेलीफोन सुविधा, सड़क निर्माण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सूचना का अधिकार, पंचायती राज, इनमें से कोई शब्द ऐसा नहीं जिससे फतेहपुर ग्राम के वासी परिचित ना हो। और ये संभव हुआ है सरपंच जमुनिया के नेतृत्व में पंचायत के अथक प्रयासों से। गांव के विद्यालय को ही लीजिए,

0: भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजना सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गांव का विद्यालय। विद्यालय में गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को मुफ्त कॉपी किताबें, छात्रवृत्ति, मिड डे मील, इन जैसी बातों ने विद्यालय में केवल संख्यात्मक नहीं वरन गुणात्मक बदलाव भी किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण अब फतेहपुर गांव आसपास के क्षेत्रों गांवों से जुड़ गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कारण फतेहपुर गांव के केवल घर आलोकित नहीं हुए वरन खेती किसानी को भी लाभ पहुंचा। फतेहपुर ग्रामवासी सूचना के अधिकार का प्रयोग बखूबी जानते हैं। टेलीफोन का इस्तेमाल अब यहाँ अजूबा नहीं रहा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बदौलत यहाँ के युवक आत्मनिर्भर बने। शेष ने मनरेगा में रोजगार पाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही लागू होता है विकास कथा पर। सो यहाँ हम विराम देते हैं जमुनिया और फतेहपुर की कथा को। नमस्कार।
1: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 31वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में शामिल होंगे। वे मध्य प्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण कर स्वीडिश और जापानी प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव यहां प्रदेश के उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के हितधारकों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सेवा से संकल्प अभियान के तहत 17 अक्टूबर तक ब्लॉक और तहसील स्तर पर सेवा सेतु कैंप आयोजित किए जाएंगे। आयुक्त महिला और बाल विकास संदीप जी आर ने कहा है कि अब संभाग और जिला स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय बुधवार को शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से लेकर जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी तक अपनी सेवा संबंधी समस्याएं और आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के 7400 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कल ई स्कूटी वितरित करेंगे। इन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के माध्यम से स्कूटी प्रदान कर उनकी आगे की शिक्षा को आसान बनाया जाएगा। आगामी धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा महाविद्यालयों की मेस में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए अलग अलग किचन रखने के निर्देश दिए गए हैं। और एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगी। रिकॉर्ड 8वां एशिया कप खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम एशियाई खेलों में उतर रही है। भारत की टीमें आज सॉफ्ट टेनिस और टिकबॉल में भी मुकाबले करेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की है।

बड़ा ही सुंदर प्रेरक विचार है। बड़ा बदलाव हमेशा किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे काम भी समय के साथ बड़ा परिणाम देते हैं। रोज थोड़ा सीखना, मेहनत करना, बचत या खुद को बेहतर बनाना जीवन की दिशा बदल सकता है। हर दिन एक छोटा कदम भी सही दिशा में बढ़ाते रहें, कोशिश जरूर रंग लाती है। तो आज इसी अनमोल विचार के साथ पेश है महिला सभा कार्यक्रम। महिला सभा के साथ मैं हूँ आज आपकी रेडियो मित्र, आपके साथ ही गुड़िया तिवारी। स्वीकारिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का करते हैं स्वागत कार्यक्रम महिला सभा में। समय बदलता है तो जीवन जीने के तरीके भी बदलते हैं, लेकिन रिश्तों की मजबूती आज भी विश्वास, सम्मान और संवाद से ही बढ़ती है। हमारी आज की महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रही हैं। वे अपनी प्रतिभा, विचार, हुनर को दुनिया तक पहुंचा रही हैं। इस बदलाव के बीच रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना भी जरूरी है। तो आज हम महिला सभा में करेंगे इन दोनों विषयों पर बातचीत। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया और महिलाओं की बदलती पहचान। आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि ये महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति, सीखने, रोजगार और पहचान बनाने का मंच भी बन गया है। सोशल मीडिया महिलाओं के लिए एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां महिलाओं को अपने हुनर दिखाने के कई प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। कोई महिला यदि अच्छा खाना बनाती है और उसका रुझान है तो वो इस कला को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती है, साझा कर सकती है। कोई हस्तशिल्प सिखा रही है तो कोई शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। कुछ महिलाएं अपने छोटे व्यवसाय को भी सोशल मीडिया के जरिए बढ़ा रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। सोशल मीडिया ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता के अनेक अवसर दिए हैं। घर से छोटे व्यवसाय, ऑनलाइन सेवाएं, खान पान, प्रशिक्षण देना और लेना आसान हो गया है। नई नई जानकारी पाना आसान हुआ है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, सरकारी योजनाओं की हो और जानकारी हो हमारे स्वास्थ्य की, रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी, सब आसानी से आपको मिल जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है नेटवर्क और पहचान का दायरा। महिलाएं एक छोटे शहर, कस्बे, गांव में कहीं भी रहकर देश दुनिया के हर कोने तक अपने हुनर को पहुंचा सकती हैं, जुड़ सकती हैं। यानी महिलाएं अब जिस भी फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, सोशल मीडिया उन्हें वो मंच देता है जिससे वे आसानी से अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाएं। लेकिन जहां एक ओर सोशल मीडिया से काम आसान हुआ है तो वहीं इससे हमारे सामने कई चैलेंज भी आए हैं, इसके दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ा है। आप निजी जानकारी, बैंक पैन, आधार कार्ड, फोटो आदि को सोच समझ कर ही साझा करें, क्योंकि इनके दुरुपयोग का जो चांस है वो ज्यादा बढ़ गया है। यदि आपकी जो आईडी है वो सोशल मीडिया पर है तो आप मजबूत पासवर्ड बनाएं। हर वायरल जानकारी के सच को सच ना माने, बल्कि इसको आप खुद जांचें कि ये सच है। आधिकारिक वेबसाइट पर बात को जांचें। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी की और वास्तविक जीवन की स्थितियों की तुलना करने से भी बचें, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर दिखता है जरूरी नहीं कि वो ही सच हो। और ध्यान दें कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी शेयर ना करें। अगर कोई व्यक्ति या कोई जानकारी विश्वास के लायक आपको नहीं लगती है तो आप उससे बचें, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी पहचान का एक हिस्सा तो हो सकता है लेकिन हमारी पूरी पहचान नहीं। हमारी असली पहचान तो हमारे व्यवहार, हुनर और रिश्तों से ही बनती है। तो सोशल मीडिया को आप अपनी ताकत बनाइए, अपने हुनर को आगे बढ़ाने का माध्यम बनाइए और नित्य नए कामयाबी की उड़ान भरिए।

0: अभी आपने ये बेहद प्यारा सा गीत सुना। फिल्म थी गुजारिश, आवाज थी सुनिधि चौहान और शैल हड़ा की। तो राज के शब्दों को संगीतबद्ध किया था संजय लीला भंसाली ने। और अब बहनों आपसे बात करते हैं ऐसे विषय पर जिस पर चर्चा कम ही होती है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच आर्थिक पारदर्शिता की। पति पत्नी के बीच विश्वास जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आर्थिक पारदर्शिता। आर्थिक ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि परिवार में हर छोटी बड़ी खरीदारी का हिसाब लिया जाए। इसका तात्पर्य तो ये है कि परिवार की आय, खर्च, बचत, कर्ज और बड़े आर्थिक फैसलों की जानकारी दोनों को होनी चाहिए, है ना बहनों? ये इस बात से तो आप भी सहमत होंगे। अब सवाल उठता है कि आर्थिक पारदर्शिता जरूरी क्यों है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक सामने आए कमजोर आर्थिक स्थिति या कोई अचानक बड़ी आर्थिक जरूरत या कोई ऐसी स्थिति जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो जाए, इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि आप ये ट्रांसपेरेंसी रखें। यदि पति पत्नी में से दोनों को परिवार की सही आर्थिक स्थिति पता नहीं है तो आपात स्थिति में निर्णय लेना मुश्किल होगा। इससे बचने दोनों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हमारी कुल आय कितनी है, मासिक खर्च कितना है, बचत कितनी हो रही है, कोई लोन या EMI या बच्चों की शिक्षा की योजना का कोई प्लान हो, भविष्य के लिए कितनी बचत जरूरी है, इन सभी जरूरी टॉपिक पर जानकारी एक दूसरे से आप साझा करें। महिला चाहे गृहिणी हो या कामकाजी हो, उसे परिवार की आर्थिक स्थिति की बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। उसे मालूम हो परिवार की आय के स्रोत क्या हैं, बैंक खाता जरूरी दस्तावेज कहाँ हैं, बीमा और निवेश से जुड़ी जानकारी भी, परिवार की कोई देनदारी, आपात स्थिति में किन संस्थाओं से या लोगों से संपर्क किया जा सकता है, ये भी उसे जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक जानकारी रखना अविश्वास नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। इसी तरह पति को भी पत्नी की आय, बचत और आर्थिक निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। रिश्तों में पैसा नियंत्रण का साधन नहीं, साझेदारी का विषय होना चाहिए। यदि महिला कामकाजी है तो उसकी आय भी परिवार की सांझी योजना का हिस्सा होगी, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि उसकी व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय का सम्मान न किया जाए। उसकी स्वतंत्रता और जो फैसले हैं उनका सम्मान तो हर हाल में होना ही चाहिए। तो ये हमने आपसे बात की पति पत्नी के बीच आर्थिक पारदर्शिता क्यों जरूरी है इस विषय पर। कहती है वक्त की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कभी ठहरता नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल था उसकी यादें आज भी हमारे साथ चलती हैं। कभी वक्त रिश्तों की परीक्षा लेता है तो कभी इंसान को बदल देता है और कभी वही वक्त ये एहसास करा देता है कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं। क्या होगा जब समय करवट लेगा? क्या रिश्ते भी वक्त के साथ बदल जाएंगे या फिर सच्चे रिश्ते बदलते वक्त में भी अपना रंग नहीं खोते? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती है हमारी आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है बदलता वक्त। कहानीकार हैं गायत्री ताम्रकार। आइए सुनते हैं कहानी।
1: मैं जरा सामान लेने बाहर जा रहा हूँ, लौटते मैं पार्क में थोड़ी देर बैठूंगा। दरवाजा बंद कर लो वरना खुला ही छोड़ दोगी। पतिदेव की आवाज से हाथ पहुँचते रसोई घर से बाहर आई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर वापस रसोई घर के काम खत्म करके थोड़ा आराम करने के लिए पसीना पहुँचते हुए लेटी ही थी कि मोबाइल पर कॉल आने लगी। मेरी बचपन की सहेली रीमा का फोन था। थकान थी पर फोन उठा लिया। वो तो शुरू हो गई अपनी देश यात्रा बताने को जो अपने पति के साथ करके आई थी। अपनी हर बात मेरे साथ शेयर जो करती थी, मैं भी उसकी हर बात में हाँ हूँ करती रही। फिर बाद में फोन करने को कहकर उसने फोन रख दिया। लेटी पर आंखों में नींद कहाँ, एक एक करके फ्लैशबैक पर सीन चलने लगे। मैं और रीमा दोनों अतरंग सहेलियाँ थीं। हम पढ़ने में अव्वल ही थे, साथ ही अन्य एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग सभी में एक्टिव थे, जिससे सारा कॉलेज हमें जानता था। कॉलेज से निकलने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी हम करने लगे। वहाँ भी हमारे वर्क और एक्टिवनेस से सभी प्रभावित रहते। ऊंचे सपनों की उड़ान आंखों में बसाए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे थे, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। परिस्थितिवत मेरी शादी तय हो गई। परिवार अच्छा था, मॉडर्न भी था। लड़का सरकारी नौकरी में कार्यरत था। लड़के के परिवार ने मेरी नौकरी करने में भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो मैंने सहमति दे दी और फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही रीमा की शादी भी हो गई। शादी के बाद शुरू शुरू में तो सब ठीक लगा, पर मुझे महसूस हुआ कि परिवार के लोग तो मिलनसार हैं, अच्छे ख्यालात के हैं, पर मेरे हस्बैंड कुछ पुराने विचारों के हैं। बातचीत कम करते, सुबह जॉब पर चले जाते तो शाम 6-7 बजे तक ही आ पाते। आकर अपने माता पिता के पास बैठते, बातचीत करते, खाना खाते, फिर सोने की तैयारी करने लगते। मुझसे तो बस जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करते। जब समय गुजरने लगा तब समझ में आया कि इन्हें कहीं आना जाना पसंद नहीं, ऑफिस के अलावा घर पर ही रहना पसंद करते, ना ही किसी से मेलजोल पसंद करते। मेरे स्वभाव के एकदम विपरीत, मैं चंचल स्वभाव वाली, सबसे मिलना जुलना, बातें करना हमेशा का शौक रहा है, जो अब जाता दिखाई दे रहा था। जब कुछ महीने बीत गए तो मैंने अपनी जॉब के बारे में भी बात की तो मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि जब वो पर्याप्त कमा लेते हैं तो मुझे जॉब करनी ही क्यों है। फिर ज्यादा जोर दिया तो कहने लगे कि ठीक है, तैयारी करो, सरकारी जॉब मिलेगी तो कर सकती हूँ। अब दिन भर काम, कोई हेल्पर भी नहीं। जब फुर्सत मिलती तो इतना थक जाती कि थक कर सो जाती, पर फिर भी पढ़ने की कोशिश करती। इसी बीच बच्चे भी हो गए, अपने लिए समय निकालना तो दूर सोचना भी भूल गई, पर एक टीस सी मन में रह गई, सारी इच्छाएं दम तोड़ गईं। दिन भर बच्चे व घर का काम इसी में बिजी हो गई। ऊपर से हस्बैंड का मेरे हर काम में नुक्स निकालना, हर बात में अपने को ऊंचा अब वह मुझे नीचा दिखाना उनकी आदत में शामिल हो गया। मैं भी सहन करके रह जाती, कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि यहाँ सुनने वाला था ही कौन। इस बीच एक दिन रीमा का फोन आया, अपने बारे में बताने लगी। वो और उसके हस्बैंड एक ही ऑफिस में जॉब करते, छुट्टियां अपने तरीके से एंजॉय करते, कुल मिलाकर अपनी जिंदगी में खुश हैं। मैं छटपटा कर रह गई, अपनी दोस्त के लिए खुश होना चाहिए था, पर क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं, मेरी भी तो इच्छाएं हैं। कॉलोनी में भी देखती कि सभी वीकेंड पर सब घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, पर यह है कि कहीं जाना पसंद ही नहीं करते। यदि जाना भी होता तो स्वयं ही कॉलोनी के पार्क तक चले जाते। मुझे या बच्चों को साथ ले जाने के लिए तो कभी इनकी अंदर इच्छा जागृत ही नहीं हुई। चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी, ना कहीं जाना ना कहीं आना, 24 घंटे घर के काम, बच्चों को देखना, बस। कहीं ना कहीं मैंने भी समझौता कर लिया था, यही सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्या हुआ, बच्चों को काबिल बनाऊंगी। पतिदेव तो यही समझते थे कि वो बाहर जॉब करते हैं, घर का आर्थिक बजट संभालते हैं, तो बच्चों और घर को संभालना मेरा काम है, क्योंकि मैं तो घर पर रहती हूँ। बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारियाँ यहीं समाप्त हो जाती हैं। मैं यह नहीं कहती कि घर संभालना बुरा है, पर अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। सभी को खुलकर जीने का हक है। भारत आजाद तो हो गया, पर ये आजादी हम औरतों के हिस्से में कब आएगी पता नहीं। संविधान में पुरुष और स्त्री के अधिकार भी समान है, पर यह सब लिखित रूप में है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री को इन अधिकारों का लाभ मिल जाए तो यही बहुत है। समय का पहिया अपनी गति पर था, बच्चे बड़े हो गए, बेटा पढ़ लिख कर जॉब भी पा गया, शादी भी हो गई और वो अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में बस गया जहाँ उसकी जॉब थी। बेटी को भी पढ़ा लिखा कर लायक बनाना चाहती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्या हुआ, मेरा सपना मेरी बेटी पूरा करेगी, पर वो हर तरह से सामान्य थी। उसका कहना यही था कि अब्बा लाने से कुछ नहीं होता, करना तो यही घर का काम। कहती थी कि मम्मी आपकी उच्च शिक्षा और अब्बा लाने का क्या हुआ, मैं भी तो यही घर के काम करती हूँ, तो मैं निरुत्तर हो जाती, आंखों में आंसू लिए अपने सपने याद करके रह जाती। पतिदेव भी कहते कि लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है, अच्छा है कि शादी कर दो, घर के कामकाज सिखाओ, ज्यादा बेहतर होगा। पति से ज्यादा बहस नहीं कर सकती, वरना बच्चों के सामने अपमानित होने का बोझ ढोना पड़ सकता है। वो बोलने के पहले यह सोचते ही नहीं कि किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बस आंखों में आंसू भरकर चुप हो जाती। रो भी नहीं सकती थी क्योंकि आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं था और ना ही परवाह करने वाला। मैं घर और बच्चों को संभालने वाली एक आया बनकर रह गई थी। भावात्मक लगाव पति को कभी रहा ही नहीं था, ऐसा लगता था कि उन्हें पत्नी नहीं काम वाली चाहिए थी, जो समय से अपना काम करे बस। अपनी बात रखने की तो उसे अहमियत ही नहीं दी गई थी। खैर, बेटी का विवाह हो गया, बचे घर में हम दोनों। सास ससुर कब के स्वर्ग सिधार चुके थे, जब तक रहे अपने बेटे के व्यवहार से त्यस्त रहे, पर मेरा पूरा जीवन दिशाहीन रहा। अब उम्र के इस पड़ाव में पति से कुछ कहूं भी तो क्या कहूं, जी हल्का हो जाता है जब रीमा से बातें कर

0: काम नहीं करना चाहिए, संभालूं, पर इसके बदले में सम्मान और अधिकार के हकदार भी तो बनूं। प्यार भरे शब्दों भी हमारी झोली में आने चाहिए, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, हंसते हंसते सहन हो जाती है। तभी दरवाजे पर डोरबेल की आवाज से मेरी स्वप्न तंद्रा टूटती है और वर्तमान में प्रवेश करती हूँ। शायद पतिदेव आए होंगे और उठ जाती हूँ उनके एक और नुक्स ने सुनने को तैयार। लोग कहते हैं वक्त बदल गया है, पर मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो अब भी वही है। देखती हूँ वो लोग मिले तो कहूँगी कि मेरे लिए भी ले आना बदलता वक्त।
1: वक्त बदलता है, हालात बदलते, और कभी कभी इन्हीं बदलाव के साथ इंसान भी बदल जाता है। लेकिन जिंदगी यही सिखाती है कि बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, इसलिए आज के रिश्तों को हमें संभाल के रखना है। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट कभी भी कम नहीं होती। बदलता वक्त। अभी आपने ये कहानी सुनी, कहानीकार थी गायत्री ताम्रकार। उम्मीद है इस कहानी ने आपको भी अपने जीवन के किसी रिश्ते, किसी पल और किसी अपने की याद जरूर दिलाई होगी। तो कहानी तो आपने सुन ली, इसी कहानी के साथ अब मुझे और शायद आपको भी आवश्यकता लग रही होगी कि एक प्यारा सा गीत हो जाए। तो मेरे सामने है फिल्म कृष्ण, इसका एक प्यारा सा गीत है, आवाज है सोनू निगम श्रेया घोषाल की, नासिर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को।

कोई तुमसा नहीं। अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म थी क्रश, नासिर के शब्दों को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। थोड़ा सा वक्त बाकी है, राज आपके लिए लेकर आए हैं उपयोगी जानकारी, तो चलिए रुक करते हैं उस तरफ, आपसे बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पर। बेटी का जन्म घर में खुशियां लेकर आता है और हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो और जीवन के हर पड़ाव पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। लेकिन इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए भावनाओं के साथ आर्थिक तैयारी भी जरूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आई। इस योजना में बेटी के नाम पर 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका का खाता खुलवाया जा सकता है। एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुल सकता है। परिवार में यदि दो बालिकाएं हैं तो दोनों बालिकाओं के आप खाते खुलवा सकते हैं। इस सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर जो खाता खुलेगा उसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम आपको 250 रुपए जमा करना है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिमिट है ये सरकार कभी भी बढ़ा या घटा भी सकती है, तो इसके लिए अपने आप को आप इस योजना की जानकारी से अपडेटेड रखें। और इस योजना की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें आपको हर महीने जो प्रीमियम है वो जमा करने की ज़रूरत नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते की परिपक्व होने की अवधि 21 वर्ष है। हालांकि बेटी की शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी आप यानी 10वीं पास करने के बाद खाते में आपने जो राशि जमा की है वो 50% राशि आप निकाल भी सकते हैं। सुकन्या समृद्धि के खाते को आप कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें निवेश की गई राशि पर भी सीमित मात्रा में आयकर से छूट भी प्रदान की जाती है। और सुकन्या समृद्धि योजना में जो खाता खोलेगा उसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो हैं बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, पिता का पैन कार्ड, आधार जैसे आवश्यक दस्तावेज जरूरी होते हैं। तो आप इन दस्तावेजों को तैयार करवा लें। इस योजना का लाभार्थी बनने आप डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं या किसी भी बैंक में भी आप खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना को केवल बचत खाता न समझें, ये योजना बेटी की पढ़ाई, उच्च शिक्षा और भविष्य के सपनों का आर्थिक आधार तैयार करती है। बेटी के सपने बड़े हों तो बचत की शुरुआत भी छोटी होकर बड़ी बन जाती है। आपकी आज की छोटी सी बचत आपकी बेटी के आत्मनिर्भर भविष्य की नींव बन सकती है। तो देर किस बात की, यदि घर में बेटी है तो आज ही नजदीकी डाकघर जाइए और बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा लीजिए। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी सुकन्या समृद्धि योजना की उपयोगी जानकारी के माध्यम से, और इस उपयोगी जानकारी के साथ ही आज का महिला सभा संपन्न होता है, चलने का समय हो गया है। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए विचार, नई बातों के साथ, क्योंकि महिला सभा के हर कार्यक्रम में, हर नए अंक में आपको मिलती है कुछ नई जानकारी, नई सोच, जिंदगी को बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश। तब तक आप कुछ नया सीखते रहिए, खुश रहिए और हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। अभी अनुमति दें गुड़िया तिवारी को, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।

0: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की है। आरंभ कर रहे हैं पुरुषोत्तम नायक और साथियों के गाइस लोकगीत के साथ, गुरु महिमा है ये।

पुरुषोत्तम नायक और साथियों के गाए ये गुरु महिमा थी। और अब सुनिए धीरेंद्र नागर की गाई ये गुरु महिमा, लोक संगीत का ये कार्यक्रम है।

राजू पटेल और साथियों के गाए इस गुरु महिमा के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आपने सुने पुरुषोत्तम नायक और साथियों के गाए, धीरेन्द्र नायक नागर के गाए और राजू पटेल और साथियों के गाए गुरु महिमा। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे अश्विनी सागर के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर।

अश्विनी सागर के गए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: आपके लिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 20 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय होगा उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 20 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 2660903 पर फोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। वसुंधरा दास और कुणाल गांजावाला का गाया सलाम नमस्ते फिल्म का यह गीत है। जयदीप सानी ने बोल लिखे हैं, विशाल शेखर की धुन है।

0: अलका याग्निक और शान के गाए फिल्म कल हो ना हो के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर के गीता भवन परिसर में आयोजित जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमर शहीद बलिदानों को याद किया।
1: आज हमारे गोंडवाना के वो अमर शहीदों ने जो करके दिखाया, उसके आधार पर आज नहीं तो कल 90 साल बाद देश आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने वाले देश में एक भी अंग्रेज नहीं बचा, ये हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह के उस बलिदान का परिणाम।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से नमो प्रेरणा कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉ. विजय शाह और राकेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी भारत की जनता की सेवा में अपना समर्पण भाव बनाए हुए हैं। श्री मोदी ने रहमान के संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संदेश बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी साझा किया गया है। उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत ने आज गीता भवन में आयोजित युवा धर्म संसद 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा शनिवार तक आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से करीब 1,700 युवा शामिल हो रहे हैं। अपने संबोधन में डॉ. भागवत ने कहा कि धर्म केवल बुढ़ापे की चीज नहीं है, बल्कि जीवन की शुरुआत से अंत तक उसका महत्व बना रहता है। कार्यक्रम में आज धर्म, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल समापन सत्र में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन पूजन किया। वे करीब 1.5 घंटे तक नंदी हॉल में रहे। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में शामिल होंगे। वे यशोभूमि में मध्य प्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण करेंगे और स्वीडिश तथा जापानी प्रतिनिधि मंडलों के साथ सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश, तकनीकी सहयोग और संभावित साझेदारियों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश इस आयोजन में स्टेट पार्टनर के रूप में भाग ले रहा है। राज्य पवेलियन में प्रदेश की सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, निवेश के अवसर, औद्योगिक क्षमताओं और प्रतिभा आधार को प्रदर्शित किया जा रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन 17 से 19 सितंबर तक यशोभूमि नई दिल्ली में हो रहा है। प्रदेश में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी चल सकती है। प्रदेश में अब तक 842.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 7% कम है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 37 जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। आगामी बारिश होने से इन जिलों में बारिश के आंकड़ों में सुधार की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर श्रीचरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर जापान को शुक्रवार को 8 विकेट से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। नर्मदापुरम में कल सिठानी घाट पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा से संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा में कल आयोजित हुए रोजगार मेले में 83 शिक्षित बेरोजगारों का प्रारंभ चयन किया गया। भारतीय डाक विभाग के मध्य प्रदेश परिमंडल के अंतर्गत शिवपुरी डाक संभाग में आगामी 25 सितंबर को डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ के आजीविका भवन में सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी

0: से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों ना हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
4: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।

0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
3: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गाँव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
4: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गाँव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA Tejas और STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद को हम शामिल कर रहे हैं। पहला पत्र हमने शामिल किया है धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे की। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी की ये पसंद है। शुभचंद बजाज, महेश बजाज, बिट्टा बजाज कालका से लिखते हैं। 67 सेक्टर मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा की ये पसंद है। सुनना चाहा है हमराज फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर का गाया हुआ, साहिल रुद्धनवी के बोल, रवि की धुन।

अगला फरमाइशी गीत फिल्म नसीब से है, अनवर सुमन कल्याणपुर और कमलेश अवस्थी ने इसे गाया है। आनंद बख्शी ने गीत लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है। सुनना पसंद किया जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटरा बहादुर जिला मंदसौर से तूफान डांगी पटेल, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल डांगी, विक्रम डांगी। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर खरगोन से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार।

शान फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने इसे गाया है। आरडी बर्मन ने संगीत रचा और बोल लिखे आनंद बख्शी ने। सुनना पसंद किया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चैतिक बिरक और मीका बिरक ने। पटेल नगर मंडलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ये पसंद है। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिश का, तन्मय गजबिये की।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत आशा भोसले किशोर कुमार का गाया हुआ, साथी आवाज आर डी बर्मन भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की है। गुलशन बावरा ने बोल लिखे, आर डी बर्मन की धुन है। सुनना पसंद किया छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबेल साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने। सहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी, स्वीटी बेबी प्रियांशी, प्रभाकर जुंदले और आती जुंदले गौतम नगर जिला नांदेड़ से।

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: दुखी बेदुखी

0: सत्य पे सत्ता इस फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर के गीता भवन परिसर में आयोजित जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह में भाग लिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में शामिल होंगे। वे अशोकभूमि में मध्यप्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण करेंगे और स्वीडिश तथा जापानी प्रतिनिधि मंडलों के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश, तकनीकी सहयोग और संभावित साझेदारियों पर चर्चा करेंगे। उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत ने आज गीता भवन में आयोजित युवा धर्म संसद 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 1,700 युवा शामिल हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन पूजन किया। और प्रदेश में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी चल सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। एशिया गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम कर्टेन रेजर रात्रि 8:00 प्रसारित करेंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर सुनिएगा। खेल जगत कार्यक्रम में रात 9:30 पर सुनिएगा डॉक्टर डॉली सक्सेना की वार्ता एशियाई खेल 2026। इसे एक बार फिर सुन लें। साप्ताहिक खेल जगत कार्यक्रम में रात्रि 9:30 पर सुनिएगा डॉली सक्सेना की वार्ता एशियाई खेल 2026। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:45 पर। रात्रि 10:25 पर विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा आप सुनेंगे। और आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा आपकी पाती आपके फिल्में गीत। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर जारी है।

0: मीडियम वेव टीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता KGP-12 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। ये परियोजना के 4 साल पूरे होने के ठीक एक दिन बाद हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को कल बड़ी सौगात देंगे। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 19 सितंबर को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। ये स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत दी जाएंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग व्यक्तिगत सफलता के साथ समाज, पर्यावरण और राष्ट्र के हित में करना चाहिए। और 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत कल से जापान के आईजी नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी छतरपुर के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट खुशी करवरिया। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ आज हम भगवान गणेश जी से जुड़े हुए विशेष कार्यक्रम गणेश उत्सव कार्यक्रम की भी आपको जानकारी देंगे और भगवान गणेश के बारे में कुछ रहस्यमय और विशेष भी बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज के हम इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे समाज के न्याय, समानता और सम्मान से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि आज यानी 18 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है? तो आइए इसी बात पर गहराई से विचार करें कि आखिर यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। खुद भी सोचिए, यदि दो लोग, एक महिला और एक पुरुष, एक ही दफ्तर में एक ही पद पर और एक ही जैसी मेहनत और योग्यता के साथ काम कर रहे हैं तो क्या उन्हें मिलने वाला वेतन अलग अलग होना चाहिए? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि आज भी दुनिया भर में जेंडर पे गैप यानी कि लैंगिक वेतन अंतर एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े बताते हैं कि आज भी वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन कम वेतन मिलता है। यह सिर्फ एक आंकड़े का खेल नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की मेहनत, उनकी काबिलियत और उनके आर्थिक अधिकारों के साथ एक प्रकार का अन्याय है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2020 में इस दिशा में कदम उठाया और हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाने की शुरुआत की, ताकि दुनिया भर की सरकारों, नियोक्ताओं और समाज का ध्यान इस असमानता की ओर खींचा जा सके। समान वेतन केवल महिलाओं का अधिकार नहीं, बल्कि यह एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था और समतावादी समाज की नींव है। जब एक महिला को उसके काम का पूरा और सही मेहनताना मिलता है तो वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बनती है, बल्कि अपने परिवार और देश की तरक्की में भी बढ़ चढ़कर योगदान देती है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम से हम यह संकल्प लें कि हम अपने दफ्तरों, अपने कामकाजी माहौल और अपनी सोच में इस लैंगिक भेदभाव को खत्म करेंगे। काम को इंसान की क्षमता और योग्यता के तराजू में तौलेंगे, ना कि उसके जेंडर के आधार पर। तो आइए एक ऐसी दुनिया के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी दें जहां समान काम के लिए समान वेतन केवल एक नारा ना रहे, बल्कि हर जगह पक्का नियम बन जाए। तो अभी हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के बारे में। आगे हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक स्थल चंदेरी के बारे में, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवा देते हैं भगवान गणेश जी का यह प्यारा सा गीत।

0: गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, अरे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, अरे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी।
1: तो अभी आप सुन रहे थे मरते दम तक फिल्म का यह गीत, जिसमें आवाज थी महेंद्र कपूर और सुरेश वाडकर की। गीत से और संगीत से सजाया था रविंद्र कुमार जैन ने। तो अभी आप सुन रहे थे मरते दम तक फिल्म का यह गीत, जिसमें आवाज थी महेंद्र कपूर और सुरेंद्र वाडकर की। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसका हर एक पत्थर इतिहास की कोई ना कोई कहानी लिखता हो, जहाँ की साड़ियों की खनक पूरी दुनिया में गूंजती हो और जिसके किलों में आज भी राजपूतों के शौर्य और बलिदान की खुशबू आती हो? जी हाँ, आज हम आपको सैर कराने ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर चंदेरी की अनकहीं गलियों में। तो आइए जानते हैं इस शहर के कुछ ऐसे दिलचस्प राज जो शायद ही आपने सुने होंगे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में यह शहर भगवान कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल की राजधानी हुआ करता था, यानी इसका इतिहास सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। लेकिन यहाँ की वास्तुकला में एक बहुत ही हैरानी वाली बात है। चंदेरी में एक बेहद प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है? तो नया यह है कि यह भारत की इकलौती ऐसी ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जिसमें एक भी मीनार नहीं है। बिना मीनार के बनी यह विशाल मस्जिद वास्तुकला का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आज भले ही पानी के लिए हमें नलों और बोरवेल की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन कभी चंदेरी में पानी के जो सोर्सेस थे वो इतने अच्छे थे कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास के पन्नों के मुताबिक इस पूरे इलाके में कभी करीब 1200 बावड़ियाँ हुआ करती थीं। और आज भी यहाँ की 32वीं बावड़ी बहुत मशहूर है, जो 4 मंजिल गहरी है और इसके चारों तरफ उतरने के लिए 32 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सोचिए उस दौर की वाटर मैनेजमेंट की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त रही होगी। साल 1528 में मुगल शासक बाबर और राजा मेदिनी राय के बीच यहाँ एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसे चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब हार सामने दिखी तो यहाँ की हजारों वीरांगनाओं ने हंसते हंसते जौहर कर लिया था। आज भी किले के पास वह जौहर स्मारक उस ऐतिहासिक बलिदान की गवाही देता है। और हाँ, अगर आपको बॉलीवुड फिल्में पसंद है तो श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की सुपरहिट हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री तो आपने जरूर देखी होगी। तो वह भूती और मज़ेदार शहर कोई और नहीं था बल्कि हमारा चंदेरी ही था। और इस फिल्म की शूटिंग यहीं की ऐतिहासिक गलियों घाटी दरवाजों पर हुई है, जिसके बाद से चंदेरी युवाओं की ट्रेवल लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। बात करें यहाँ की शान यानी चंदेरी सिल्क साड़ियों की, तो हवा जैसी हल्की और रेशम जैसी मुलायम इन साड़ियों को बुनने की कला यहाँ के बुनकर के हाथों में जादू की तरह रची बसी है। एक एक साड़ी को तैयार करने में हफ्तों की मेहनत लगती है, जिसे आज ग्लोबल पहचान यानी कि GI टैग भी मिल चुकी है। तो श्रोताओं, अगली बार जब भी आप मध्य प्रदेश घूमने का प्लान बनाएं तो इतिहास रहस्य और कला के अनूठे संगम चंदेरी की शैर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान गणेश का उत्सव इस समय चल रहा है, तो हमने भगवान गणेश पर आधारित हमारा जो कार्यक्रम है आज का गजानन महिमा गणेश उत्सव कार्यक्रम, बढ़ते हैं हम उस कार्यक्रम की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, इन दिनों हवाओं में एक अलग ही ऊर्जा घुली हुई है। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट, मोदक की सौंधी खुशबू और गलियों में गूंजता एक ही नारा, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर 2026 से गणेश चतुर्थी का यह महाउत्सव शुरू हो चुका है और अगले 10 दिनों तक यानी अनंत चतुर्दशी तक यह पूरा देश बप्पा की भक्ति में सराबोर रहने वाला है। भगवान गणेश और इस उत्सव से जुड़े कुछ ऐसे अनूठे और रोचक रहस्य भी हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो आज हम जिस सार्वजनिक गणेशोत्सव को देखते हैं, उसे महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था और इसे शुरू करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने साल 1893 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो भगवान गणेश और उनकी मूर्तियों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। क्या आपने कभी भी उनकी सूंड पर गौर किया है? भगवान गणेश की कुछ मूर्तियों में उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है तो कुछ में दाईं ओर भी होती है। इसका भी अपना एक रहस्य है। शास्त्र कहते हैं कि बाईं सूंड वाले गणेश जी वाममुखी कहलाते हैं, जो गृहस्थ जीवन सुख और शांति के दाता हैं। वहीं दाईं सूंड वाले गणेश जी दक्षिण मुखी या सिद्धि विनायक रूप माने जाते हैं, जिनकी पूजा बहुत कठोर नियमों के साथ सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। शायद आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे अनोखी गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं वो हमारे देश में ही हैं। हमारे देश में गजानन के ऐसे ऐसे अद्भुत रूप हैं जो अचंभित करते हैं। तमिलनाडु के त्रिची में भगवान गणेश का एक ऐसा मंदिर है जहां उन्हें उचिट्टा पिल्लयार के रूप में पूजा जाता है, और मान्यता है कि रावण ने ही लंका ले जाते समय उनकी मूर्ति यहाँ रखी थी। वहीं असम में कामाख्या मंदिर के पास चट्टानों पर उकेरी गई गणेश जी की सदियों पुरानी मूर्तियां बिना सूंड की अनोखे रूपों में आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासविदों के लिए शोध का विषय है। अगर हम बात करें भगवान गणेश और महाभारत से उनके संबंध की, तो आपको पता ही होगा कि महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखने का वीड़ा उठाया था तो उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके लिख सके। महर्षि वेदव्यास जी भगवान गणेश जी के पास पहुंचे, तब भगवान गणेश जी ने शर्त रखी कि वे तभी लिखेंगे जब व्यास जी की कलम एक पल के लिए भी ना रुके। और बदले में व्यास जी ने भी शर्त रख दी कि भगवान गणेश हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। यही वजह है कि व्यास जी बीच बीच में कठिन श्लोक बोलते थे ताकि गणेश जी को सोचने का मौका मिले और वे सांस ले सकें। तो दोस्तों, ये तो कुछ बातें थी गणेश भगवान से जुड़ी हुई। और अगर हम बात करें आज के समय की, तो वक्त बदला जरूर है, पर हमारी परंपराओं में एक बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक बदलाव भी आया है। आज का युवा पारंपरिक मूर्तियों के साथ साथ इको फ्रेंडली गणेश उत्सव को भी अपना रहा है। मिट्टी की मूर्तियां, सीर गणेश जिनके विसर्जन के बाद पौधे उगाते हैं, और कागज की लुगदी से बनी प्रतिमाएं यह साबित करती हैं कि हमारे लिए भगवान की भक्ति जितनी जरूरी है, उतनी ही हमारी है सुंदर धरती और पर्यावरण की रक्षा करना भी आवश्यक है। और हमारे बप्पा तो सचमुच प्रकृति के सबसे बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि उनका वाहन भी एक नन्हा सा मूषक और उनका प्रिय भोग मोदक प्रकृति की गोद से ही तो आता है। तो श्रोताओं, गणेश उत्सव सिर्फ 10 दिनों का मेला नहीं है, 10 दिनों का उत्सव नहीं है। यह हमारे भीतर के अहंकार, ज्ञान की कमी और बुराइयों का विसर्जन करने का अवसर है। जब हम बप्पा को विदा करते हैं तो हम ये कामना करते हैं कि वे हमारे जीवन के सारे विघ्न अपने साथ ले जाएं और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि और बुद्धि का प्रकाश फैलाएं। 14 सितंबर से शुरू हुआ यह पावन पर्व 25 सितंबर तक आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। और भगवान गणेश को कहा जाता है, आप सुखों के कर्ता हैं, दुखों के हर्ता हैं, और इसी भावना के साथ हम भगवान गणेश को नमन करते हैं।

तो अभी आप सुन रहे थे वास्तव फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी रविंद्र साठे की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में। तो क्या कभी आपके दिमाग में भी ऐसा अनोखा आइडिया आता है जिसे सोचकर आप कहते हैं कि काश मैं इस पर काम कर सकूं, एक दिन अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकूं? अगर हाँ, तो आज का यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत खास होने वाला है और बहुत जरूरी भी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्रांति की, एक ऐसे महाअभियान की, जिसने भारत के युवाओं की सोच को नौकरी ढूंढने वाले से बदलकर नौकरी देने वाला बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया योजना की। तो आइए जानते हैं कि कैसे है योजना आज देश के कोने कोने में छिपी प्रतिभाओं को पंख दे रही है। आज से कुछ साल पहले खुद का स्टार्टअप शुरू करना, फंडिंग जुटाना और बड़े बड़े कागजी कानूनी पछड़ों से निपटना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देना, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना था। इस योजना के तहत सरकार नए उद्यमियों को न सिर्फ वैचारिक समर्थन देती है बल्कि वित्तीय सहायता, टैक्स में छूट और आसान नियमों के जरिए उनके रास्ते के हर कांटे को चुन चुनकर साफ करती है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो उसे इस योजना से क्या फायदा मिल सकता है। तो आइए सिलसिलेवार समझ लेते हैं। इस योजना के तहत स्टार्टअप के लिए पेटेंट आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है। पेटेंट फीस में 80% तक भारी छूट मिल जाती है ताकि नए और अनोखे आइडियाज को सुरक्षित किया जा सके, जिससे वे अपने शुरुआती दौर में मुनाफे को बिजनेस में बढ़ाने में लगा सकते हैं। वहीं 3 वर्षों तक स्टार्टअप को कई जटिल लेबर और एनवायरमेंटल इंस्पेक्शन से भी छूट दी जाती है ताकि वे बिना किसी प्रशासनिक दबाव के अपने काम पर फोकस कर सके। इसी के साथ साथ सरकारी टेंडर हासिल करने में भी प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उन्हें बड़ा बाजार और शुरुआती बिजनेस आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, आज इस योजना का असर सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। Tier 2 और Tier 3 शहरों के छोटे छोटे कस्बों से युवा निकलकर अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ सामने आ रहे हैं। चाहे वो फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ केयर हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे देश में आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से अधिक वैल्यू वाले स्टार्टअप्स खड़े हो चुके हैं। यह इस बात का सबूत है कि अगर सही दिशा और मदद मिले तो भारत का युवा किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। तो मेरे युवा दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो समाज की किसी समस्या को हल कर सकता है या किसी नए उत्पाद को जन्म दे सकता है, तो अब इंतजार मत कीजिए, अपने सपनों को नई दिशा दीजिए, क्योंकि आज का स्टार्टअप कल के देश का सबसे बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। तो अभी हमने जाना स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में। चलिए, हमारा कार्यक्रम अब अंत की ओर बढ़ चुका है और हम दे देते हैं आपको आज की हमारी रोजगार सूचना। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है SSC CHSL। पदों की संख्या है 2536 पद। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं विशेष पदों के लिए मैथ साइंस से पास होना भी अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष रहेगी। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी रोजगार सूचना। समय तो वैसे जाने का हो गया है, पर जाते जाते एक बार हम फिर से भगवान गणेश जी का एक गीत सुन लेते हैं। और यह गीत इतना ऊर्जावान और भक्तिमय है कि यदि यह नहीं सुना तो शायद आज का हमारा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। तो प्रस्तुत है अग्निपथ फिल्म का यह प्यारा सा

तो अभी आप सुन रहे थे अग्निपथ फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज़ थी अजय की, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था अजय अतुल ने। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा है कि आपको आज का यह प्रोग्राम और विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई हो। भगवान गणेश से जुड़ा हमने आपको जो भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, आशा है कि आपको वो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम आपसे अगले प्रोग्राम में, तो अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र खुशी करवरिया को। नमस्कार।

आकाशवाणी छतरपुर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, जिसे गाया है मीका सिंह, डोमिनिक सेरिजो और स्टाइल भाई ने। इरशाद कामिल के लिखे बोल, प्रीतम का संगीत। फिल्म का नाम है दे दनादन।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको फिल्म कृष का ये गीत। कुणाल गांजावाला की आवाज़ है, विजय अकेला के लिखे बोल और राजेश रोशन का संगीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

भागम भार के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसमें अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और शाहरुख खान की आवाज़ में ये गीत फिल्म डॉन से। जावेद अख्तर की शब्द रचना और धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं शंकर महादेवन, शान और महालक्ष्मी।

अय्यर की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है। शंकर एहसान लॉय का संगीत। फिल्म है कभी अलविदा ना कहना।

0: श्रोताओं, फिल्म कभी अलविदा ना कहना के इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
0: श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 20 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 20 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए। दिनांक 20 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर है 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने टेलीफोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल भोपाल में प्रदेश के 7,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 9 बजे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर में आयोजित होगा। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज सोनीपत में कानून, नीति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वृद्धि विचारों, कल्पना, संस्कृति, नवाचार और बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित हो रही है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक भंडारित चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी चल सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी, पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गाँव में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में, ऐसे जंगल जहां पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए। यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ। जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों

0: को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशन

0: भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक, कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोते

0: मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रवींद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रवींद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रवींद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षिका है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने गवर्नमेंट स्कूल में, जिसकी वो प्रिंसिपल है, वहाँ पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागृति पर बहुत बहुत बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ उन्हें अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंजरी वी महाजन जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में मंजरी जी, और सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
3: धन्यवाद
2: मंजरी जी। अगर हम खास तौर से प्रकृति की बात करें, पर्यावरण के प्रति जो आपने एक संवेदनशीलता दिखाई है और अपने विद्यालय के द्वारा बच्चों में भी उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है, हमें बता सकती हैं कि कौन सा आपको सबसे प्रमुख पहलू लगता है?
3: हमने एकेडमिक्स के साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया है और बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अध्ययन होता है वो मात्र किताबों से ही नहीं होता। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं।
2: सीख सकते हैं, और प्रकृति हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका संरक्षण। तो आप हमें बता सकते हैं कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, उस दिशा में आपने कौन कौन सी पहल है जो आप हमें शेयर करना चाहेंगी ताकि हमारे जो श्रोता है वो भी उससे प्रेरणा ले सके?
3: हमारे स्कूल में विद्यार्थियों ने वेस्ट के ऊपर बहुत काम किया है, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, जो वेट वेस्ट होता है उसे हम कंपोस्टिंग के लिए डाल देते हैं, और जो ड्राई वेस्ट होता है, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसे कैंपस से इकट्ठा करके या सराउंडिंग से इकट्ठा करके हम पंचायत में डिपॉजिट करा देते हैं। तो इस तरह से वेस्ट को मैनेज।
2: वेट वेस्ट जब आप कह रही है, तो वेट वेस्ट में थोड़ा सा अगर हमें विस्तार से बता सके कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट वेस्ट में आती हैं?
3: वेट वेस्ट में आ जाता है जैसे किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, और गार्डन वेस्ट है, लीव्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ये सब वेट वेस्ट में आ जाते हैं।
2: सो जो भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, सो इनको आप कह रहे हैं कि इनको एक जगह आप इकट्ठा करते हैं। तो जो आपने कंपोस्टिंग की बात करी, थोड़ा हमें सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि कंपोस्टिंग क्या है और क्यों आप कंपोस्टिंग पर इतना बल दे रहे हैं?
3: कंपोस्टिंग में क्या है कि जो वेट वेस्ट होता है इसको हम एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाल देते हैं। बच्चे काम करते हैं, हमारे टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं, मैं खुद बच्चों के साथ लग जाती हूँ, और साथ में अर्थवॉर्म्स डाले जाते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और कुछ दिनों के बाद ये जितना भी वेट वेस्ट होता है ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कंपोस्ट बनती है उसे हम यूज कर लेते हैं किचन गार्डन में, हर्बल गार्डन में, या एज पॉटिंग मिक्स। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल है, कंपोस्ट हमें आराम से फ्री में मिल जाती है।
2: तो इससे आपको लगता है कि जो बच्चे हैं, जो आते हैं, आपके जो छात्र हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस पैदा होती है कि हम किस तरह से कूड़े से भी वैल्यू निकाल सकते हैं?
3: एक्चुअली उन्होंने पहले बुक्स में पढ़ा था कि कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ये प्रोसेस है, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो फिर उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलता है, और मैंने देखा वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, वो पूछते भी हैं, मैम कितना टाइम लगेगा इसे बनने में, अब ये बन गई अब इसका क्या करेंगे। तो मैंने देखा वो इंक्विजिटिव बनते हैं जब हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं।
2: एकेडमिकली तो ये सब चीजें सिखाई ही जाती है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल उनको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसको वो आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी में उसको अपना सकते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और एक और जो पहलू है पानी का, उसके प्रति किस तरह से आपने उसमें कार्य किया है ताकि उसके जल का जो एक मूल्य है कि जल का संरक्षण करना कितना जरूरी है इसको बच्चे समझ पाए?
3: इसके लिए बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो वाटर को वेस्ट ना करें, टैप्स को बंद रखें, इवन जो वेस्ट वाटर होता है जैसे जो टैप से आ रहा है उसको हमारी कोशिश रहती है कि उसको यूज करें, हम रीयूज करें फ्लावर बेड्स के लिए, और स्कूल में सोक पिट लगाया गया है, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं जिनमें हम वाटर को उसको स्टोर कर लेते हैं रेन वाटर को और जब जरूरत होती है तो प्लांट्स के लिए उनको हम यूज कर लेते हैं वाटरिंग के लिए.
2: सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए आपने काफी कार्य किया है.
3: रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, मैंने अभी आपसे बताया, स्टोरेज टैंक में हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं रेनी सीजन में, और जैसे जैसे फिर सीजन चेंज होता है, वाटर स्केर्सिटी होती है, तो वहां से हम पानी निकाल कर प्लांट्स को दे देते हैं.
2: सो आपको लगता है कि इससे बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा होती है कि ये अपने घर जाके अगर जब बताते हैं बाकी लोगों को कि इस तरह से हमारे स्कूल में हो रहा है तो पूरा जो वो कम्युनिटी है उसमें भी इस तरह के फिर एफर्ट्स और लोग भी करते हैं.
3: बच्चे घर जाते हैं, मदर्स को बताते हैं, तो जब हमारी स्कूल की मीटिंग्स होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, तो मैंने देखा जो मदर्स आती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे तो हमें भी घर में कूड़ा नहीं फेंकने देते इधर उधर, कहते हैं इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करो, मम्मा नलका मत चलाओ ऐसे, हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पानी वेस्ट नहीं करना है. तो मैंने देखा कि ये जो हम स्कूल में सिखाते हैं वो घरों तक पहुंच ही जाता है.
2: आप हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे और जो बच्चे सुन रहे होंगे और छात्र सुन रहे होंगे उनके लिए बता सकती हैं कि जो ये प्लास्टिक्स है ये कितना हार्मफुल है और इसको अलग से जब हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं उस पर इतना बल क्यों दिया जाता है?
3: प्लास्टिक जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जब हम इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाल देंगे तो जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होगा, ये एनवायरमेंट में कई ईयर्स तक ऐसे ही रहता है. तो इसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको सेग्रीगेट करें और इसको फिर प्रॉपरली मैनेज कर सकें, रिसाइकल कर सकें.
2: तो ये रिसाइकल की जो आप बात कर रही हैं, सिंगल प्लास्टिक यूज, हमने सुना भी है कि हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में काफी ज्यादा एक जागरूकता है कि जो प्लास्टिक जैसा आप कह रही हैं कि जब वो हमारे जलाशय में जाता है या कहीं भी जाता है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में आप इसको रिसाइकल करने के या अपसाइकल करने के क्या आपके एफर्ट्स हैं?
3: एक तो ये है कि मेरे एरिया में बरसात में बहुत ज्यादा रेन्स होती हैं, तो हमने देखा कि जो वेस्ट इधर उधर पड़ा होता था वो पानी से बहकर सारा ही कोई सड़क के किनारे अक्सर हमने देखा, वो हमें दिखाई देता था. तो मैंने फिर अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि देखो बच्चों किस तरह से हमारी जो ये बावड़ी है, हमारे स्कूल के पास कुछ बावड़ियां हैं तो वहां बहुत प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी होती थी, तो मैंने बच्चों को गाइड किया और दिखाया कि देखें आप किस तरह से जो प्लास्टिक है ये खराब कर रहा है इनको, तो बच्चे भी थोड़े से उनमें अवेयरनेस आई और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि एटलीस्ट हमारे जो सराउंडिंग्स में प्लास्टिक वेस्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम इसे इकट्ठा करें और फिर इसे पंचायत में दे दें. इसके साथ ही एक और बताना चाहूंगी, जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं तो हम इनको भी इकट्ठा करते हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स और हम सब टीचर्स मिलकर सराउंडिंग से, और इनको हम एक पुणे बेस्ड एनजीओ है वहां पर डोनेट कर रहे हैं और वो जो एनजीओ है वो इनको अपसाइकल करती है. तो हमारा ये भी इनिशिएटिव है
2: कि अपसाइकल का थोड़ा सा हमें अगर बता सके,
3: अपसाइकल
2: मतलब
3: में ये है कि जो हम वेस्ट रैपर्स उनको भेजते हैं वो एनजीओ उनको कटिंग वटिंग करके उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बना लेती है, जैसे बैग्स बना लेगी, कोस्टर्स बना लेगी, तो इस तरह से वो एनजीओ जो है वो इनको रीयूज कर रही है.
2: आप कह रही हैं कि बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ मिलके ये सारा कार्य किया जाता है, कितना चैलेंजिंग होता है बच्चों को प्रेरित करना, क्योंकि स्कूल का एक इमेज कई बार होता है कि वहां आप गए, आपने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, लेकिन ये जो एडिशनल डायमेंशन है कि एनवायरमेंट के प्रति इस तरह की जागरूकता और इस तरह के जमीनी स्तर पर प्रयास करना, उसके लिए प्रेरित करना बच्चों को कितना चैलेंजिंग होता है?
3: मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ वो रूरल एरिया का स्कूल है, तो जिसकी वजह से वहां पर जियोग्राफिकल कंडीशंस तो डिफिकल्ट हैं ही, इसके साथ अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ज्यादा अवेयर नहीं होते, डिजिटल नॉलेज नहीं है इतना, डिजिटल डिवाइड है उनको, ना इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी चलती हैं, कई बार उनके पास फोन्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनको इन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से मुझे ज्यादा चैलेंजेस रहे उनको समझाना, उनको ये इम्पोर्टेंस बताना कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है. लेकिन धीरे धीरे हमने प्रयास किए, टीचर्स ने प्रयास किए, मैंने खुद मॉर्निंग असेंबलीज में बच्चों को गाइड किया, इन्वॉल्व किया, तो वो समझने लगे.
2: तो टीचर्स भी साथ में इन्वॉल्व होती हैं तो फिर बच्चों को लगता है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है.
3: बिल्कुल बिल्कुल. और इसके लिए हमने पंचायत मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया, हमने प्रोजेक्ट किया, 2 साल से मैं कर रही हूँ,

0: वेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट है विप्रो अर्दियन की तरफ से, और ये जो प्रोजेक्ट किया तो इसमें हमने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया और दोनों ही सालों में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने देखा बच्चों में बहुत अवेयरनेस आई, वो छोटी छोटी टर्म समझने लगे और वो इम्पोर्टेंस समझने लगे कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों जरूरी है।
1: तो आपको राजकीय स्तर पर भी अवार्ड्स मिले हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या आपके ऐसे प्रयास थे जिनके लिए आपको सम्मानित किया गया।
0: इसी वर्ष 5 जून को एनवायरमेंट डे वाले दिन हमें हमारे स्कूल को एनवायरमेंट लीडरशिप का अवार्ड मिला और इसमें हमें 50,000 का प्राइज मिला है। और ये जो अवार्ड है ये हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें ये अवार्ड दिया। और पिछले वर्ष भी इसी दिन 5 जून को ही हमें वेस्ट वॉरियर का अवार्ड मिला था, वो भी हमें हमारे जो माननीय सीएम हैं उन्हीं से मिला था। तो दोनों ही बार हमारे स्कूल को ये सम्मान मिल चुका है और ये सम्मान मिला है जो हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज की हैं स्कूल में उसके लिए।
1: तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है, थोड़ा सा आप और विस्तार से बता सकती हैं?
0: सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकें और हमारी जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए हम क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें।
1: जी, सो आपने क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करी, तो आपका जो कैंपस है उसमें भी आपने एक कहें कि एक छोटे लेवल पर इसको अडॉप्ट किया है?
0: जी बिल्कुल, खूब सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, किचन गार्डन है, हर्बल गार्डन है और मैंने तो नेस्ट भी इंस्टॉल करवाए हैं और उनमें जो बर्ड्स हैं वो जब नेस्टिंग सीजन होता है तो आकर रहते हैं। मेरे बच्चे जो हैं स्कूल के वो उनको देखते हैं, मुझे बताते हैं, मैम आज उस नेस्ट में एक हमने स्पैरो को जाते देखा, फिर कोई और बच्चा आता है वो कहता है मैम हमने वहां से निकलते हुए देखा। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे भी ये चीजें नोटिस करते हैं, खुश होते हैं। और
1: जी बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे जीवन का, सभी का, जो भी लिविंग बींग है, वो है खाना। खाने में भी प्रकृति में हमें तरह तरह के खाने उपलब्ध हैं, तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। और अब जिस तरह का जो एक रिवाइवल हो रहा है पुराने जो मोटे अनाज थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके बारे में एक इंटरेस्ट, जागरूकता फैलाने की तरफ भी आपका कोई प्रयास है?
0: हमारे स्कूल में भी जब हम फूड फेस्टिवल्स लगाते हैं बैग फ्री डेज वाले दिन, तो उसमें जो है मिलेट रेसिपीज को प्रमोट किया जाता है, ट्रेडिशनल फूड्स को प्रमोट किया जाता है।
1: आपने फूड फेस्टिवल की बात करी, उस संदर्भ में आपने जो बैग फ्री डे की बात करी, ये क्या कॉन्सेप्ट है?
0: बैग फ्री डेज होते हैं, ये गवर्नमेंट के निर्देश हैं, हमें साल में 10 बैग फ्री डेज होते हैं और इन डेज वाले दिन बच्चे जो हैं 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना बैग के स्कूल में आते हैं।
1: अच्छा, बिना किताबों के
0: आते हैं और इसका मकसद ये है कि बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स लर्निंग कराई जाए। तो उस दिन हम बच्चों को इसी तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराते हैं और उन्हें सिखाया जाता है बिना बुक्स के।
1: जी,
0: क्योंकि नॉलेज होता है वो बुक से ही नहीं मिलता। कई बार एक हमारे कैंपस में जो प्लांट लगा है वो इटसेल्फ एक बुक बन जाता है, कई बार बारिश की बूंदें बुक्स बन जाती हैं, तो कई बार बीज से निकलता हुआ पौधा भी एक बुक बन जाता है। तो ये कोशिश रही है हमारी कि हम बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स और बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग कराएं।
1: तो ये जो आप 10 बैग फ्री डेज बता रही हैं जिसमें आप कह रही हैं कि बियॉन्ड द बुक्स, किताबी जो एक शिक्षा है उसके बियॉन्ड आपके प्रयास होते हैं, तो उसमें किस तरह की, क्या कोई प्रदर्शनी लगा आते हैं या कोई एक्टिविटीज?
0: इन डेज वाले दिन हमने बहुत बार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एग्जीबिशंस लगाई हैं, जहां पर बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कुछ आर्टिकल्स बनाए होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स या कोई भी यूजफुल आइटम्स, तो उनकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं स्कूल में। और मेरे एरिया में एक ग्रास होती है जिसे बग्गड़ ग्रास कहते हैं, तो बहुत साल पहले जो लोकल लोग होते थे वो इस ग्रास से प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे बैठने के लिए लोकल भाषा में कहते हैं बिन्ने बनाते थे, रूम्स बनाते थे। लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से ना ये जो आर्ट है ये अब खत्म हो रहा है, तो मैंने अपने बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश की है। तो बैग फ्री डेज वाले दिन ही मैं जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको स्कूल में बुलाती हूँ, वो बच्चों को सिखाते हैं स्टिचेस लगाना कि किस तरह से इस ग्रास से प्रोडक्ट बन सकता है। और अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाने लगे हैं, जैसे पेन स्टैंड्स बनाते हैं या वॉल हैंगिंग। तो मैंने देखा कि इस आर्ट के लिए उनमें अब इंटरेस्ट आ गया है।
1: सो एक आर्ट के साथ साथ आपको लगता है कि आगे चलकर शायद उनके लिए एक व्यवसाय भी कुछ बच्चों के लिए बन सकता है? क्योंकि जिस तरह से अभी जो सरकार है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारी जो ट्रेडिशनल वेल्थ है उसको, चाहे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हो, तो आपको लगता है कि जो ये इनिशिएटिव है या आगे चलकर बच्चों को बहुत लाभान्वित भी कर सकते?
0: बिल्कुल करेगा, ये स्किल डेवलपमेंट उनकी हो रही है और आगे जाकर वो इसको एज ऑक्यूपेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
1: तो आप कोई ऐसे कोई एग्जांपल्स बता सकती हैं कि जिन पे इम्पैक्ट हुआ हो, जो भी आपके खास आप कदम उठा रही हैं आउट ऑफ यू नो द आउट ऑफ कैरिकुलम, उससे जो उनको इम्पैक्ट हुआ हो, कोई ऐसे कोई आपके पास उदाहरण हो जो बच्चे बहुत उससे प्रेरित हुए हो?
0: बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है और जो मैंने देखा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि जब हम उन्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो हम उनके व्यूज़ लेते हैं, तो वो अब एक्सप्रेस करना सीख गए हैं। और मैंने कई बार देखा, मैं कई बार गुजर रही होती हूँ तो पीछे से आपस में बात कर रहे होते हैं कि सपोज़ किसी ने टॉफ़ी पकड़ी है तो वो दूसरा कहता है इसे मत फेंकना, तो क्यों ले आया स्कूल, ये तो अलाउड नहीं है। तब मैंने देखा कि थोड़ा उनमें है कि हमें ये काम नहीं करना है और रैपर्स और इन सबको इधर उधर नहीं फैलाना है।
1: सो मंजरी जी, एक और चीज है कि जिस तरह की अभी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या जो एक ग्लोबल वार्मिंग की जो एक संकट है पूरे विश्व के सामने, आपको लगता है कि इसके बारे में भी एक लोकलाइज लेवल पर भी जागरूकता फैल रही है इन प्रयासों से? और कहते हैं कि जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रकृति का जहां तक हो सके संरक्षण करें, वो बहुत है?
0: जी बिल्कुल ज़रूरी है, और ख़ासकर जब हम बच्चों को इसके लिए गाइड करते हैं तो वो जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो इस स्टेज में सीखेंगे, वो ताउम्र उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि एज टीचर्स हमारा ये बहुत रोल है कि हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें और उन्हें एनवायरनमेंट के साथ जोड़ें।
1: जो एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने का आपका प्रयास है बच्चों का, ये कौन सी कक्षा से शुरू होता है?
0: हमारे पास 6th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हैं 12th तक, तो बस जब से वो आ जाते हैं हमारे पास तो हमारा प्रयास रहता है कि अब हम इनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू कर दें।
1: सो आपको लगता है कि अब जो आप कहें कि उत्साह सब बच्चों में पैदा हो गया है, या एक स्टेज होती है शुरू में आपको लगता है कि थोड़ी रेजिस्टेंस होती है और फिर धीरे धीरे ये उत्साह बढ़ता है?
0: धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जब 6th में आते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे फिर स्कूल में डेली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज में सीखते हैं, तो फिर उनको उसकी आदत पड़ जाती है।
1: मंजरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम व्यापक तौर पर बात करें, पूरे देश की बात करें, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बता सकें, स्कूल्स कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, ये जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को?
0: स्कूल्स का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का, हेड्स का, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं जिसमें जो वो सीखते हैं वो पूरी उम्र उनके साथ रहता है। तो टीचर्स का बहुत रोल है, हेड्स का रोल है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें और एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करें, बच्चे जाहिर है सीखेंगे।
1: इसमें एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना जरूरी होगा, किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है?
0: इसमें उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है तो मुझे लगता है तब वो ज्यादा सीखता है। ऐसे हम उसे पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे तो शायद वो इतने डेप्थ में नहीं जाता, तो उनको इन्वॉल्व जितना करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा।
1: कोलैबोरेटिव अप्रोच,
0: कोलैबोरेटिव अप्रोच रहनी चाहिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए।
1: मंजरी जी, इको फ्रेंडली एक अप्रोच डेवलप करने के लिए आपके स्कूल में क्या इको क्लब है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या है उसका प्रमुख पहलू?
0: जी, हमारे स्कूल्स में इको क्लब्स ऑपरेट करते हैं, तो हमारे स्कूल में भी इको क्लब है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो इको क्लब है इसकी मैं खुद इंचार्ज हूँ, मैंने इसे अपने पास रखा है ताकि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूं और बच्चों को एनवायरमेंट कॉन्शियस बना सकूं।
1: सो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो आप कह रही हैं वो क्या एक्टिविटीज मेन है?
0: वो एक्टिविटीज यही है कि किस तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज कर सकते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स इसमें आ जाती हैं, और इस तरह से ग्रीन प्रैक्टिसेस, क्लीनलीनेस, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज, वाटर वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, ये सब इसके अंडर आ जाती हैं इको फ्रेंडली एक्टिविटीज।
1: जमीनी तौर पर इन एक्टिविटीज को एक्चुअली बच्चे जो हैं वो करते हैं आपके,
0: वो करते हैं बिल्कुल
1: गाइडेंस में,
0: बिल्कुल करते हैं।
1: सो मंजरी जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक फिर से देना चाहूंगी पर और राजकीय स्तर पर तो ऑलरेडी आपका जो काम है उसको अप्रिशिएट किया गया है बहुत बड़े वे में, और आप ये कार्य करते रहे और आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
0: जी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: श्रोताओं, फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को गाया था, लिखा था और संगीत दिया था अमित मिश्रा ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद। श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। भोपाल शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, आम सभा, पुतला दहन, पदयात्रा एवं रैली आदि कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व पुलिस विभाग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान यातायात एवं कानून व्यवस्था में बाधा न उत्पन्न करने तथा अनुमति पत्र में निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा। भोपाल शहर की सीमा में सामुदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने अथवा धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध उत्तेजनात्मक भाषण देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जुलूस, रैली आदि में अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग एवं प्रदर्शन तथा किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। सभी नागरिकों एवं आयोजकों से उक्त निर्देशों का पालन करने की अपील की जाती है। सूचना समाप्त हुई।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाबल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। HAL ने भारतीय वायुसेना को दो हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक

कार्यक्रम ग्राम सभा रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम कर्टेन रेजर। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिए रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं कार्यक्रम खेल जगत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। इसके अंतर्गत आज सुनिए एशियन गेम्स 2026 विषय पर डॉली सक्सेना की वार्ता और कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आनंद लीजिए 9:45 पर। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा सुनिए रात्रि 10:25 पर। श्रोताओं ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी शनिवार 20 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। क्षमा कीजिए 19 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर आइए डालते हैं एक नज़र। सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 9:05 और 9:45 पर। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे श्याम सिंह लोधी और साथियों द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत जिसका प्रसारण 9:15 पर किया जाएगा। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल धरा। इसके अंतर्गत सुनिए लोकेंद्र ठक्कर से पंकज नागर की भेंट वार्ता। विषय होगा पिघलते ग्लेशियर खतरे में दुनिया। सुबह 10:05 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम गीत सागर। सुबह 10:30 पर सुनिए नेशनल ग्रीन टर्मिनल द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 पर होगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का प्रथम भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा के योगदान से प्रसारित होंगे। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6 बजे, 6:45, 8:35 और रात्रि 10:20 पर। 6:15 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण शाम 6:30 पर होगा। 7:30 पर सुनिए किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। कार्यक्रम चित्र भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा और एशियन गेम्स 2026 पर आधारित कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स सुनिए रात्रि 10 बजे। इसका प्रसारण भी आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 19 सितंबर 2026 शनिवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में हुए शामिल। मुख्यमंत्री कल भोपाल में 7,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित करेंगे और कुनू में मादा चीता के GP12 ने 4 शावकों को जन्म दिया। चीतों की संख्या बढ़कर 54 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ 17 देशों के न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। देश में 45 स्थानों पर आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में नए नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कहा है कि मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने सेमिकॉन इंडिया में दुनिया भर से आए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी क्षेत्र के कई निवेशकों ने मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई थी।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम काफी गंभीरता पूर्वक देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और अपने राज्य के अंदर भी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के, हमारे राज्य में भी इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त स्कोप भी है और इस पर हमने काम भी किया है। इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसके आधार पर ये हम इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के निवेशकों को मध्य प्रदेश की पॉलिसी के बलबूते पर इन्वेस्टमेंट के लिए मौका भी देंगे और हमारे राज्य का प्रमोशन भी करेंगे।
0: स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर इस अभियान के एक प्रमुख मिसाल बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान हासिल किया है और इंदौर को 7-स्टार कचरा मुक्त शहर की रेटिंग भी मिली है। इसके साथ ही पुराने कचरे के निपटान के बाद प्रदेश ने 0 लैंडफिल की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कैंसर और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नमो प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दक्षिण क्षेत्र कृषि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों की आय और जीवन में सुधार, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि के जरिए रोजगार बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को गति देना है। आज हैदराबाद में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए।
2: प्रधानमंत्री जी का काफी जोर है रिफॉर्म, वो चीजें कौन सी है, वो नियम कानून कौन से, क्योंकि नियम जनता के लिए, जनता नियम के लिए नहीं। अगर कोई पुराने एक्ट है, पुरानी प्रक्रियाएं हैं, उनको बदलने की जरूरत है। भारत सरकार जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट क्या आप बदल, और भारत सरकार में आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप हमें खुल के बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखना चाहिए, और इसलिए जहां नियमों में बदलाव की जरूरत है आप सजेस्ट की, भारत सरकार भी करेगी, और जो राज्य सरकारों को करना है वो निश्चित तौर पर राज्य सरकार करे ताकि हम जनता को ज्यादा राहत देने का काम कर सकें।
0: श्री चौहान ने कहा कि खेती के 3 प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में नारियल का निर्यात 4,349 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,038 करोड़ रुपए हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में स्वच्छता के साथ साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के तहत कचरे को स्रोत पर ही गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाले कचरे की 4 श्रेणियों में अलग अलग करना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन कचरा संग्रहण, पृथककरण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगा। वहीं प्रदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार 413 नगरीय निकायों में से 352 में करीब 584.81 MLD सीवेज उत्पन्न होता है। NGT ने पुराने कचरे के निपटान और सीवरेज प्रबंधन की कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भोपाल में प्रदेश के 7,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 9 बजे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर में आयोजित होगा। योजना के तहत कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 70% अंक के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है। श्योपुर स्थित कोनो राष्ट्रीय उद्यान से खुशखबरी है। भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने आज 4 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही कोनो में चीतों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जिसमें 37 भारत में जन्मे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे चीता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी 4 नए शावकों के जन्म पर खुशी जताते हुए कोनो और प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी टीम को बधाई दी है। प्रदेश में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी चल सकती है। प्रदेश में अब तक 842.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 7% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के पदनावर में जिला स्तरीय जन संवाद और उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर में आज महिला और बाल विकास विभाग ने सुंदर गार्डन में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कौशल प्रदर्शनी लगाई। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत खंडवा के हरसूद विकासखंड के ग्राम धारूखेड़ी में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। नर्मदापुरम में सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिले के भ्रमण के दौरान स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंचायत योजना की प्रक्रिया का जायजा लिया। शहडोल जिले में मानव हाथी संघर्ष के बीच उत्तर वन मंडल ने एक बड़ी पहल की है। हाल ही में DFO ने कलेक्टर को पत्र लिखकर हाथी प्रभावित गांवों के 1717 कच्चे मकानों को पक्का कराने का प्रस्ताव दिया है। छिंदवाड़ा में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज में सेवा मेरा योगदान थीम पर जिला स्तरीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत इंदौर संभागायुक्त भास्कर लक्षकार और कलेक्टर ने खेड़ी गांव में कृषक विमल भाबोर के खेत का निरीक्षण किया। जनविश्वास अभियान के तहत आज आगरमालवा जिले के बड़ौद मंडी में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 64 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका संबंधित अधिकारियों ने निराकरण कर मंच से अवगत कराया। कटनी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार EVM और VVPAT के जिला स्तरीय वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण 22 सितम्बर को शाम 5 बजे किया जाएगा। दतिया में सेवा से संकल्प और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्राम पंचायत थरेठ में जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। इंदौर में संगीत मूर्धन्य पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में शास्त्रीय संगीत सभा कल शाम 6 बजे संतोष सभागृह में आयोजित होगी। शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुने बारे सभी किसान भैया बहन खा विवेक भैया की दुई हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार पहुँच जाए भैया। देखो भैया रो मौसम अब जोन है वो है बसकारे को हैं, और ई मौसम में कहा होते कि तनक भी अपन ने अगर लापरवाही करी तो भैया फिर परेशानी तो फिर होनी होने हैं, और विशेष तौर पर अपन का ध्यान रखना पड़े थे ई मौसम में पीवे को पानी को। काहे पीवे को पानी भैया गंदो हो जाता है हैं, बसकारे को पानी आते है जागन तागन भैया कीचड़ मीचड़ ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब जहाँ से अपन का पानी आते हैं चाहे नल को पानी आए चाहे बोरिंग को पानी आए तो भैया वो प्रदूषित हो जाते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि ई बेरा जहाँ तक हो सके अपन को साफ शुद्ध पानी पीने भैया, और साफ शुद्ध पानी में कुछ लगत नहीं है। देखो अपन फिट कर ही जानते ही हैं वे डार के अपन पानी का साफ शुद्ध कर सकते हैं, तो साफ शुद्ध पानी पीने हैं। ऐसे ही खान पान में ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके बासो खाना तो भैया बिल्कुल नहीं खाने हैं, अपन को ताजो खाना खाने हैं, और ज़्यादा तेल मिर्च हैं ई को बनो तो भैया बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, इसे परहेज करने हैं। और बाहर को बनो खाना जहाँ तक हो सके उसे भी भैया अपन का परहेज करने हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अपन ने लापरवाही करी तो भैया भुगतने की है परत है, भुगतने तो अपन का खुद परत है ना भैया। और जो कतनी है पेट की को है भैया, पेट अपनो है शरीर की को है भैया अपनो है, तो अपन कहाँ अपने पेट को सही रखने अपने शरीर को सही रखने है। और कत भी है कि भैया देखो जो अपने पेट को स्वास्थ्य है वही अपने बिल्कुल दिमाग को स्वास्थ्य रखता है ना। अगर अपना पेट सही है तो भैया दिमाग भी अपना अच्छा चलता है, अगर पेट में कोई दिक्कत है तकलीफ है कोई भी रोग राय है, कहते नहीं है कि पहलो सुख निरोगी काया, अगर इंसान की काया निरोग है तो भैया हर चीज़ में मजा आता है। और अगर रोग राय हैं दुख तकलीफ है परेशानी है तो भैया सब कछु अच्छो होवे के बावजूद भी कछु अच्छो नहीं लगते हैं। तो हम तो बस जो ही कहें भैया कि अपन का स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि अपनों दैनिक दिनचर्या जो है व्यायाम वगैरह अपन का करत रहना है और व्यस्त रहना है। दिमाग का भैया काम होना चाहिए, दिमाग का फ्री अपन का नहीं छोड़ना है, कहते नहीं है खाली दिमाग शैतान को घर होते, और संगे संगे मस्त रहना है। जब अपनों शरीर स्वस्थ रहे दिमाग व्यस्त रहे तो भैया अपने आप अपन मस्त रहते हैं है ना, और दुनिया की सब चीज़ें अपन का बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी हर चीज़ें बड़ा मज़ा आता है। और भैया देखो ऐसी आज एक बात और है, और बा बात है अपनी काय की, बा बात है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की, जो हर साल 18 सितंबर को भैया मनाया जाते हैं। ई दिन को जो विशेष महत्व है वो है कि महिला और पुरुष दो ही के लाने समान काम के लाने समान वेतन है ना, कोनो भी तरीका को इमें भेदभाव नहीं करने हैं, मतलब उन्हें समान काम को समान वेतन पूरी दुनिया में मिलने चाहिए। ई के लाने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है नवी है ऊ की पहल पे सन 2020 में सबसे पहला जो दिन मनाओ गो, तो और ई को जो मुख्य उद्देश्य है वो बस जो ही है कि एक तो जो काम महिला करते हैं जो काम पुरुष करते हैं ऊ के लाने उन्हें बराबरी को वेतन मतलब उन्हें तनख्वाह उन्हें मिलनी चाहिए। और अपने देश में तो भैया ई को प्रावधान भी है संविधान में अनुच्छेद 39 घा के अंतर्गत के पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम के लाने समान वेतन मिलने चाहिए, और समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है भैया वो भी अपने देश में लागू है। तो अपन का चाहना है कि आज के ई दिन को महत्वपूर्ण समझें, और चाहे अपनी बहुएँ बेटियाँ होवें और चाहे भैया अपने भैया हरे होवें उन्हें समान काम के लाने समान वेतन जरूर मिलना चाहिए। और जब भैया वेतन मिलने की बात आता है तो एक बात और आता है, वो बात है कि भैया जब अपन आमदनी अपनी बढ़त है तो फिर अपने खर्चा भी बढ़त है, और जब खर्चा बढ़त है भैया तो खर्चा के संगे संगे एक चीज़ और होते अपनी बचत घट जाते, तो भैया अपन का ध्यान रखना है कि अपन का बचत जरूर करना है। और ई के लाने प्रधानमंत्री जनधन योजना जा शुरू करी गई थी भैया 28 अगस्त 2014 को। ई के उद्देश्य का है भैया कि अपनों जीरो बैलेंस पे भैया खाता खुल जाते, उमें ऐसे नहीं है कौनू अपन का न्यूनतम राशि ई खाते में रखने पर है। ई में भैया बीमा कवर भी अपन को मिलते, अगर दुर्घटना बीमा होते जीवन बीमा होते ई को लाभ अपन का मिलते, संगे संगे भैया ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलते, अगर 6 महीने तक अपनों खाते का संचालन सही रहते तो अपन

में 10,000 रुपया तक के ओवरड्राफ्ट की में सुविधा भी यह मिलत है। तो अपन का चाहना है कि जो अपनी कमाई है, जो पैसा रुपया अपन कमाते हैं, तो ऊ में से भैया अपन का बचा के भी रखने हैं, और बचा के कहाँ रखने हैं, बचा के रखने हैं अपन का जो अपन ने जो खाता खुलवा तो काहे में प्रधानमंत्री जन धन योजना में है ना। और करोड़ों भैया अपने देश में खाते खुल गए भैया है ना। और सबसे अच्छी बात का है कि ई में एक अपन को डेबिट कार्ड भी मिलते हैं, जिसे भैया कहीं से भी अपन अपना पैसा निकाल सकते हैं। दुर्घटना बीमा कवर तो ई में है ही है कि 2,00,000 रुपये तक को मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलते हैं। और ओवरड्राफ्ट जैसे हमने बताओ ये भैया कि अगर अपन ने 6 महीने तक अच्छी तरीक़ा से अपना खातों अगर संचालित कर लो तो 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भैया मिलते है ना। तो अपन का चाहना है। और जमा राशि पर भैया ब्याज तो मिल नहीं मिल रहे हैं, सो कहते नहीं है कि आम के आम और गुठलियन के दाम। तो भैया जब आप अपन ध्यान रखें कि जो अपनी कमाई है उनमें से बचत जरूर करें, और बचत अपन का कहाँ रखने, बचत रखने अपन का अपने बैंक के खाते में। और जई बात अपने लड़का बिटियन को सिखाना है, जई बात अपनी बहुन बिटियन को बताना है कि भैया पैसा कमावे के संगे संगे उगे बचावो बहुत ज़रूरी है, क्या कि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ जाए हैं तो ऊ बिना अपन की के सामने हाथ फैलाएं हैं। और देखो जो आज को जमाना है भैया अर्थ युग है, तो जवाब भी ध्यान में रख लेंगे। देखो आज के समय में सब बढ़िया है, लेकिन काम भैया कभी होते हैं जब अपने हाथ में पैसा रुपया हो। तो उगिलानों की बचत तो बहुत ज़रूरी है, और बचत तभी हुई है जब वो पैसा अपन कहाँ रखें, जब वो पैसा रखें अपन बैंक में, जब वो पैसा रखें अपन अपने डाक खाने में है ना। उसे कहा होता है कि अब जो नहीं है कि अपन को कहूँ मन चले अपन ने कि चलो फलाने काम के लाने पैसे चाहने, तो फिर उबरा अपन को लगा था भैया को जाए बैंक है, को जाए डाक खाने, चलो बाद में देख लीजिए। और उसे कहा है कि पैसे सुरक्षित है, चोरी चपाटी से बच जाते हैं, और संगे संगे ऊपर ब्याज तो मिल नहीं मिल रहे हैं। तो ये बात को अपन ध्यान रखें, और संगे संगे अपन को एक चीज़ को भैया ध्यान और रखने हैं कि पानी और बिजली इनकी भैया बचत बहुत ज़रूरी है, काहे कि इनकी बचत ही इनकी बढ़त है, चाहे पानी की होए और चाहे बिजली की होए। अब अभी तो भैया बस कारो है सो पानी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पानी बदबदा के सब निकल जाए कि निकले भैया पानी और पौरा में बह के भैया गो नरवन में और नदियों में नहके निकल गो, ऐसा नहीं करने भैया। जो अपन ने अपने वाटर हार्वेस्टिंग के लाने जो अपन ने अपने बनाए हैं घर में, अपन को ध्यान रखना कि अपना पानी भैया वही में जावे, और पानी साफ सुथरों अपन को पीने हैं, जो बात भी अपने दिमाग में रखे रहने। अब कार्यक्रम का भैया अपन आगे बढ़ाएं, ताकि बतकाव तो अपना होती रहे, सो अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहन सिंह कुशवाहा भैया के गाए ई लोकगीत से।

तो भैया रो, अभी अपन ने सुने जो लोकगीत और ये गाओ तो मोहन सिंह कुशवाहा भैया ने, और कितनी अच्छी बात की उनने कि अतके करियन की होत बुरी गत, कितनी है कि अति सर्वत्र वर्जिते, कोनो भी चीज़ के भैया अति अच्छी नहीं होते, चाहे वह अति खान पान की होवे, चाहे वह अति काम काज की होवे, चाहे वह अति सोवे की होवे, वह कछु की अति होवे भैया, हर चीज़ की अति खराब ही होते हैं। और जब बात बड़ी उसे समझाई गई है, कोनो भी चीज़ें भैया अति नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ का नहीं है एक सीमा में अच्छी लगत है, सीमित दायरा होते हैं उमें हर चीज़ शोभा देते, और अगर वह चीज़ उमें नहीं आ तो फिर देखो अपन। और संगे संगे भी अपन एक बात अपने भैया से और कहें कि देखो, अपन का अपने बाल गोपाल की पढ़ाई पे पूरो पूरो भैया ध्यान रखने हैं, काहे कि देखो आज के जमानों है, काहे को तकनीकी को वैज्ञानिक समय है, अगर बाल गोपाल पढ़े लिखे हैं और तकनीकी के हिसाब से भैया उन्होंने अपने आप का अगर पढ़ाई लिखाई करी है तो भैया फिर उनको भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और अगर तकनीकी के हिसाब से नहीं करी है तो भैया बड़ी परेशानी है फिर तो। और तकनीकी के हिसाब से भैया अपन तभी अच्छे हो सकते हैं जब अपन नित नए जो कहते नहीं है कि आविष्कार हो रहे हैं, आप देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई भैया, एआई को जमानो है,

0: आज के ज़माने में जो काम अपन सोचा था दे भी है भाई, देखो AI को बता दो फटाक से हो सकते हैं। कौनू एप्लीकेशन लिखने हैं बता दो AI को, कितनी बढ़िया एप्लीकेशन लिख देते हैं। कौनू अर्जी लिखने हैं, हम तो कह रहे कछु करने भैया, दुनिया में कछु भी चीज़ पता करने हैं, कौनू पता लेने, मतलब कछु भी करने अपन को भैया, अपन बताते हैं देखो तत्काल अपन का भैया बड़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है। जी काम में पहले महीने लगते, जी काम के लाने पहले अपन का बहुत चीज़ें समझने पड़ती भैया। अब जूनियर का बच्ची एकदम सत्ता ही हो, थोड़ी मोड़ी उम्र भी भैया उलट फेर हो सकते हैं, लेकिन जानकारी भैया तत्काल मिलते हैं। और बहुत सी जानकारी तो ऐसी होती हैं जो अपन का और आगे के लाने है ना, बहुत सारी चीज़ें समझाती हैं। तो भैया अपन का चाहना है कि बालगोपाल की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से हो और पढ़वें लिखवें, जीवन में आगे बढ़वें, वो के लाने अपन का भी उनको ध्यान रखने पर है। और भैया देखो जैसे हमने कही थी कि अभी देखो मौसम है काय को, बसकारे को, और बसकारे के मौसम में भैया तमाम तरह के रोग राय पनपत हैं। तो ऐसी भैया एक और समस्या होते हैं, वह होते हैं मच्छर से, और वह है कि मलेरिया की। और जो अगर हो जाए भैया तो बड़ी दुखदाई होते है। तो हमको दुखद भैया कोख होना हो, लेकिन अपन का इनके बारे में जानकारी हो वो बहुत ज़रूरी है। तो मलेरिया कारण लक्षण एवं रोकथाम, और ये पर जानकारी दे रहे डॉक्टर मनोज कुमार पाटीदार, और उनसे बतकाव करें अपने प्रेमचंद जरोनिया भैया ने। और जो जानकारी अपन पहले भी सुन चुके हैं वो बड़ी उपयोगी और उम्दा जानकारी है, सो आज अपन ये फिर से सुनते हैं।
1: ग्रामीण भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि गांव हो या शहर, सभी क्षेत्रों में मलेरिया हर साल और हर महीने देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो फिर हमें बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। यूँ तो मलेरिया रोग है, पर यह मलेरिया कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मलेरिया का इलाज कैसे हो रहा है, इसी संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मनोज कुमार पाटीदार, जिला मलेरिया अधिकारी ग्वालियर। तो डॉक्टर साहब का करते हैं हम अपने स्टूडियो में स्वागत।
2: जी नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मलेरिया क्या है और ये कैसे फैलता है।
2: जी, जैसे कि भ्रांति होती है कि मलेरिया दूषित हवा या दूषित वायु के कारण फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और मलेरिया कोई साधारण बीमारी नहीं है। विकास में बाधक है आर्थिक रूप से भी, और साथ ही जो कह सकते हैं कि शारीरिक या मानसिक रूप से भी हमें परेशान करती है। तो ऐसी अवस्था में जब पीक टाइम आता है, कृषि क्षेत्रों में जो ग्रामीण रहते हैं वो भी उसी समय काम करते हैं, स्कूली छात्रों के एडमिशन भी उसी समय होते हैं, पढ़ाई में वो रत रहते हैं, और वर्किंग जो समय रहता है देश की आर्थिक इकोनॉमी का। तो ऐसी अवस्था में जब मलेरिया फैलता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश को और आम रूप से आर्थिक हमें नुकसान पहुँचाता है। तो मलेरिया जो है वो एक व्यापक रूप से फैला हुआ रोग है।
1: और जी डॉक्टर साहब, हम ये आप ये भी बताइए कि मलेरिया कैसे फैलता है और किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है।
2: जी, मच्छर जो रहता है इसका मादा एनोफिलीज होता है। मलेरिया जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और इसमें जो एनोफिलीज है इसकी एक प्रजाति हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। कुल टोटल इंडिया की बात करें तो 153 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है, और अपन ग्वालियर क्षेत्र की बात करें तो कम से कम इसकी 7 प्रजातियाँ जो है वह संक्रमणकारी होती हैं, जिसमें क्यूलिसिफेसियस होती है, मिनिमस होती है, डायरस होती है, सब पिक्टस है। ये सब प्रजातियाँ जो है वह रोग फैलाने का काम करती है। मलेरिया का जो रोग रहता है यह मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन उसमें एक प्रकार का प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम दो प्रकार के रोग खिलाता है साधारणतः मलेरिया में।
1: आजकल डॉक्टर साहब, मलेरिया कितने प्रकार का है जो हमको देखने को मिल रहा है?
2: जी जी, मलेरिया साधारणतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वायवेक्स और एक होता है फैल्सीपेरम। वायवेक्स मलेरिया साधारण प्रकार का मलेरिया कहलाता है। साधारण प्रकार का इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि साधारण प्रकार के मलेरिया में जो लक्षण रहते हैं, बुखार आना, शिवरिंग होना और ठंड लगना, कपकपी आना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और फैल्सीपेरम जो मलेरिया रहता है इसे घातक मलेरिया भी कहा जाता है। घातक मलेरिया कहने का मुख्य कारण यह रहता है कि इसमें शॉक सिंड्रोम उभर के आते हैं। शॉक सिंड्रोम, जब व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसमें कफ बनने लगता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने लगता है, श्वसन सांस लेने में बाधा उत्पन्न लगती है, ठंड लगती है, डायरिया हो जाता है, जोड़ों में तेज दर्द होता है, और तेज दर्द के साथ साथ क्या होता है, व्यक्ति बिल्कुल लसतपस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है, आँखों में लालपन और जो कान है उसमें भी हल्का सा जो है स्वेब निकलने लगता है। बात करें रक्त की कमी की तो इसमें जो रहती है ब्लड प्लेटलेट्स टूटने के कारण जो रहता है वो रक्त की कमी आती है।

0: एनीमिक हो जाता है व्यक्ति, और इसमें जो एसिडोसिस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही जब इस प्रकार के व्यक्ति को चारों तरफ से डिसीज घेर लेती है और उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो गिर जाती है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी गिरने के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए इसे घातक प्रकार का मलेरिया कहा जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, मलेरिया फैलने का कारण क्या है?
0: जी, मलेरिया फैलने का मुख्य कारण होता है कि हम घर के आसपास जो है वो पानी का जमाव करके रखते हैं। जैसे देखा जाए कि घर के बाहर सीमेंट की टंकियाँ रखी होती है, सीमेंट की टंकियाँ पुण्य के हिसाब से रखी जाती हैं कि पुण्य कमा के जानवरों को पानी पिलाया जाता है, या सिकोरों में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए रखा जाता है। हम उसमें रोज़ पानी तो भरते हैं लेकिन कभी खाली नहीं करते। घर की होदें हैं
1: जी,
0: है ना, घर के अंदर टंकियाँ हैं, ऊपर जो टैंक आते हैं, टंकियाँ जो आती हैं वो खुली हुई होती हैं, उसे बहुत कम लोग ढक कर रखते हैं। घर के अंदर कूलर है, मेरे ख्याल से शायद ही समझदार लोग होंगे जो घर के कूलर साफ़ करते होंगे, सप्ताह में एक बार कूलर जो है वो साफ नहीं करते हैं, तो उनमें क्या है कि उनके लार्वा पलते रहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि मलेरिया फैलने के लक्षण क्या क्या हैं?
0: जी, मलेरिया के जो लक्षण रहते हैं, मैंने जैसे बताया अभी कि कफ आना, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम रहती है, इन्फेक्शन होना, नाक का गलना, ठंड देके बुखार का आना, डायरिया, हेडेक जो रहता है, सिर दर्द का होना, जॉइंटों में पेन होना, हाथ पैर के जो जोड़ों के दर्द रहते हैं उनमें तेज दर्द बना रहता है, और ईयर जो कान रहते हैं उससे डिस्चार्ज निकलता रहता है। इस प्रकार जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो गिर जाते हैं, और गिरने के कारण जो रहता है वो हीमोक्रेटिक वैल्यू जो रहती है उसकी गिर जाती है, और उसके कारण जो एसिडोसिस रहता है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो लक्षण रहते हैं ये मलेरिया में उभर के आते हैं।
1: एक चीज़ और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मलेरिया के मतलब किसी को व्यक्ति को अगर मलेरिया हो गया, ये हम कैसे पता लगाएं कि उसको मलेरिया है?
0: जी, जहाँ साधारण तो हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ठंड देके बुखार आता है
1: जी,
0: और सिर दर्द बना हुआ है, तो ये लक्षण ही काफ़ी होते हैं कि उसको बुखार है, ठंड देके आ रहा है, तो उसको तुरंत मलेरिया की जाँच करवानी चाहिए।
1: जी, मतलब ये मतलब प्राथमिक लक्षण है जो अगर व्यक्ति को दिख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को मलेरिया है,
0: हो सकता है।
1: जी, तो एक चीज़ और डॉक्टर साहब, कि जैसे आधुनिक तरीके से मलेरिया का इलाज कैसे किया जा सकता है, और हमारे जो सरकारी अस्पताल में इसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं जो शासन की ओर से दी जा रही हैं?
0: जी, साधारण रूप से मलेरिया का जो जाँच है वो दो प्रकार से संचालित की जाती है। एक तो रहती है कि जो घर घर जो रहता है व्यक्ति, वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वो जाके चेक करता है, जो फील्ड में कहीं पर पॉजिटिव पेशेंट मिलते हैं या बुखार से पीड़ित व्यक्ति मिलता है तो उसकी जांच करता है। उसके लिए भारत सरकार से सरकार के द्वारा आरडी किट का उपयोग किया जाता है, रैपिड डायग्नोसिस किट बोलते हैं इसे, जिसके द्वारा त्वरित जो रहती है वो निदान हो जाता है उसका जाँच करके कि उसे किस प्रकार का मलेरिया है। और दूसरा जो रहता है वो जो पेशेंट रहता है वो खुद जाँच के लिए किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर सरकारी अस्पताल में जा सकता है, और वहाँ पर उसकी रक्त पट्टी बनाई जाती है जिसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की जांच जो रहती है वो निशुल्क उपलब्ध है सभी जगहों पर।
1: मतलब ये बिल्कुल निशुल्क है हमारी जो शासकीय है?
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर आशा कार्यकर्ता तक जो है वो इनकी जांच करने में सक्षम है।
1: तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब के जो हमारा आधुनिक तरीके से जो इलाज है मलेरिया का वो हमारे सरकारी अस्पतालों में जो उपलब्ध है वो है। लेकिन इसके अलावा हम अगर मलेरिया की रोकथाम करना चाहें तो कैसे मलेरिया की रोकथाम कर सकते हैं?
0: जी, साधारण रूप से जैसे मलेरिया जब होता है तो मलेरिया का एक तो बचाव का मुख्य कारण होता है कि आप सबसे पहले उपचार ले लें। जांच में अगर मलेरिया पाया जाता है तो मलेरिया पाए जाने के बाद उसकी जांच अगर सकारात्मक प्राप्त होती है तो उसका उपचार किया जाता है। उपचार के लिए वायवैक्स के अंदर क्लोरोक्विन दवा और प्रामाक्विन दवा खिलाई जाती है। ये अलग अलग एज उम्र के हिसाब से या एज के हिसाब से बटी हुई होती है। और इसी प्रकार से जो फैल्सिफेरम मलेरिया आता है, फैल्सिफेरम मलेरिया में भी एसीटी किट आता है, एक ब्लिस्टर किट होता है जो अलग एज ग्रुप के हिसाब से होता है, पिंक होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, वाइट प्रकार का होता है, तो ये अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से दिया जाता है। इसके अलावा अगर मिक्स प्रकार का मलेरिया है कि उसको वायवैक्स भी हो गया है, फैल्सिफेरम भी हो गया है, तो उसको प्राथमिक तीन दिन तक उसको एसिडिटी खिलाई जाती है, और उसके बाद उसको 14 दिन तक प्राइमाक्विन खिलाई जाती है। अगर 14 दिन तक प्राइमाक्विन का उपयोग नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो प्रोटोजोअन है उसके गेमेटोसाइट पड़े रहते हैं और वो अन्य व्यक्ति को ट्रांसमिशन करने में सहायक रहता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये मिक्स मलेरिया आपने बोला है, ये मिक्स मलेरिया क्या होता है?
0: मिक्स मलेरिया जब व्यक्ति के अंदर वायवैक्स और फैल्सिफेरम दोनों प्रकार के प्रोटोजोअन इंटर कर जाएं और वो उससे संक्रमित हो जाएं, तो उसे मिक्स मलेरिया कहते हैं।
1: तो इसके भी कुछ लक्षण हैं मिक्स
0: जी मलेरिया। मिक्स मलेरिया घातक भी हो सकता है क्योंकि प्रारंभ में तो साधारण मलेरिया के रूप में उभरता है, लेकिन अगर समय पर उसको इलाज ना मिले तो ये घातक हो सकता है। और उसके लक्षण तो साधारण मलेरिया जैसे ही दिखते हैं, लेकिन बुखार जो है वो बाद में 3 दिन के पश्चात सतत बना रहता है।
1: मतलब बुखार उतरता नहीं है, बुखार सतत बना
0: सतत बना रहता है।
1: तो इसके लिए विशेष सावधानी की जरूरत
0: है।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया मलेरिया का रोकथाम, आप हमारे ग्रामीण श्रोताओं के को मलेरिया से बचाव के लिए कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
0: जी जी, मलेरिया का बचाव आप खुद स्वयं घर पे कर सकते हो। खिड़की और दरवाजों पर मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर की जाली लगाएं जिससे मच्छर बाहर के मच्छर घर के अंदर ना आ सकें। घर के आसपास पानी जमाओ जहाँ पर भी होता हो, क्यों हमारा एक सीधा सा नारा है कि पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पनपेगा वहाँ। तो घर के आसपास जहाँ कहीं भी पानी का जमा होता है उसे ख़त्म किया जाए, उसे उसकी निकासी की जाए। अगर पानी रुका हुआ है उसकी निकासी करके उसे नाली बना के बहा दिया जाए। घर के अंदर जो कंटेनर हैं, जो टंकियाँ हैं, होदे हैं जहाँ पानी का अपन संग्रह करके रखते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि जो मलेरिया का मच्छर है हमेशा साफ पानी में होता है, तो घर के अंदर जो साफ पानी है उसे 7 दिन में एक बार खाली कर दें। घर के अंदर अंडरग्राउंड टैंक बने होते हैं, तो उन टैंकों के अंदर सरसों का नारियल का तेल जो आता है सप्ताह में एक बार जरूर डाल दें, जिससे क्या होगा जो जल की सतह आती है उस पर पानी की एक सॉरी ऑयल की एक फिल्म बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, जिससे जो लार्वा रहेंगे वो सांस ना ले पाएंगे और मर जाएंगे, जिससे मच्छर बन ना पाएंगे।
1: मतलब सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि पानी को इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें
0: जी, जी।
1: और समय समय पर उसकी सफाई करते रहें और पानी को जहाँ भी इकट्ठा दिखे वहाँ पर उसको बहा दें जरूर। तो ये तो एक बहुत अच्छा तरीका भी है मलेरिया से बचने का।
0: जो घरेलू उपचार अपन उपयोग में लेते हैं जैसे फूलास्तीन के कपड़े पहने, जब ट्रांसमिशन सीजन चालू होता है तो उसमें फूलास्तीन के कपड़े पहने, नारियल या सरसों का तेल जो आता है उसमें नीम का तेल मिला लें और उसको शरीर पर मालिश कर लें, उससे भी मच्छरों को रोका जा सकता है। घर के अंदर नीम का धुआं करें, कॉयल जलाएं, मेट जलाएं, और सबसे बड़ा जो इसमें उपयोगी साधन होता है वो मच्छरदानी। मेरे ख्याल से 30% लोग जो है मच्छरदानी का उपयोग करते हैं और 70% लोग मच्छरदानी का उपयोग नहीं करते हैं। अगर वास्तव में यह आंकड़ा 90% उपयोग का हो जाए तो मच्छर के प्रकोप को काफी हद तक रोका जा सकता है।
1: मतलब एक बहुत बड़ा सलाह यही है कि मच्छरदानी का जितनी ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम करेंगे तो मलेरिया होने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य हो सकती है। तो डॉक्टर साहब आपने हमारे ग्रामीण श्रोताओं को मलेरिया के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं वो आपकी जो जानकारी है उसको अपने दैनिक दिनचर्या में जरूर उपयोग लेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया रो अभी अपन ने सुनी जा जानकारी मलेरिया कारण लक्षण एवं रोकथाम। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मनोज कुमार पाटीदार और उनसे बतकाव करे तो अपने प्रेमचंद जिरोनिया भैया ने। और देखो उन्होंने पूरी बातें उनसे पूछी हैं और डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई कि अपन का साफ सफाई रखना है, घर में जो अपनी होदी बनी रहती हैं जितने अपन पानी इकट्ठो करते हैं, जहाँ कूलर वगैरह होते हैं भैया उनमें जो पानी रह जाते हैं वे सब चीज़ें ई के लाने बड़ी घातक हैं और उनमें जो मच्छर भैया बिलमत हैं और अगर ये बिलम गए और इन्हें अगर भैया अपन पे ऐसा कर दो तो फिर परेशानी की होने, परेशानी तो भैया अपनी का होना है ना। और हमने सबसे पहली बात की थी कि भैया स्वास्थ्य जो है वो इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है, कहते नहीं है कि स्वस्थ इंसान ही दुनिया में सारे जितने सुख हैं बस बेयू के पास है। तो अपन का स्वास्थ्य को ध्यान रखना है और कोई भी रोग राय ना हो पाए इसे भैया अपन का बच के लाना है, उखलाना है, अपन का सावधानी रखना है। और अब ऐसे भैया के कार्यक्रम का अपन आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनत यह संदेश।

भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि

0: की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: और भैया ऐसा है कि अब चलती भी रहियाँ कछु गाय बजाए की हो जाए तो फिर तो कहते नहीं है कि सोने में सुहागा होते हैं। और जब अच्छो संगीत भैया मन का सुनने के लाने मिलत है तो कहते नहीं है मन की जो हालफूल है बस दुगुनी तिगुनी क्या 10 गुनी हो जाते भैया हैं। और मन अगर कहते नहीं है कि जो मन चंगा, मन अगर चंगा है तो फिर तो समझो दुनिया के सारे सुख अपने पास हैं। सो अपन चलती भी रहियाँ सुने थे जो लोकगीत, और ये गाँव है उर्मिला पांडे ने।

मायके में मर गई तुम खा खा महे। मायके में मर गई तुम खा खा महेरी, ब्यारी में महेरी दोपारी में डुबरी। अब डुबरी मंगन की बनत मगुआ, ताजी मंगन की। कि मायके में मर गई तुम खा खा महेरी, ब्यारी में महेरी दोपारी में डुबरी। यही से धना तुम हती भोत दुबरी।

हमरे बाबुल के लगे नौकर चाकर। अब भगवान कसम को नहीं लगो थे बता रहे आपका। मायके में ये का करती रही, मायके में करती रही कंडा पथर।

तो भैया रो अबे अपन ने सुने उर्मिला पांडे और देशराज पटेरिया से जो युगल गीत, और कितना मजा आ गया भैया है। मतलब जो नोकझोंक है भैया, जो नोकझोंक नहीं है, जो लड़ाई नहीं है, जो आपस को प्रेम है भैया, और इनमें एक दूसरे को जब बताते हैं, जब चीज़ें सुनाते हैं, तो कितना हास्य व्यंग आते हैं भैया। मतलब ये बात की अपन सोचो भैया कि मतलब जब तक पूरा गीत ना हो जाए, बिल्कुल टक टक इजी लगी देता है कि भैया इमें आगे जो और का कह रहे हैं और का सुना रहे हैं। अब सुनबे को मन तो भैया बहुत है, बतकाओ करे को मन बहुत है, लेकिन अब घड़ी कह रही है कि 8 बजियाँ हैं और भैया ब्यारू की बिरियाँ हैं, और हम कहते नहीं है बस कार्य के समय भैया बिल्कुल टाइम से खाना खाना है, क्या कि अगर अपन टाइम से चूके तो फिर बड़ी दिक्कत है। तो भैया अब आज्ञा दो अपने भैया विवेक का, जय जवान जय किसान।

0: वाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी है। एशिया के खेलों का महाकुंभ सज रहा है जापान के आईची नयोगा में। लीजिए, प्रस्तुत है आपके लिए इस रोमांचक सफर का कर्टेन रेसर।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: जापान के आईची नगोया में एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच सज चुका है। इस बार 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों का दल 35 अलग अलग खेल स्पर्धाओं में देश का मान और तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इन भारतीय खिलाड़ियों के कंधे पर आईची नगोया में सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें ही नहीं हैं, बल्कि उनके सामने खुद का ही बनाया हुआ 28 गोल्ड समेत 107 मेडल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ पार करने की भी बड़ी चुनौती होगी। खास बात यह भी है कि भारतीय दल में 300 से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रहे हैं। उन्हें यह साबित करना है कि भारत की नई पौध दबाव में बिखरती नहीं बल्कि निखरती है। औपचारिक रूप से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में हमारे एथलीटों की नजरें एशिया के टॉप 3 देशों में जगह बनाने और कई खेलों में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट पक्का करने पर भी टिकी हैं। भारत जिन खेलों में भाग ले रहा है उनमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपकटेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे। इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: हर कंपटीशन लाइक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है। हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। बट हाँ, होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
3: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
5: देखिए, एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
3: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
6: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अब अच्छा करेंगे।
3: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार हैं। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
7: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा।
8: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
7: जी,
8: यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट. हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट. और हमें, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन. तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है. वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है. तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा, वी शुड विन द एशियन गेम्स.
7: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में. सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
8: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम.
3: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है. भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी. उनके सामने अपने पिछले

0: रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है। भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है।
1: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं। एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है।
0: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट देके आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था।
0: और अब बात शूटिंग की। इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है। टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनन चिनाई। केनन, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
3: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रिपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रिपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रिपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा, तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए।
0: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था। पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
3: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है। जो भी कंपटीशन पे गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है। लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर। वो मेरा सेकेंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर।
0: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कॉन्स्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
3: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन सी नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगा, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा टारगेट पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्युनिशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते।
0: और क्या पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी, इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
3: सर, ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल। आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री। शॉर्ट गन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम, सो I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games, that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
0: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे, इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
4: देखिए, हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
0: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रोहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे 3 पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
1: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और

0: मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
1: कितना जोश है?
0: फुल 100 of 100।
1: कितने मेडल आएंगे?
0: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने मेडल आएंगे हमारे।
2: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
0: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
2: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
3: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
1: जो जापान कोरिया की जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
3: नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
2: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
4: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अब ये बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
1: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
4: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
1: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
4: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
2: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
5: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे, और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
2: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है, अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
6: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पे फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो विल डू आवर बेस्ट।
2: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोत भी मान रही हैं।
7: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा, 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है, और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
2: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलटफेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं, वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं। हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
8: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन मिड बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड पेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट, एंड That's the only thing we want to do, like not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
2: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
9: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेस है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में, एंड अभी इस साल में फिर बात करूँ कि डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं, एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोज, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैनॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे कैसे आएंगे, यू कैनॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
2: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह?
10: So I'd love to change the color of the medal. It's it'll be great to, you know, be able to go up a step. But of course the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
2: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
11: और भी इस एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे। इस बार पूरा कॉन्फिडेंस हमें।
2: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया। इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखेलबम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही हैं।
12: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ, बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
2: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
13: की बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15। पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
2: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
14: I have been playing since 5 years. मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था उसमें हम लोग सेकंड आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
2: एशियन गेम्स में टेक बॉल का डेब्यू हो रहा है, ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है, उन्होंने विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईचीन अगोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईची नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
15: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए कितना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया, ये कितनी अच्छी बात है। मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेंजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे

ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेरर बनके आईची नगोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

0: ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिजेंट है। तो जब कंटिजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा, ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं। मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
1: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
0: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे। बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310, विच इज लाइक अराउंड 60-63% ऑफ द टोटल कंटिजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद जरूरी है, तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है। हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
1: जी, और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, इस बारे में भी कुछ बताएं आप।
0: देखिए, 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले। इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 times ज्यादा करके 36,000 crore कर दिया गया है। तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है, इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है, पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहां पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। CWG में भी किया था जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा। एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो USA में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में, वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है, शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले, फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे, वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइके कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरे साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से

0: लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेस उनके इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ी को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस, क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर, उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है, हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनफ नहीं है तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं बॉक्सिंग रेसलिंग वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहां पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वहीं वो लोग सोते थे, वहीं वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी तो वो सब वो लोग वहां पे करते थे ताकि वहां पहुंच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहां आ गए।
1: हेमिका स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत, जिसे शब्द दिए हैं समीर ने। संगीत है नदीम श्रवण का और सुरों से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म साजन से। अलका याग्निक की आवाज़, समीर की शब्द रचना, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत और अलका याग्निक की आवाज़। ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन से। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन

0: जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा हैं। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदी

0: ग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पेविलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से

0: के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है।
1: नीति आयोग सर्व्स एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रिंसिपल पॉलिसी थिंक टैंक एंड इट्स मेन फोरम फॉर सेंटर स्टेट डिस्कशन। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैव नाउ बिकम द एक्सप्लिसिट फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेशन। अनफॉर्मेश आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
2: The Supreme Court today suggested a series of measures for all states and union territories to prevent Hooch tragedies. These include stricter monitoring of methanol procurement, storage and transportation, periodic scrutiny of licenses and permits, and specialized disaster management systems to deal with mass casualties. A two-judge bench made the observations while striking down Maharashtra's rules requiring bitterant and colorant to be added to methanol sold to non-drug manufacturers. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andhra Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Mahe, Andaman and Nicobar Islands and parts of Northeast India tomorrow. The weather agency said that conditions are becoming favorable for withdrawal of southwest monsoon from some parts of West Rajasthan from tomorrow. For Delhi, IMD has forecast a partly cloudy sky tomorrow. On to sports. At the Asian Games, the Indian women's cricket team entered the semi-finals after comfortably defeating hosts Japan by 8 wickets in Nissin today. In the quarter-final match, electing to field first, India bowled out Japan for a paltry 57 in 19.5 overs. In reply, India overhauled the target, posting 59 for 2 in just 5 overs. Shefali Verma led the chase with an unbeaten 40 off 15 balls. Harmanpreet Kaur-led Indian team will now face Bangladesh in the second semi-final on Sunday. The first semi-final match will be played between Pakistan and Sri Lanka on the same day. The opening ceremony of the Asian Games 2026 at Aichi, Nagoya in Japan will be held tomorrow. For India, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will lead the contingent. The 20th edition of the Asian Games will run from tomorrow until the 4th of next month. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE reaffirmed their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allowed separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating host Japan by 8 wickets in quarter-final. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज्म का इआदा किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बहिरे अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरतेहाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक गाहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदाम के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी

0: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
1: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है।
0: नीति आयोग अब भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाज़ह बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाजों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारे तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिजाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक तकरीब में शिरकत की। HAL ने दो तेजस और तरबियती तैयारे भारतीय फिजाइया के हवाले किए। वहीं HAL ने अगली नस्ल के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा। इसके अलावा HAL ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को अंकुर का नाम दिया।
3: आज हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
2: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेंसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी आवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिजाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकतदार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिरखा इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज IBM सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉक्टर मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिज़ाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस चिप साजी के से मुतालिक IBM के मंसूबों पर तबादले ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने LAM रिसर्च के COO सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ धड़ों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और अरूप राय के जेर क़यादत धड़े ज़िमनी इंतखाबात में नई शनाख्त के साथ हिस्सा लेंगे। अरूप राय के जेर क़यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के जेर क़यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज्यादा रखा जाने वाला चीनी का जखीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा। सारिफिन के उमूर, खुराक और सरकारी निजामे तकसीम की वजारत ने कहा कि खुली मार्केट से खरीदी जाने वाली चीनी के जखीरे की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये सिर्फ 15 दिन की खपत तक महदूद रहेगा। ये फैसला हुकूमत की जानिब से चीनी के बड़े ग्राहकों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया गया।

एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम मेजबान जापान को 8 विकेट से बआसानी शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशिन में आज खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 19 ओवर्स और 5 गेंदों में जापान की पूरी टीम को महज 57 रन पर आउट कर दिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों श्री चरनी ने 4 विकेट और शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला निची नागोया एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल में इतवार के रोज बांग्लादेश से होगा। वहीं पहला सेमीफाइनल उसी रोज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, माहे, अंडमान और निकोबार जजायर और शुमाल मशरक भारत के कई हिस्सों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल से मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के रुखसत होने के लिए हालात साजगार हैं। दिल्ली के लिए महकमे मौसमियात ने कल मौसम के जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बहर अहमर खत्े में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइयों को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए हैं। और इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं एशियन गेम्स 2026 विषय पर डॉली सक्सेना की वार्ता।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। खेल के मैदान में जब जुनून, मेहनत और देश के सम्मान का संगम होता है तो जन्म लेती है ऐसी उपलब्धियां जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। एशियाई खेल भी ऐसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां एशिया के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, क्षमता और खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं। एशियन गेम्स 2026 को लेकर खेल जगत में काफी उत्साह है। भारतीय खिलाड़ियों से भी देशवासियों को शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें हैं।

आखिर क्या है इन खेलों का महत्व, किन स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी है और एशियाई खेल भारतीय खेलों के भविष्य के लिए क्या संभावनाएं लेकर आते हैं, इन्हीं पहलुओं पर आज हम सुनेंगे यह वार्ता जिसका शीर्षक है एशियन गेम्स 2026 और वार्ताकार है डॉली सक्सेना।

नमस्कार श्रोताओं, एशिया की खेल शक्ति का सबसे बड़ा मंच एक बार फिर सजने जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें जापान के आइची नगायो पर होंगी, जहां 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक एशियंस गेम का आयोजन किया जाएगा। एशिया के लगभग सभी प्रमुख खेल राष्ट्र इस महासंग्राम में उतरेंगे। भारत भी एक मजबूत और महत्वाकांक्षी दल के साथ अपनी चुनौतियों को पेश करेगा। श्रोताओं, भारतीय खेलों के लिए पिछले कुछ वर्ष बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। हांगझाओ एशियंस गेम में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया था। भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीते थे। अब सवाल है, क्या भारत आइची नगायो में अपने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाएगा? क्या भारत पहली बार एशियंस गेम में 110 या उससे अधिक पदकों का आंकड़ा छू पाएगा? आइए आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर भारत में पदक अभियान की शुरुआत किसी खेल से करनी हो तो सबसे पहले नाम आता है शूटिंग का। भारतीय निशानेबाजों ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। ओलंपिक्स, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं में भारत के निशानेबाज लगातार पदक जीत रहे हैं। इस बार भी भारत को राइफल, पिस्टल और शॉटगन की विभिन्न स्पर्धाओं में कई पदक की उम्मीद है। मन्नु भाकर, ईशा सिंह, एल्विन क्लविन, रुद्रांश पाटिल और ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर जैसे खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी। और श्रोताओं, मध्य प्रदेश और खास करके भोपाल के लिए गर्व की बात है कि भारतीय निशानेबाजों ने एशियन गेम्स में पहली बार अपनी तैयारी के लिए भोपाल की अत्याधुनिक शूटिंग एकेडमी का भी रुख लिया था। यानी जापान में भारत के निशानेबाजों का निशाना सीधे पदक पर होगा। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा की कमी खलेगी। एथलेटिक्स भारत के लिए दूसरा बड़ा पदक क्षेत्र है, लेकिन इस बार भारत को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा चोट के कारण एशियंस गेम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। नीरज की गैर मौजूदगी निश्चित रूप से भारत के स्वर्ण पदक की एक मजबूत संभावना को कम कर सकती है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स केवल नीरज चोपड़ा तक सीमित नहीं है। अविनाश सावले, गुलवीर सिंह, पारुल चौधरी, ज्योति यराजी, अनुरानी और अन्य खिलाड़ी भारत की उम्मीदों को बनाए रखेंगे। अविनाश सावले की स्पीड रेज, पारुल चौधरी की लंबी दूरी की दौड़ और अनुरानी की जेवलिन थ्रो में भारत पदक की उम्मीद कर सकता है। श्रोताओं, एथलेटिक्स में कई बार एक सेकंड का 100वां हिस्सा और एक सेंटीमीटर का अंतर पदक और चौथे स्थान के बीच में फैसला करता है। हॉकी में भारत को 2 स्वर्ण की उम्मीद है। भारतीय हॉकी की बात हो या स्वर्ण पदक की उम्मीद ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। पुरुष हॉकी टीम पिछली बार एशियंस गेम की चैंपियन बनी थी और इस बार भी उससे स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय पुरुष हॉकी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम के पास अनुभव भी है, युवा खिलाड़ियों का जोश भी है और उनका यह जोश आने वाले समय को किस मोड़ ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। महिला हॉकी टीम के लिए यह प्रतियोगिता बेहद महत्वपूर्ण होगी। भारत चाहेगा कि पुरुष और महिला टीमें फाइनल तक पहुंचे और कम से कम एक टीम नहीं बल्कि दोनों स्वर्ण पदक लेकर आए। अगर हॉकी में भारत 2 स्वर्ण जीतता है तो पदक तालिका में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है। एशियंस गेम्स में कबड्डी में भारत के सामने अपनी बादशाहत बचाने की चुनौती भी है। कबड्डी भारत का पारंपरिक मजबूत खेल है। एशियंस गेम में कबड्डी का इतिहास भारत का बेहद शानदार रहा है। पिछली प्रतियोगिताओं में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते थे। इस बार भी दोनों वर्गों में स्वर्ण की उम्मीद की जा सकती है। एशिया में ईरान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भारतीय टीमों को कड़ी चुनौतियां दे सकती हैं। इसलिए कबड्डी में भारत के लिए चुनौती केवल स्वर्ण जीतना ही नहीं है बल्कि अपनी बादशाहत बरकरार रखना भी है। इस बार क्रिकेट को एशियंस गेम में शामिल किया गया है और भारत के लिए पदक का एक नया रास्ता खुल गया है। इससे पहले हांगझाओ में भारत की पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते थे। आइची नगायो में भारत दोनों वर्गों में अपना किताब बचाने के इरादे से उतरेगा। क्रिकेट में भारत के पास खिलाड़ियों की बड़ी संख्या और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। यही वजह है कि क्रिकेट को भारत में सबसे मजबूत स्वर्ण पदक दावेदार माना जा रहा है। अगर पुरुष और महिला दोनों टीमें स्वर्ण जीतती हैं, तो भारत के खाते में 2 और महत्वपूर्ण स्वर्ण जुड़ जाएंगे। बैडमिंटन में सात्विक चिराग सहित युवा खिलाड़ियों पर सबकी नजर रहेगी।
बैडमिंटन में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी की जोड़ी भारत के सबसे बड़ी उम्मीद में शामिल है। इन दोनों खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर भारत को गौरव दिलाया है। इसके अलावा पुरुष और महिला एकल तथा टीम स्पर्धाओं में भी भारत पदक की उम्मीद कर सकता है। दूसरी तरफ पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण रहेगा। बैडमिंटन में भारत यदि एक से अधिक पदक जीतता है तो उसके अभियान को

काफी मजबूती मिलेगी। कुश्ती में भी भारत को काफी उम्मीद है। कुश्ती भारत के पारंपरिक पदक खेलों में शामिल है। इस बार भारतीय पहलवानों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। एशिया में जापान, ईरान और मध्य एशिया देशों में पहलवान बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए भारतीय पहलवानों को तकनीक, ताकत, मानसिक मजबूती तीनों मोर्चों पर खुद को साबित करना पड़ेगा। भारत को उम्मीद होगी कि युवा पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रदर्शन से एक नया अध्याय लिखे। जहां तक मुक्केबाजी का सवाल है, उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने हाल के वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है। महिला मुक्केबाजी में लवलीना सहित कई खिलाड़ी पर निगाह रहेगी। दूसरी ओर तीरंदाजी में भारत की स्थिति काफी मजबूत रही है। खासकर कंपाउंड तीरंदाजी में भारत विश्व की मजबूत टीमों में शामिल है। व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में भारत कई पदक अपने नाम कर सका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एशियंस गेम में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश बेहद मजबूत हैं। चीन लगातार हर वर्ष एशियन गेम्स में पदक तालिका पे शीर्ष पर रहता है। जापान मेजबान देश है और उसे घरेलू परिस्थितियों का लाभ मिलेगा। ऐसे में भारत के लिए पदक तालिका के ऊपर जाना आसान नहीं होगा। लेकिन भारत की खासियत ये है कि अब वह केवल कुछ खेलों पर निर्भर नहीं रहा है। शूटिंग से लेकर एथलेटिक्स तक, हॉकी से लेकर क्रिकेट तक, कुश्ती से लेकर तीरंदाजी तक, हर खेल में भारत ने अपने झंडे गाड़े हैं और हर खेल में वह पदक लाया है। क्या भारत होंगजाओ के 107 पदकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकता है? सभी को इस बात की उम्मीद है कि भारत के पास 100 से अधिक पदक जीतने की मजबूत संभावना है। लेकिन अगर शूटिंग उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करती है, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण मिलते हैं, क्रिकेट की दोनों टीमें खिताब जीतती हैं और एथलेटिक्स में कुश्ती, तीरंदाजी, मुक्केबाजी तथा बैडमिंटन के अपेक्षित पदक मिलते हैं, तो भारत 107 के आंकड़े को पार कर सकता है। लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि एशियंस गेम में पदक तालिका केवल स्वर्ण पदक से तय नहीं होती है। कई बार एक कांस्य पदक भी टीम को चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा सकता है, इसलिए भारत के लिए हर मुकाबला महत्वपूर्ण होगा। एशियंस गेम 2026 को केवल पदकों की प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखना चाहिए, यह लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 की तैयारी का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। युवा खिलाड़ी यहाँ बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव में खेलने का अनुभव हासिल करेंगे। अनुभवी खिलाड़ियों को अपनी निरंतरता साबित करने का मौका मिलेगा और भारतीय खेल व्यवस्था को यह देखने का अवसर मिलेगा कि प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, फिटनेस और आधुनिक सुविधाओं में किए गए निवेश का परिणाम किस रूप से सामने आया है। तो श्रोताओं, आईची नगायो में भारत दल के सामने लक्ष्य स्पष्ट है। होंगजाओ के 107 पदकों के आगे निकलना नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति भारत के अभियान को एक बड़ा झटके के रूप में है, लेकिन भारतीय टीम के पास उम्मीदों की कमी नहीं है। भारत का शूटिंग में निशाना पदक पर होगा, हॉकी में गोल्ड की तलाश होगी और कबड्डी में भाषाहत बचाने की चुनौती होगी। क्रिकेट में दोनों स्वर्ण बचाने होंगे। बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और तीरंदाजी में नए सितारे चमक सकते हैं और एथलेटिक्स में भारत नीरज की अनुपस्थिति के बावजूद नए चैंपियन तलाशेगा। कुल मिलाकर एशियन गेम 2026 भारत के लिए केवल पदकों की संख्या बढ़ाने का अवसर नहीं है, बल्कि दुनिया को ये बताने का भी मंच है कि भारतीय खेल अब एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आइए हम अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं और उम्मीद करें कि जापान की धरती पर तिरंगा सबसे ज्यादा बार पोडियम पर हमारा ही लहराएगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।

0: अभी आपने एशियन गेम्स 2026 विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थी डॉली सक्सेना। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: कार्यक्रम खेल जगत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
1: श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। भोपाल शहर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा मकान मालिकों, किराएदारों एवं विभिन्न संस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मकान मालिकों द्वारा मकान या उसके किसी भाग को किराए पर दिए जाने पर किराएदार का विवरण निर्धारित प्रपत्र में 1 सप्ताह के भीतर संबंधित थाने अथवा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर देना अनिवार्य है। पूर्व से रह रहे किराएदारों एवं घरेलू नौकरों का विवरण भी 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना है। घरेलू नौकर, होटल, लॉज, धर्मशाला, रिजॉर्ट में ठहरने वाले व्यक्ति, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं तथा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, कारीगरों का विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित थाने को उपलब्ध कराया जाना है। सभी संबंधित नागरिकों एवं संस्थानों से पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देशों को पालन करने की अपील की जाती है। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गावणकर राही, श्रीमती सरिता गावणकर, प्रिंस एकांश गावणकर। बदलापुर मुंबई से खत लिखते हैं सिद्धांत गवहाणकर, प्रणिता गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर टुकटुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है वैशाली शैलेश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी ने। श्रोताओं, साथ में इसी गीत के लिए हमें अगला खत प्राप्त हुआ है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। लिखने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से खत लिखा है शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म इलाका से। आवाज़ें किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की है। अनजान के बोल, नदीम श्रवण का संदीप संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून इन किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां का। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं हम ये गीत जिसे शब्द दिए हैं आनंद बख्शी ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

मुकेश की आवाज़ में यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म आनंद से। गुलजार की शब्द रचना और धुन बनाई सलील चौधरी ने। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई थी बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर की। साथ ही इस गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ था मोहम्मद हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। चौथा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला खत हम शामिल कर रहे हैं, जिसे हमें भेजा है धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और उन्नत डेरे ने। साथ ही इस गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा का। तो आइए इन श्रोताओं की पसंद का गीत सुनते हैं फिल्म हमराज से। महेंद्र कपूर की आवाज़, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला खत हमें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा का। साथ ही इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। साथ ही चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार और जयकिशन साहू की। तो आइए इन श्रोताओं की पसंद पे गीत सुनते हैं, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, राजेंद्र कृष्ण के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म है धरती।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मजरू का लिखा यह गीत फिल्म जहरीला इंसान से, जिसको संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई थी गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा जी आर्य की। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला था शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें खत भेजा है।

सिंहपुर बेड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने, साथ ही अगली फरमाइश इसी गीत के लिए हमें प्राप्त हुई है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया की। इन श्रोताओं की पसंद पे गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अमर जलालाबादी का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया है सोनिक ओमी ने। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म महुआ से।

0: फिल्म महुआ के इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आप भी हमें खत लिखकर आपके फरमाइशी और पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल। भोपाल का एसटीडी कोड है 462002। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके रेडियो साथी ऋषभ आहूजा को। नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा, जिसका विषय है 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया है, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
3: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। पर जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहाँ से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई। तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं।

0: फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आया, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में सीईओ बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
1: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना, और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक iGOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
1: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
3: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलती हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं। तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाब दी या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है, तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे, और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए।
1: जी,
3: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है, और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है, क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है।
0: हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे ज़मीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कम्प्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा, तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं, उसमें आधी से ज़्यादा 80% तो चैलेंजेस जो हैं वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज़ होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जो 20-25 क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूँगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इम्प्रूवमेंट आया, तो इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में। और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 कॉलेजी के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में। और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए हैं लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ। तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये हुआ है।
1: बिल्कुल, और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है। और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं। तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
3: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं। आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है
1: जी,
3: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है।
1: बिल्कुल,
3: वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
3: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी, जी।
3: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशन कितने हैं।
1: बिल्कुल,
3: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशन है, सुरक्षा के डायमेंशन है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना, कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल,
3: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया।
1: बिल्कुल,
3: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है। तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी सी छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां, दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी की आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
0: एक कैबिनेट मीटिंग जी के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए कि मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है
1: जी।
0: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलिए। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तो इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चरल आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहाँ की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहाँ का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया। और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे। तो हर MLA को, हर MP को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कंपटीशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
0: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इसकी वजह से जियोस्पेशियल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए। इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, ये किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल। तो ये जो नजरिया है, मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
4: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
1: जी।
4: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
4: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
1: जी जी,
4: तो वो भी एक अलग से ये थी। तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल।
4: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
1: जी।
4: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में वो आपने जो पूछा तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं।
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
0: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो हम लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूँ इसका और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ। पर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वही इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए, और ये बहुत मेरे विचार से जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव।
1: जी आप बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
4: देते। उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए। तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता
1: है।
4: तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देना। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है। तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को, हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
1: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, उभरती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना ये शायद आम बात नहीं थी।
0: तो देखिए मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग यूरोप के जो शेरपा थे रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हमने करीब 350 मीटिंग थी हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ। वहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया। वहाँ के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया। हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट और हर स्टेट ने रोल प्ले किया। हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई। ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था एक और इश्यू था बहुत बड़ा ईरान था यूएई था सऊदी अरेबिया था। ये तो युद्ध में दो तरफ थे आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो। उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं। वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर विश्वास करते हैं फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं। फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
1: बिल्कुल वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी
4: बिल्कुल देखिए जैसे G20 की बात चली किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है। G20 में है G7 में इन्वाइटेड मेंबर है ब्रिक्स जैसे संस्थान में है फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
4: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं ट्रेड भी कर सकते हैं और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है। वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
1: बिल्कुल और अमिताभ जी बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047 और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी जीडीपी बढ़े उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो बिजली हो घर हो और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक।
1: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।